आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चतुर्थ तिथि, तदनुसार 25 मई सन 2026। प्रातः के 5:58 और ठीक 44 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की यह प्रथम प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। सुबह के 6 बज रहे हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2

0: दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइटराइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news.
2: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। भगवान शिव के दरबार में आकर उनका आश्रय पाओ और मंगल कार्य पूर्ण करो।

आवागमन का क्रम जारी है। मर्त्यलोक का जीवन दो दिवसीय मेले के समान है। परमार्थ और प्रभु की भक्ति मुक्ति का सरल उपाय है, कर लीजिए।

अखिल ब्रह्मांड प्रभु के संकेतों पर गतिमान है। मानव की मुक्ति भी भक्तिमय समर्पण द्वारा संभव है।

उनके इशारों से जिंदगी का रुख बदल जाता है, उनके इरशादात फरमुदात दो जहां के लिए मशाले राह हैं।

मौसमी दत्ता और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। आइए सुनते हैं संगीतमय श्री रामचरितमानस गान।

श्री राम के सीता के साथ वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण को अपने तन मन की सुधि जाती रही। वे व्याकुल होकर अग्रज के चरणों में आ गिरे। उदास मुखमंडल, कांपता शरीर, आंखों में उमड़ते आंसुओं ने निशब्द उनकी पीड़ा प्रकट कर दी। श्री राम ने उन्हें धीरज बंधाया। प्रेमवश अधीर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता, गुरु और स्वामी की सीख मानकर आचरण करते हैं, उन्हीं का जीवन सार्थक होता है। हे भाई, भरत और शत्रुघ्न इस समय अयोध्या में नहीं हैं। वृद्ध महाराज मेरे वन प्रवास के कारण बेसुध हैं, अतः तुम्हें यहीं रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि मैं तुम्हें अपने साथ वन में ले गया तो अयोध्या नगरी एकदम अनाथ हो जाएगी। किंतु आसन्न वियोग की पीड़ा से अधीर लक्ष्मण पर श्री राम के शीतल वचनों का वही प्रभाव हुआ जो पाले का कमल पर होता है। लक्ष्मण की ये वेदना है कि वे दास हैं और यदि स्वामी उनका त्याग भी कर दें तो वे क्या कर सकते हैं। सच तो ये है कि वे श्री राम के स्नेह से सिंचित मात्र एक शिशु हैं जो श्री राम के

अतिरिक्त गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानते। धर्म और नीति संबंधी उपदेश की आवश्यकता तो उसे होती है जिसे कीर्ति, ऐश्वर्य और सद्गति की अभिलाषा हो, जो मन वचन कर्म से श्री राम के चरणों में प्रेम रखता हो। क्या उसका त्याग किया जा सकता है?

0: अभी आप सुन रहे थे संगीतमय श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर और ए हरिहरन। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था। मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन।
1: ये विश्व अनंत है, इसका अनंत रूप परमात्मा या ब्रह्म है और दूसरा रूप जीव आत्मा या मनुष्य है। अनंत होने के कारण परमात्मा या ब्रह्म अजर और अमर है। उसका न कोई आदि है न कोई अंत। शास्त्रों में इसे नेति नेति कहा गया है, जो ऐसा भी नहीं पर वैसा भी नहीं। वो गुणातीत सभी में व्याप्त है और मनुष्य सीमाओं में बंधा होने के कारण जीवात्मा यानी जन्म मरण के बंधन में फंसा हुआ है। अतः कहा जा सकता है, संकीर्णता को दूर करने और स्वार्थ को छोड़ने से जीव आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। सब स्वार्थमयी कामनाओं को दूर करने में शिक्षा व ज्ञान की सहायता बहुत जरूरी है, क्योंकि इन कामनाओं की समाप्ति विद्या और ज्ञान के द्वारा ही संभव हो सकती है। जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्ममय हो जाता है, या यूं कहें कि वो ब्रह्म ही हो जाता है। वो यही इसी लोक में मुक्ति पा लेता है। अतः यही इसी जन्म में सत्य को जानना बहुत जरूरी है, परंतु इसे केवल बौद्धिक दृष्टि से सिद्धांत

0: अनंत रूप में जानना काफी नहीं है। तप और सदाचार के द्वारा इसका साक्षात्कार करना आवश्यक है। तप, क्षमा, दान, किसी की हानि न करना, सदा सत्य बोलना जीवन रूपी यज्ञ की दक्षिणा है। जीवन का हम महाव्रत ये है कि मनुष्य उदार विचार रखे, किसी के साथ अशिष्ट व्यवहार न करे, लोक मंगल की भावना की उपेक्षा न करे और किसी का भी अनादर न करे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कर्म। जीवन में कर्म का बड़ा महत्व है। बिना कर्म किए जीवन की गाड़ी चल नहीं सकती है। कर्म करने वाला व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है। कर्म और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि कर्म वो ही श्रेष्ठ है जिसमें ज्ञान और बुद्धि का सन्निवेश हो। इस प्रकार के कर्म से श्रेष्ठ आनंद की प्राप्ति होती है और यही आत्मा का लक्ष्य है। जगत और जीवन आनंद के समुद्र हैं। आनंद की तरंगों के बिखरे हुए कण प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी का जीवन आनंद, आशा और उत्साह का पुंज है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति जीवित रहने की कामना रखता है। परंतु जो ज्ञानी है वो जानता है कोई वस्तु न तो हमेशा रहती है और न पूर्णतः नष्ट होती है। न किसी का अचानक एकदम से आविर्भाव होता है, अतः मृत्यु भी जीवन का अंत नहीं है। ये एक परिवर्तन मात्र है। इसके बाद जीवन के विभिन्न तत्व नए रूप में प्रकट होते हैं, किंतु इस प्रक्रिया के दो रूप हैं, भौतिक और मानसिक। भौतिक रूप में तो जीवन के तत्वों के संगठन और विघटन की प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है और इसे कभी रोका नहीं जा सकता।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 6:45 हुए हैं। काव्यधारा के अंतर्गत आइए सुनते हैं श्री बैजनाथ मिश्र से उनका काव्य पाठ।
2: गंगा दशहरा पर्व। दशहरा इस धरती पर अतिशय है विख्यात। भुक्त मुक्ति देने में सक्षम जग जाने निष्णात करके संस्कृत का संपोषण लाए नवल प्रभात। यही दशहरा जग जीवन का काटे कोटि घात। क्वार माह का विजय दशहरा और जेठ का गंग, दोनों में ही व्योम दिशा तक भूसे उठे तरंग। कहीं बचे न रेस क्लेश का करे पर्व यह भंग। सारा भारत धर्म सनातन सीखे जीवन ढंग। गंगा अवगाहन की महिमा से प्लावित यह पर्व। धर्म सनातन उस मूल है भारत करता गर्व। शिखर कोट की इसकी महिमा गाय वेद अथर्व। है पुष्प पंक्षी मानव पादप गायन करते सर्व। भागीरथ ने पुरखे तारे अपने 60,000। भागीरथ ने पुरखे तारे अपने 60,000। भुक्ति मुक्ति माँ लुटा रही है यश मंगल विस्तार। प्रतिदिन पूरा भारत करता माँ की जय जयकार। गंगा माता लाए उर्मे पावन प्रेम निखार। लगा पाठशाला है तट पर चले धर्म का पाठ। राम नाम ही केवल सच है मिथ्या दे तन ठाठ। शिव को यहाँ भूत प्राप्त हो प्रहर दिवस के 8। कल्पनेश लो दर्शन कर लो जले देह ज्यों काठ। पर्व दशहरा गंगा दर्शन लक्ष्य साधना शांति। और जगा दे बोध मनुज में मिथ्या दैहिक कांति। भांत भांत के दान क्रिया से जागे जीवन क्रांति। गंगा माँ की कृपा जागते मिट जाए जग भ्रांत। विष्णु चरण से ब्रह्म कमंडल जटाजूट से उवास। भागीरथ की सफल साधना प्रकट जगत उल्लास। गोमुख से उस सिंधु मिलन तक बांटे मिष्टि हास। गंगा माँ से मनुज सभ्यता पाए पूर्ण विकास। शुक्ल पक्ष तिथि दशमी आए कलकल गंगा गान। धर्म सनातन भारत नित्य लखय श्रवण विहान शश श्यामला पूर्ण धराय और ज्ञान विज्ञान ऋचा वेद की व्योम पटल तक पहुँचे संतुष्टान अन्वेषण की दीर्घ लकीरें देखें विश्व निहाल डम डम डम बाज उठा सु डमरू सच है जिनके भाल इसी काल का अन्वेषण है मंगल यह ग्रहलाल संस की दिव्य सनातन सुर से ध्वनित हुई दिक्काल। मित्रों दूसरा गीत है सार छंद में जितना व्योम सदा से अपना अपनी गिरा भवानी जीव जगत के लिए सनातन करुणा जीवन पानी। यह सनातन गीत है परम मित्र है परम विज्ञ है एक राम ही अज्ञ जीव जग सारे करुणा नीर न जिनके दिग में कौन जीव दुख टारे सभी जीव हैं स्वार्थ अश्व पर बनकर बैठे अंधे मिथ्या मान गुमान भरे सब यतशील निर्धंधे सबके सब हैं घिरे तमस्से कहना मत अभिमानी जीव जगत के लिए सनातन करुणा जीवन पानी। पूर्ण हे चीटी को वाटा काट पर आई खेती यह कैसा व्यवहार स्वयं से धर्म गहे ज्यों रेती नाम नयन सुख सुनकर चौंका देख न कुछ भी पाते उथले जल में ही जितने जन कभी डूब उतराते जग जीवन के जीवों की यह व्यथा भरी नादानी जीव जगत के लिए सनातन करुणा जीवन पानी। शाश्वत सुख की चाहत रखना करुणा जल बिन आँखें कैसे मगन परिंदा उड़ता भोला निज पाखें जिनके दृग में करुणा जल है ईश्वर ही कहलाए सारे संत शास्त्र वेदों ने उसके ही गुण गाए ज्यों जलता है दीप दीप से प्रथा मन विज्ञानी जीव जगत के लिए सनातन करुणा जीवन पानी। जहाँ स्वार्थ का नंगा नर्तन वहाँ अबुझ सनातन जहाँ स्वार्थ का नंगा नर्तन वहाँ अबुझ सनातन दीवा स्वप्न है केवल जानो दर्शन नहीं पुरातन अणुबम भी असफल हो जाते जिस करुणा के आगे कहीं दीनता टिक न सके जब दयार्ता जागे परंपरा से सारे जग में परखी मिली जवानी जीव जगत के लिए सनातन करुणा जीवन पानी। संस्कृत की संरक्षण का है संस्कृत की संरक्षण का है प्रण जिसने भी ठाना वही सनातन मनुष्य धर्म है मनुष्य मात्र ने माना कल्पनेश नस्सी रहे बंधन फिर है अभिनंदन जिसने सुना उपाय सुझाया टूटे जग का क्रंदन एक मात्र आत्मी वही है उसको निज पीर सुनानी जीव जगत के लिए सनातन करुणा जीवन पानी। यह नैतिक पतन आज धरती पर हो रहा है रोला छंद में है आप सब देखें प्रश्न बहुत गंभीर पतन क्यों नैतिक आया प्रश्न बहुत गंभीर पतन क्यों नैतिक आया श्वास पतन के बाद मिटे यह कंचन काया अपना कुल परिवार छूट पीछे यह जाए पल अंतर के बाद नहीं चित में आए जगत पिता भगवान सभी के प्रतिपालक हैं शिष्ट चराचर जीव उन्हीं के सब बालक हैं हरि का नेह अपार सभी को सब मिलता है जिनके संबल दान गगन में रवि खिलता है सबको देते अन्न नीर आकाश पर भंजन सच्चित का सुखसार मगन मन देते रंजन क्यों लेना फिर पाप अनैतिक पथ पर चलकर तन मन अपना प्राण त्यागना करतल मलकर बालक मन की बात आज मैं उसको कहता जग से था अनजान बाल मन पूरा मेरा सदगुरु करुणा दान बनाए अनुपम घेरा लेकिन था आचार गिरा मानो का पाया कुछ यह धुंधली याद सुनाने लिख कर आया वह अंतस का माप आज नैतिक है जाना जहाँ अनैतिक लोग भला कैसे खपाना रीति नैतिक शब्द आशय से अपने रीति नैतिक शब्द आज आशय से अपने ऐसे ऊँचे आज हुए नो मानो नपने देती है सरकार बनी जितनी मजदूरी पर गरीब से ऐंठ रहे कैसी मजबूरी कठिन खोजना आज हुए अच्छे जन गायब कठिन खोजना आज हुए अच्छे जन गायब विषम कुंडली मार बने ओछे हैं नायब खोटे सिक्के आज चलन में खूब फैले हैं इन्हें कहे जगनीक और सब मटमैले हैं जीव जगत हर हार कर स्वयं मरेगा कल्पनेश छल दांव दुक्लेश की वृद्ध करेगा आँख खोल ले देख मनुष्यता अश्रुभाए सब कुछ निगले आग लपालप जीव बढ़ाए। सार छंद में अध्यात्म दर्शन है आप सब देखें सदगुरु की महिमा का दर्शन है अध्यात्म कहाता सदगुरु की महिमा का दर्शन है अध्यात्म कहाता श्रद्धा न होकर के मानो निर्दर्शन यह पाता अपर सी में वह सार्वभौम है चर्म चक्षु कब आता अनुभव राजमार्ग से जिसको सदगुरु हमें लखाता उससे बड़ा न किंचित कोई जादूगर हो पाया हम में तुम में तिक्त नीम में आसन बैठ जमाया जिधर देखता वही वह है भिन्न धरे पर काया भिन्न स्वाद भी भिन्न रूप ले वही एक समाया एक क्षुदंड में मिष्टी बनकर मुख में लार जगाए कटुक निम में औषध भय पर कौन भला ललचाए राम वही है पर रावण बन निम्न भाव में आए कहे जगत अति महिमा वाला नंगा नाच दिखाए कंटक बन अंगों में चुपता सुमन दिशा महकाता भक्तराज प्रहलाद धरे तन सम में ईश लखाता पिता दृष्टि में लाल खंभ में इस अलौकिक आता

0: ज्वलित अग्नि में जली होलिका वह बालक मुस्काता, प्रज्वलित अग्नि में जली होलिका वह बालक मुस्काता। वेद कभी जब दर्शन पाते मौन अधर धर लेते, कवि कोविद योगी जन जिनको हृदय मध्य लग सेते, आतंकी बन निंदित होता पर सचित क्यों चेते, भक्ति भावना देख जीव में अभय हाथ धर दे, हृदय मध्य व बाहर है वह जिसे न सब लग पाते, भरा लबालब सभी दिशा में हम नकार मद माते, वही क्षुदातुर रह जाता हम छप्पन भोग लगाते, रा का रूप तीर्थ में दे माई रिर आते, करुणा दृश्य सारे गुरुवर अंतस में जागे, भेदभाव का भूत लंगोटी लेकर चित से भागे, जड़ भरत नहीं फिर अमर भाव उर्पागे, कल्पनेश दंडवत पड़ा है लक्ष्मुख गुरु आगे, कल्पनेश दंडवत पड़ा है लक्ष्मुख गुरु आगे। प्रकृति के प्रति एक अंतिम गीत है, देखें आज प्रकृति किस तरह से हमारी प्रदूषित हो रही है। सदा सहचरी प्रकृति हमारी संरक्षण है करना, सदा सहचरी प्रकृति हमारी संरक्षण है करना, छाया में रह पुरखों जैसे भव से पार उतरना, वैज्ञानिक विकास में बाधक नहीं प्रकृति को जाने, तालमेल दिनचर्या रखकर निज वितान हम ताने, प्रकृति अल्पना रचती जिस पर चलकर विहरना, छाया में रह पुरखों जैसे भव से पार उतरना। प्रथम सभ्यता का प्रभात वह सुषमा प्रकृति बिखेरे, प्रथम सभ्यता का प्रभात वह सुषमा प्रकृति बिखेरे, शिष्य बोध थे पुरखे अपने सिर पर करतल फेरे, वही दुलार भरा या चल है विह्वल होकर धरना, छाया में पुरखों के जैसे भव से पार उतरना। ऊंचे ऊंचे भवन बनाते राजमार्ग लिए जाते, चिर सहचर वृक्षों को भूसे हम क्यों गए हटाते, यह विकास रथ कहाँ रुकेगा पड़े न आहे भरना, छाया में रह पुरखों जैसे भव से पार उतरना। धुआं धुआं सा घर आंगन है कैसी आफत आई, घर लिगत्ते दारू रहे जो कहाँ गए बिस्पाई, जिन तरुतल का संबल पाकर कभी न आया डरना, छाया में रह पुरखों जैसे भव से पार उतरना। और अंतिम में नदी बहाती यश ठहर कर क्या कुछ कहना चाहे, नदी बहाती अस ठहर कर क्या कुछ कहना चाहे, सदा साथ पशु रहने वाले खगमृग नहीं सराहे, सच कहना कभी एकाकी रह अच्छा नहीं विचरना, छाया में रह पुरखों जैसे भव से पार उतरना।
1: काव्यधारा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे श्री बैजनाथ मिश्र से उनका काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। सुबह के 6:55 हुए हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे, पहले संस्कृत में तत्पश्चात हिंदी में।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः, अमेरिका देशीयः विदेश मंत्री मार्को रूबियो च विभिन्नेषु विषयेषु सविस्तरं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ भारत अमेरिका रणनैतिक सहभागितां भूयः अपि दृढ़यितुं स्वस्व प्रतिबद्धतां पुनः उदीरितवन्तौ। ताभ्यां उक्तं यत् एषा सहभागिता व्यापारोर्जा गतिशीलता क्षेत्रीय सुरक्षादि क्षेत्रेषु विशेषतः अस्ति। डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् भारतस्य अमेरिका देशेन सह व्यापकः वैश्विकः रणनैतिक सहभागित्व सम्बन्धः वर्तते, यः खलु गहन सहयोगाधृतः वर्तते। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धाः सम्पूर्ण विश्वे प्रभावं जनयन्ति, अपि च अनेकेषु क्षेत्रेषु तयोः हितानि समानानि सन्ति। विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् एषा वर्तमानचर्चा कठिन वैश्विक परिस्थितिषु अभवत्, परञ्च मुक्त मनसा सार्थका चर्चा अभवत् इति तस्य विश्वासः। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः मध्ये व्यापारसन्धेः निर्णायकरूपेण निर्धारणम् अचिरमेव भवेत् इति आवश्यकम्। तेन ऊर्जा व्यापारे जातः विस्तारः अभिनन्दितः, अपि च उक्तं यत् विविधेभ्यः स्रोतेभ्यः ऊर्जायाः आपूर्तिः भारतस्य ऊर्जा सुरक्षायै अत्यावश्यकी वर्तते।
3: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months, diversified supplies.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में प्रधान गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को

0: बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमरीका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:05 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा में आइए सुनते हैं। गर्मियों में गुणकारी सत्तू विषय पर जानकारी।
3: भोजन में सत्तू का एक उल्लेखनीय स्थान रहा है। अनेक काव्य ग्रंथों से भी पता चलता है कि प्राचीन काल में युद्ध एवं यात्रा के दौरान राजा और सेनापति सहित उनकी सेनाएं सत्तू खाकर रहती थीं। आप अपनी पसंद के अनुसार नमकीन या मीठा दोनों तरह से सत्तू का सेवन कर सकते हैं। फिर आजकल तो जिंदगी बहुत तेज हो गई है, लोगों के पास समय की भारी कमी है। इस दृष्टि से सत्तू बहुत ही उपयुक्त देसी फास्ट फूड है। इसका सेवन नाश्ता, भोजन और ठंडा पेय तीनों ही रूपों में तुरंत किया जा सकता है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे सत्तू की। चना, मकई या जौ वगैरह को बालू में भूनने के बाद उसको आटा चक्की में पीसकर बनाए गए चून को सत्तू कहा जाता है। चने वाले सत्तू में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और मकई वाले सत्तू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। इन दोनों प्रकार के सत्तू को अकेले अकेले या दोनों को किसी भी अनुपात में मिलाकर सेवन आप कर सकते हैं। हमारे देश में अधिकतर लोग चने के सत्तू का सेवन करते हैं। आज तो विश्व के प्रमुख नगरों में जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, मॉस्को, पेरिस, टोक्यो, तेहरान आदि के बाजारों में चने का सत्तू बिकता नजर आने लगा है जो सिर्फ भारत में निर्मित और पैक होता है। इतना तो आप जानते ही होंगे कि चने से शरीर को बहुत अधिक एनर्जी मिलती है। प्रति 100 ग्राम चने के सत्तू से 372 कैलोरी मिलती हैं। चने के सत्तू में विटामिन ए की प्रचुरता प्रति 100 ग्राम में 0.14 मिलीग्राम रहती है, इसलिए इसके सेवन से आंखों की ज्योति भी अधिक बढ़ती है। चने में

0: फास्फोरस की मात्रा भी अधिक रहती है, इसलिए दिमागी कार्य करने वालों के लिए भी सत्तू का सेवन लाभकारी है। चना एक उत्तम बल प्रदान करने वाला खाद्य पदार्थ है। एक उत्तम शीतल पेय होने के चलते गर्मी के मौसम में इसकी मांग काफी बढ़ जाती है। चने का सत्तू भरी खस्ता कचौरी भी लोग बड़े शौक से खाते हैं, क्योंकि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। चने के सत्तू को गुणकारी और पौष्टिक माना जाता है। यदि चने के सत्तू में काला नमक, जीरा, सौंठ, धनिया इत्यादि मिला दिया जाए तो वो एसिडिटी, गैस्ट्रिक और कफ की शिकायत में लाभदायक तथा याददाश्त और आंखों की ज्योति बढ़ाने वाली एक उत्तम औषधि बन जाता है। हृदय रोगियों के लिए चने के सत्तू का सेवन लाभकारी माना गया है। चने के सत्तू में चौथाई भाग जौ का सत्तू मिलाकर समुचित मात्रा में शक्कर मिलाकर खाएं गर्मी के मौसम में बेहद फायदेमंद है। जौ का सत्तू तासीर में ठंडा, पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला, कफ तथा पित्त नाशक तथा मोटे व्यक्तियों को पतला करने वाला है। ये पानी में घोलकर पीने पर ताकतवर, शरीर को सुडौलता देने वाला, मल को निकालने में सहायक तथा बल और संतुष्टि देने वाला होता है। ये कफ, पित्त, भूख, प्यास और नेत्र रोग नाशक है। चावल का सत्तू भूख को बढ़ाने वाला, पाचन में हल्का, ठंडा, मधुर, रुचिकारक तथा बल बढ़ाने वाला होता है। गर्मी के मौसम में पानी में चने का सत्तू मिलाकर पीने से शरीर को ठंडक प्राप्त होती है, इसलिए लू लगने का डर नहीं रहता है। चना कफ नाशक है। यही कारण है कि रात को सोते समय एक पाव दूध में दो बड़ा चम्मच चने का सत्तू मिलाकर पीने से श्वास नली में जमा कफ सुबह निकल जाता है और खांसी मिटती है। गुड़ मिलाकर चने के सत्तू का रोज सेवन करने से कुछ ही दिनों में बहुमूत्रता या बार बार पेशाब आने की समस्या दूर हो जाती है। चने के सत्तू का सेवन सभी प्रकार के पाचन संबंधी रोगों में गुणकारी पाया गया है। इतने सारे अद्वितीय गुणों से भरपूर सत्तू का सेवन कीजिए और स्वस्थ रहिए।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे जानकारी, गर्मियों में गुणकारी सत्तू। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 7:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेती की बातें।
2: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, खेती बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं पशुओं में सही समय पर टीकाकरण के संबंध में। किसान भाइयों, हम सभी खेती किसानी करते हैं, साथ ही साथ पशुपालन भी करते हैं। भाई देखो, जब हम पशु रखते हैं तो भाई उनका हमें देखभाल करने की आवश्यकता होती है, तो भाई पशुओं में सही समय पर टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भाई हम उनको चारा खिलाते हैं, दाना मिश्रण खिलाते हैं। टीकाकरण पशुओं को विभिन्न संक्रामक बीमारियों और घातक बीमारियों से बचाने का सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। भाई कहते हैं, बचाव बेहतर है उपचार से, यानी कि यदि पशुओं का समय समय पर टीकाकरण किया जाए तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वे स्वस्थ रहते हैं। किसान भाइयों, स्वस्थ पशु अधिक दूध देते हैं, अच्छी वृद्धि करते हैं तथा किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, गाय भैंसों में मुख्य रूप से खुरपका, मुंहपका, FMD जिसे हम बोलते हैं, गलघोटू यानी के HS और लंगड़ा बुखार BQ जैसी बीमारियां पाई जाती हैं। किसान भाइयों, खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण प्रत्येक 6 महीने में लगाया जाता है और ये रोग पशुओं के मुंह और पैरों को प्रभावित करता है, जिससे दूध उत्पादन कम हो जाता है। गलघोटू रोग का टीकाकरण वर्ष में एक बार यानी के या तो गर्मी शुरू होने से पहले या भैया बरसात शुरू होने से पहले लगाना चाहिए। किसान भाइयों, ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है और कई बार हमारे पशुपालक भाइयों को काफी क्षति भी इस बीमारी के कारण हो जाती है। किसान भाइयों, लंगड़ा बुखार का टीकाकरण भी साल में एक बार लगाया जाता है, विशेषकर बरसात के मौसम से पहले। किसान भाइयों, बकरियों में और भेड़ों में PPR और एंट्रोटॉक्सिमिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण आवश्यक होता है। PPR का टीका साल में एक बार लगाया जाता है। ये बीमारी बहुत संक्रामक होती है और बड़ी संख्या में बकरियों को और भेड़ों को प्रभावित करती है। किसान भाइयों, इस प्रकार

0: प्रोटोक्सीमिया का टीका भी नियमित समय पर लगाना जरूरी हो जाता है। किसान भाइयों, टीकाकरण करते समय कुछ सावधानियां हमें रखनी आवश्यक होती हैं। पशु पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। बीमार या कमजोर पशु को टीकाकरण नहीं कराना चाहिए। भाई टीका हमेशा प्रशिक्षित पशु चिकित्सक या भैया अच्छे पशु चिकित्सक द्वारा ही लगवाना चाहिए। टीकों को सही तापमान पर सुरक्षित रखना जरूरी होता है, अन्यथा उनका प्रभाव कम हो जाता है। किसान भाइयों, टीकाकरण के बाद पशु को आराम और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें किसान भाइयों एक छोटी समस्या ये भी आती है कि जो हमारे पशु गाभिन होते हैं उनको भी हमें टीकाकरण नहीं कराना चाहिए, क्योंकि भाई जो हमारा पशु गर्भावस्था में है भैया, वो 5 महीने से यदि ऊपर का गाभिन पशु है हमारा, तो भाई उसको टीकाकरण हमें नहीं कराना चाहिए। हमें इस बात का थोड़ा सा भैया ध्यान रखना चाहिए। और भाई साथ ही साथ सरकार द्वारा कई स्थानों पर मुफ्त टीकाकरण अभियान भी चलाए जाते हैं। पशुपालकों को इन अभियानों में लाभ उठाना चाहिए, साथ ही साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। किसान भाइयों, टीकाकरण का फायदा तभी है जब पूरे गांव में या भैया एक पूरे मोहल्ले में टीकाकरण सभी पशुओं को किया जाए, क्योंकि भाई एक भी पशु यदि टीकाकरण से बचता है तो भाई उस बीमारी के आने का कारण कभी कभी वो पशु बन जाता है। और भाई हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यदि हमारा कोई पशु बीमारी से ग्रसित है या भैया बीमारी में आ गया है, तो भाई उसको हमें जो स्वस्थ पशु हैं हमारे उनसे अलग बांधना चाहिए। उसको भैया दाना चारा भी उसको अलग ही खिलाना चाहिए, क्योंकि ये भाई एक पशु से दूसरे पशु में फैलने वाली समस्या होती है। तो भाई इस तरह से यदि हम अपने पशुओं का ध्यान रखेंगे और समय का ध्यान रखेंगे और सही समय पर अपने पशुओं का टीकाकरण कराएंगे, तो भाई हम अपने पशुओं को संक्रामक बीमारियों से बचा सकते हैं और अपने पशुपालन व्यवसाय से अच्छा दूध उत्पादन लेकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर खेती एवं अन्य विषयों से जुड़ी जानकारी के साथ अवश्य उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। आज रात 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। प्रातः 9:15 पर कार्यक्रम जिले की हलचल हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे

पैंतीस मिनट पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1291वां भाग सुनवाया जाएगा। शास्त्रीय संगीत में दिन में 12:05 पर विजया गोडबोले का गाया राग शुद्ध सारंग सुनवाया जाएगा। दोपहर 1:15 पर आप सुनेंगे परिवार जगत के अंतर्गत लघु नाटिका उड़ान। दिन में 1:45 पर लोकधारा में सुनिएगा मीरा शर्मा के गाए भोजपुरी लोकगीत। संध्या 5 आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है सुनवाया जाएगा। युवाणी में शाम 5:15 पर कुछ खास है आज क्रम में चर्चा का विषय होगा ग्लो अप, सिर्फ लुक्स का नहीं माइंडसेट का भी होता है। बूझो तो जाने क्रम में प्लेबैक सिंगर आशा भोसले के से संबद्ध प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही श्रोताओं को की फोन कॉल्स पर आधारित क्रम रहेगा गपशप अड्डा। संध्या 6:05 पर कृषि जगत में चर्चा का विषय होगा पशुओं के लिए साइलेज का महत्व। शाम 6:45 पर विविधा में श्री रोहित कौशिक की पूर्व प्रसारित वार्ता का विषय होगा देश के विकास में जलमार्ग का योगदान। संध्या 7:32 पर शिया वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे मजलिसे अजा दरगाह आलिया नजफ हिंद के संपादित अंश पर आधारित रेडियो रिपोर्ट का चौथा भाग। और सुगम संगीत में संध्या 7:42 पर हम आपको सुनवाएंगे पुनीत मेहरा के गाए भजन। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। ताजमहल देखने आज आगरा जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। और प्रदेश में अभी और बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप, पूर्वी जिलों के लिए भीषण

0: का रेड अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चौपालों में राजस्ववाद, घरेलू हिंसा, अवैध वसूली और स्थानीय स्तर की शिकायतों का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। श्री योगी ने IGRS और CM हेल्पलाइन से मिली शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टिपरक निस्तारण पर बल देते हुए कहा कि शिकायतों में किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गंगा दशहरा और बकरीद को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित प्रदेश के हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत सहित ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन और डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के साथ ही फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आंधी तूफान के बावजूद विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने को भी कहा। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने के लिए पुलिस रेडियो यूनिट को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस की लोकेशन, मूवमेंट और संचार गतिविधियों की गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं कल शाम को ही आयुष विभाग की एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस नीति 2026 को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों तथा तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। ये निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने कल वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान ये तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, केनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव लाने के निर्देश दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 28 मई को प्रस्तावित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2026 स्थगित कर दिया है। NTA के अनुसार बकरीद की छुट्टी की तारीख में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _ उपलब्ध है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज आगरा में ताजमहल देखने जाएंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री के ताजमहल भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: इस बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने महिलाओं के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कल लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के साथ वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान बसपा प्रमुख ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी को तैयारियों के हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त तथा मुस्तैद बनाने की जरूरत है। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर में आज से गंगा दशहरा पर्व का आयोजन हो रहा है। पुलिस प्रशासन ने कल डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल से ही रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया। एक रिपोर्ट।
3: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंचे।

0: पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, समाचार, हापुड़।
1: मौसम विभाग ने प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहने की चेतावनी दी है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।
2: जैसा कि पिछले

0: रिपोर्ट होने की संभावना है।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिन के समय कुछ स्थानों पर कल तक के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट भी जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। ताजमहल देखने आज आगरा जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। और प्रदेश में अभी और बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप। पूर्वी जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान, सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद, अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त, यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन, यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक, जब भी आप चलाएं कोई वाहन ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
2: मीडियम वेव 400,
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रस्तुत है सूरज के साथ साथ कार्यक्रम।

सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे तिथि विशेष पर जानकारी। जानकारी होगी अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस पर, जानकारी होगी विश्व फुटबॉल दिवस पर, और चर्चा का विषय होगा विश्व थायराइड दिवस के अंतर्गत खराब दिनचर्या और गलत खान पान विषय पर। अखबारों की सुर्खियां भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगी और फिल्मी गीत तो होंगे ही। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। साथियों, सुख सुविधाओं से युक्त इस आधुनिक दौर में हम और हमारी नई पीढ़ी घर पर ही झटपट तैयार किए गए या बाहर से ऑर्डर किए गए खाने की आदि होती जा रही है। ये तरकीब सुविधाजनक तो है, समय भी बचा देती है, लेकिन खाने की गुणवत्ता और पोषक

तत्वों की कमी के कारण बहुत जल्दी हमारा शरीर बहुत सी बीमारियों का घर बन जाता है। इन्हीं बीमारियों में से एक है थायराइड। हमारी जीवन शैली गलत खानपान और खराब दिनचर्या के चलते हमारे स्वास्थ्य के चौपट हो जाने का कारण बन गई है। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ जीवन के आधारभूत तत्व जैसे हवा, पानी और भोजन हमें पूरी शुद्धता के साथ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए सचेत हो जाएं और थोड़ा परिश्रम करें ताकि भोजन से अधिकाधिक पोषण प्राप्त किया जा सके। अपने खान पान की आदतों में सुधार लाएं और प्रकृति से नज़दीकी बनाएं। बीमारियों से बचने का सूत्र है कि खाना जायके के लिए नहीं स्वस्थ रहने के लिए खाएं। आज हम मना रहे हैं विश्व थायराइड दिवस। ये दिन हर साल 25 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य थायराइड ग्रंथि के महत्व, इससे जुड़ी बीमारियों और शुरुआती जांच के प्रति लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, थायराइड होने का प्रमुख कारण ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे हाशिमोटो रोग और ग्रेव्स रोग, शरीर में आयोडीन की कमी या अधिकता, तनाव, अनुवांशिकता और खराब जीवन शैली आदि हैं। ये कारक थायराइड ग्रंथि द्वारा हार्मोन के अत्यधिक या बहुत कम उत्पादन का कारण बनते हैं। वर्तमान में 4.2 करोड़ से अधिक भारतीय थायराइड की समस्याओं से पीड़ित हैं। थायराइड की कमी में अचानक वजन बढ़ना, थकान, बालों का झड़ना, कब्ज और ठंड बर्दाश्त न होना जैसे लक्षण पाए जाते हैं। इसी तरह थायराइड की अधिकता में बिना कारण वजन कम होना, घबराहट, दिल की धड़कन तेज हो जाना, अधिक पसीना आना और नींद न आना जैसे संकेत पाए जाते हैं। एक साधारण रक्त परीक्षण से थायराइड की स्थिति का पता चलता है। दवाइयां और डॉक्टर की नियमित सलाह से थायराइड को 6 से 12 हफ्तों में पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। तो साथियों, सचेत रहें और स्वस्थ रहें।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: श्रोताओ, फुटबॉल दुनिया में सबसे ज्यादा देखा और पसंद किया जाने वाला खेल है। इसके प्रशंसकों की अनुमानित संख्या 3.5 अरब से 4 अरब के बीच है। इसका मुख्य आयोजन फीफा विश्व कप दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल आयोजन है। इसी साल फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ फीफा विश्व कप का आयोजन 11 जून से 19 जुलाई के बीच किया जा रहा है। ये इतिहास का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें 48 टीमें हिस्सा लेंगी और इस आयोजन में कुल 104 मैच खेले जाएंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि फीफा विश्व कप 2026 शुरू होने में अभी 17 दिन बाकी हैं, तो हम अभी से इसकी चर्चा भला क्यों कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं। आधुनिक फुटबॉल यानी सॉकर का इतिहास यूं तो लगभग 160 वर्ष पुराना है, जिसकी आधिकारिक शुरुआत सन 1863 में इंग्लैंड में नियमों के मानकीकरण के साथ हुई थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 मई 2024 को सर्वसम्मति से हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस आधिकारिक रूप से घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया था। तो इस तरह आज हम मना रहे हैं विश्व फुटबॉल दिवस। श्रोताओं, फुटबॉल का खेल भले ही बहुत पुराना हो, लेकिन विश्व स्तर पर एक दिवस के रूप में इसे मनाए जाने का सिलसिला अभी 2 साल पहले ही शुरू हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसको मनाए जाने का संदर्भ 100 साल से भी अधिक पुराना है। आज जो विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जा रहा है वो याद दिलाता है 25 मई 1924 को पेरिस में हुए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार आयोजित किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की, जिसमें दुनिया भर के सभी क्षेत्रों की टीमों ने हिस्सा लिया था। ये दिन फुटबॉल के इस महान खेल की वैश्विक लोकप्रियता, शांति, कूटनीति, सामाजिक समावेश और विभिन्न संस्कृतियों को एकजुट करने की इसकी भूमिका का जश्न मनाता है। इस साल होने वाले फीफा विश्व कप का उद्घाटन मैच 11 जून को मैक्सिको सिटी के ऐतिहासिक स्टेडियम में खेला जाएगा और इसका फाइनल मुकाबला होगा 19 जुलाई को न्यूयॉर्क में। आप भी आनंद लीजिएगा इस फुटबॉल विश्व कप का। दोस्तों, समाज की बुनियाद होता है परिवार, और परिवार का वजूद कायम रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी सौंप दी जाने वाली विरासत से। इस विरासत में संस्कार भी होते हैं।

परंपराएं भी होती हैं और होती है वो मालो दौलत और जायदाद भी जो कोई बाप अपनी सारी उम्र की कमाई अपनी संतानों को सौंप कर किसी दिन खाली हाथ दुनिया से रुखसत हो जाता है। मानव समुदाय में सदियों से यही परंपरा चली आ रही है, लेकिन इसी के समानांतर अपराध जगत के दरिंदे बच्चों के अपहरण का कारोबार चलाते हैं और मात पिता को दे जाते हैं ऐसा दुख जो जीवन पर्यंत नहीं जाता। आज दुनिया भर में हर साल हजारों बच्चे लापता हो जाते हैं। इनमें से कई बच्चे मानव तस्करी, बाल मजदूरी, अपहरण और अपराधों का शिकार बनते हैं। छोटे बच्चों के मेलों, बाजारों, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में परिवार से बिछड़ने की घटनाएं भी आम हैं। श्रोताओं, ये समस्या वैश्विक है और इसको नियंत्रित करने के प्रयास भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार किए जाते हैं। आज 25 मई है और आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। इस दिन की शुरुआत हुई थी सन 1983 में अमेरिका से। हुआ यूं था कि 25 मई सन 1979 को न्यूयॉर्क शहर में 6 साल के बच्चे एटन पेड्स के लापता होने की घटना के बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इस तारीख को राष्ट्रीय लापता बाल दिवस घोषित किया था। आगे चलकर साल 2001 में मिसिंग चिल्ड्रन यूरोप और यूरोपीय आयोग के संयुक्त प्रयासों से इसे औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मान्यता दी गई। यदि आप भारत में लापता बच्चों की खोज या सहायता से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भारत सरकार के खोया पाया पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं, जो गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए नागरिकों और पुलिस के बीच एक साझा मंच है। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस हमें ये याद दिलाता है कि हर बच्चा सुरक्षित बचपन का अधिकार रखता है। किसी बच्चे का गुम होना केवल एक परिवार का दुख नहीं बल्कि पूरे समाज की चिंता का विषय होना चाहिए।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

श्रोताओं, अब जान लेते हैं आज के दिन हो चुकी प्रमुख घटनाओं के बारे में। आज सोमवार 25 मई है, मौजूदा साल 2026 का 145वां दिन। दोस्तों, उर्दू शायरी में खास मकाम रखने वाले शायर नवाब मिर्जा खां यानी दाग दहलवी का जन्म 25 मई 1831 को हुआ था। उनकी गजल ने उर्दू को वो पुख्तगी बख्शी जिसमें बारीक से बारीक ख्याल के इजहार की नई उम्मीदें थीं। गालिब भी दाग के इस अंदाज से मुतासिर हुए बिना नहीं रह सके। दाग दहलवी के चार दीवान हैं, गुलजार दाग, आफ्ताब दाग, महताब दाग और यादगार दाग। प्रख्यात वकील, शिक्षाविद और क्रांतिकारी राज बिहारी बोस का जन्म बंगाल के वर्धमान जिले में 25 मई सन 1886 को हुआ था। प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत में सशस्त्र क्रांति की जो योजना बनाई गई थी वो रास बिहारी बोस के ही नेतृत्व में निर्मित हुई थी। सन 1937 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्र संघ की स्थापना की और सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज के निर्माता भी वही थे। इसी संगठन के आधार पर

सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था। दोस्तों, परंपरागत शायरी को नए अंदाज में प्रस्तुत करने वाले शायर मीरा जी का असल नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार था। 25 मई 1912 को लाहौर में पैदा हुए सनाउल्लाह शुरुआत में सामरी तखल्लुस से शायरी करते थे। लाहौर में उनकी मुलाकात एक बंगाली लड़की मीरा सेन से हुई और फिर मोहब्बत ऐसी परवान चढ़ी कि सनाउल्लाह ने अपना तखल्लुस सामरी से मीरा जी रख लिया। सन 1941 में मीरा जी ने ऑल इंडिया रेडियो में भी अपनी सेवाएं दी थीं। ख्याति प्राप्त बैरिस्टर और शिक्षाविद सर आशुतोष मुखर्जी कोलकाता यूनिवर्सिटी के उप कुलपति रहे। उन्होंने 1908 में कलकत्ता गणितीय सोसाइटी की स्थापना की और 1914 में वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के प्रथम अध्यक्ष भी रहे। आधुनिक बंगाल के निर्माता की पहचान रखने वाले आशुतोष मुखर्जी की चार संतानों में से एक थे भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी की मृत्यु 25 मई 1924 को पटना में एक मामले पर बहस के दौरान हुई थी। 25 मई 1933 को त्रिनिदाद के प्रिंसटाउन में बासदेव पांडे का जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा त्रिनिदाद में, कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई यूनाइटेड किंगडम में पूरी करने के बाद वे लिंक्स इन से बैरिस्टर बने। सन 1995 से 2001 तक त्रिनिदाद और टोबेगो के पांचवें प्रधानमंत्री रहे। बासदेव ने त्रिनिदाद में भारतीय आगमन दिवस को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मान्यता दिलाई थी। सन 2005 में उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। निर्माता, निर्देशक, स्क्रीन राइटर, कास्ट्यूम डिजाइनर और अभिनेता करण जौहर को केजो नाम से भी जाना जाता है। करण ने अपने चचेरे भाई आदित्य चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सहायक निर्देशक और अभिनेता के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश किया था। बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म थी कुछ कुछ होता है। वे अविवाहित लेकिन सरोगेसी के माध्यम से उत्पन्न दो जुड़वां बच्चों यश और रूही के पिता हैं। सन 1972 को मुंबई में जन्मे करण जौहर का आज जन्मदिन है। लक्ष्मीकांत ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उस्ताद हुसैन अली से और वाद्य यंत्र मैंडोलियन बजाने की तालीम बाल मुकुंद इंदौर कर से ली थी। शुरू में कल्याण जी आनंद जी के सहायक के तौर पर उन्होंने मदारी, सट्टा बाजार और छलिया जैसी कई फिल्मों में काम किया। फिर वो दिन भी आया जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ जोड़ी बनाकर हिंदी सिनेमा पर वो छा गए। इस जोड़ी ने 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 25 मई 1998 को लक्ष्मीकांत का निधन हो गया। हिंदी सिनेमा में सुनील दत्त एक ऐसे व्यक्तित्व के तौर पर याद किए जाते हैं जिन्होंने फिल्म निर्माण, निर्देशन और अभिनय से लगभग 4 दशकों तक सिनेमा प्रेमियों का भरपूर मनोरंजन किया। सन 1955 में रिलीज फिल्म रेलवे प्लेटफार्म उनकी पहली फिल्म थी। वे 2004 से 5 के दौरान भारत सरकार में युवा मामलों और खेल विभाग में कैबिनेट मंत्री भी रहे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड 2 बार प्राप्त करने वाले सुनील दत्त की 25 मई 2005 को मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में दर्ज आज की तिथि की प्रमुख घटनाओं के बाद अब एक दृष्टि अखबारों की सुर्खियों पर भी डाल लेते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच गत 3 महीनों से जारी तनाव को कम करने के संकेत मिलने लगे हैं। ईरान की ओर से तैयार 14 सूत्री शांति समझौते के मसौदे पर अमेरिका की के सहमति देने, समझौते के पहले चरण में औपचारिक रूप से युद्ध समाप्ति की घोषणा, दूसरे चरण में हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सामान्य आवाजाही के लिए खोलने और तीसरे चरण में व्यापक समझौते के लिए विस्तृत वार्ता शुरू करने की योजना की खबर दैनिक जागरण ने विस्तार से प्रकाशित की है। भीषण गर्मी देश के बड़े हिस्से को लगातार झुलसा रही है। मौसम विभाग के अलर्ट से संबंधित समाचार को प्रकाशित करते हुए दैनिक अमर उजाला ने सुर्खी लगाई है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। सुबह के 8 बजे हैं, अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: बदल गया है, जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
4: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा

0: छात्र सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
1: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
5: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।

0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
1: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, पालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hiked by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jayashankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
4: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
3: News Services Division of Akashwani will broadcast special programs as part of a series People's Padma on Akashwani.
5: We launched the environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of the Darjeeling Hill Forest had hardly been

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसां सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह एतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और IPL क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा अब तक की पहली सिविल अवार्ड से मुतालिक एक तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड होते हैं जो 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड अदा करेंगी जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अवार्ड हैं। बकिया पद्म अवार्ड इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड हैं। इनाम याफ्तगान में 19 खवातीन शामिल हैं जबकि 16 अफराद को बाद अज मर्ग इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड हैं। इन्हें 1954 में शुरू किया गया था और इनका ऐलान हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। ये अवार्ड लोगों के इम्तियाजी कामों के एतराफ में दिए जाते हैं जिनमें आर्ट, लिटरेचर, तालीम, खेलकूद, दवाएं, सामाजिक काम, साइंस और इंजीनियरिंग, अवामी उमूर और तिजारत और सनत के मैदान शामिल हैं। प्रिया मोंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: पद्म अवार्ड अदा किए जाने के मौके पर हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म के तौर पर खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं।
2: We launched the environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
3: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोग रोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
4: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में असंग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।

0: 250 साल पूरे होने के मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को दहशतगर्दी हरगिज बर्दाश्त न करने के बारे में हमेशा वाज़ेह रहना चाहिए और इसी वजह से दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए उनका तआवुन निहायत अहम है। उन्होंने कहा कि दोनों की मुश्तरका दिलचस्पी आलमी मईशत को दरपेश खतरात को खत्म करने और दुनिया को मजीद मौके फराहम करने में है। वजीर खारजा ने कहा कि बहुत से मौके ऐसे होते हैं जिनसे दोनों मुल्कों को बहुत से मैदानों में मौसर दिफाई शराकत दार बनने के मौके मिलते हैं। अमरीकी वजीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो के दौरे का जिक्र करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस दौरे से मौजूदा दौर में भारत अमरीका ताल्लुकात की अहमियत का इजहार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक साल पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों की पायदार शराकत दारी को मजीद फरोग देने का एक रास्ता कायम किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमरीकी सफीर सर्गियो गोर को फोन किया। उन्होंने ये फोन कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में अमरीका की आजादी के 250 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब के दौरान किया। अमरीकी सदर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक दोस्त करार दिया और कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कभी इतने करीबी नहीं रहे। जनाब ट्रंप ने कहा कि वो भारत को पसंद करते हैं, यहां तक कि उन्होंने खुद को वजीर आजम मोदी का एक बिग फैन करार दिया। जनाब ट्रंप ने कहा कि भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। अमरीकी सफीर ने अपने फोन का रुख माइक्रोफोन की तरफ कर दिया ताकि सामईन ट्रंप की ये बातें सुन सकें। इस तकरीब में वजीर खारजा एस जयशंकर, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और अमरीका के सफीर सर्गियो गोर ने शिरकत की। अमरीकी सदर ने यह राजधानी अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत के चार रोजा दौरे के दौरान की है। जनाब रूबियो ने वजीर आजम मोदी से हफ्ते को मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कल वजीर खारजा एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने नुमाइंदों से कहा है कि वो ईरान के साथ मुआहदा करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि उनकी इंतजामिया को इस 3 महीने की जंग में किसी फौरी पेशरफ की उम्मीदें कम हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया के तहत ईरान के साथ मुस्तकबिल में किसी भी मुआहदे में कोई माली रियायतें शामिल नहीं होंगी और ये मुआहदा बुनियादी तौर पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की मुद्दत कार के दौरान हुए मुआहदे से मुख्तलिफ होगा। उन्होंने ओबामा के दौरे हुकूमत में ईरान के साथ हुए न्यूक्लियाई माहदे की सख्त नुक्ताचीनी की। नीज ये दावा किया कि उनकी तरफ से मुजवजा माहदा तेहरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकेगा और ये माहदा साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की तरफ से किए गए माहदे से मुख्तलिफ होगा। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान आज से सालाना 5 रोजा मनासिक हज का आगाज हो रहा है। भारत समेत दुनिया भर से 16 लाख से ज्यादा आजमीन हज सऊदी अरब में मक्का मौजमा से मीना के लिए रवाना हो रहे हैं। वो मीना में रात के क्याम के बाद कल सुबह वकूफ अरफा के लिए मैदान अरफात जाएंगे। इस साल भारत से 1,75,000 आजमीन फरीजा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं। बांग्लादेश में भारत के सुबुकदोश हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने कल बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान से अलविदाई मुलाकात की। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर जारी एक पोस्ट के मुताबिक वजीर आजम ने जनाब प्रणय वर्मा की भारत बांग्लादेश ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनकी खिदमात को सराहा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 204 रन का निशाना दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद पर महज 163 रन बना सकी। ओस्लो में पहले राउंड के मुकाबलों के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज हो गया है। अलबत्ता इस टूर्नामेंट का आगाज सरकारी तौर पर आज भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा। ये नॉर्वे शतरंज का 14वां और नॉर्वे शतरंज खवातीन का 3रा टूर्नामेंट है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर चलने के हवाले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना के बाज़ इलाकों में भी दिन के दौरान शदीद गर्मी की सूरत हाल रहने का इम्कान है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक खबर को

अपना बना के देखो। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। गीतकार थे SH बिहारी और संगीतकार थे रवि।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: आशा भोसले के स्वर में आप सुन रहे थे जोगी फिल्म का गीत। बोल थे शकील बदायूनी के और धुन रवि की थी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे शैलेंद्र का लिखा गीत। शंकर जयकिशन ने इस गीत की धुन तैयार की थी जिस देश में गंगा बहती है फिल्म के लिए। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से मीडियम वेव 314.47 मीटर पर।

गोरा और काला, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार थे आनंद बख्शी और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं रवि के संगीत निर्देशन में गुमराह फिल्म का गीत। आवाज महेंद्र कपूर की है और शब्द रचना साहिल लुधियानवी की।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:15 हुए हैं। कार्यक्रम जिले की हलचल कुछ ही पलों में लखनऊ केंद्र से रिले की जाएगी।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए कन्नौज और पीलीभीत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल, आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का।
2: कन्नौज जिले में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। तापमान 41 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। भीषण गर्मी से बचाव के लिए शासन ने बजट आवंटित किया है। इस धनराशि से प्रशासन ने जिले के तीनों रोडवेज बस स्टॉप पर दो दो कूलर लगवाए हैं। इसके साथ ही गुड़ और ORS की व्यवस्था भी की गई है। आम जनता की सुविधा के लिए कलेक्ट्रेट में भी प्याऊ की व्यवस्था की गई है। यहां भी लोगों को शीतल जल के साथ साथ गुड़, पेठा और गट्टा उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी दोस्त मोहन अग्नोत्री ने बताया कि लोगों को गर्मी और लू से बचाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
3: जनपद कन्नौज में रोडवेज बस स्टैंड कन्नौज, गुरसाहेगंज और छिबरामऊ तीन जगहों पर हम लोगों ने दो दो बड़े कूलर लगवाए हैं। साथ ही साथ इन जगहों पर गुड़, पानी और ORS के पैकेट भी रखे गए हैं। नगर निकाय की ओर से इसमें कर्मचारी भी लगाए गए हैं। 24 घंटे कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। जो नागरिक आते हैं वो बुला करके और हम लोग देख करके उनको स्वच्छ पेयजल भी देंगे, साथ ही साथ उनको ORS के पैकेट भी रहेंगे। इस समय चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, नागरिक सुरक्षित रहें, वो जागरूक रहें और उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसलिए इस प्रकार की की जा रही हैं।
2: कन्नौज जिले में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत जनपद के 11 चयनित विद्यार्थियों में निहित वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना को सराहा जा रहा है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को मॉडल और प्रोजेक्ट के रूप में साकार कर जनपद का गौरव बढ़ाया है। जिला प्रशासन विद्यार्थियों के अभिनव मॉडल और प्रोजेक्ट को पेटेंट कराने, छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने तथा उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रयास है। कन्नौज जिले में संसाधनों का सम्मान अभियान चल रहा है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी पर अंकुश लगेगा। अभियान के तहत लोगों से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी पाने पर सूचना कमांड सेंटर 1077 पर दें। दिन में जलती हुई स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक स्थानों पर बहता पानी, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक परिसरों में अनावश्यक रूप से जल रही लाइटें, जागरूक नागरिकों को सम्मानित भी किया जाएगा ताकि समाज में जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना मजबूत हो सके। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि संसाधनों की बचत केवल प्रशासन की ही नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जन सहभागिता से ही जिले को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सकता है। कन्नौज जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत शिवरामऊ में 100 और उमरदा में 116 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब तकनीक से सशक्त होकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां एवं सहायिकाएं मात्र शिशु पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित सेवाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचा सकेंगी। यह पहल सहायिकाओं के उत्साहवर्धन के साथ आंगनबाड़ी सेवाओं के डिजिटलीकरण और सुदृढ़ क्रियान्वयन की दिशा में एक सार्थक सिद्ध होगी। कन्नौज जिले में वेटलैंड के संरक्षण के लिए प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में इस्माइलपुर, रोंसा और निघो खास में एवं असेह में स्थित वेटलैंड को अधिसूचित किए जाने का काम शुरू हो चुका है। आर्द्रभूमि शक्तिशाली कार्बन सिक है, जो किसी भी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं।

0: जिससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में मदद मिलती है। जनपद में 100 वेटलैंड चिन्हित किए गए हैं। इन वेटलैंड के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने वेटलैंड के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है। कन्नौज जिले की 499 ग्राम पंचायतों में 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना लागू होगी। योजना को साकार करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वर्तमान में करीब 1,00,000 श्रमिक पंजीकृत हैं, जिन्हें नई व्यवस्था के तहत रोजगार और आजीविका से जोड़ा जाएगा। नई योजना के तहत मनरेगा की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार स्थायी आजीविका और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर होगा। योजना के तहत श्रमिक परिवार की महिला सदस्य को जॉब कार्ड में शामिल कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद में 25,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार देने की तैयारी है। मजदूरी का भुगतान सीधे महिलाओं के बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाएगा, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। पुराने 100 दिनों के प्रावधान के बजाय अब हर ग्रामीण परिवार के सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। पुराने मनरेगा जॉब कार्ड की जगह अब नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बनेंगे। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए चेहरा पहचानने वाली तकनीकी विशेष सुविधा होगी। हर गांव में विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार होगा। ग्राम सभा की मंजूरी के आधार पर विकसित कार्य होंगे। कन्नौज जिले में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 51 परिवारों को 1,97,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता को शासन ने स्वीकृति दे दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त बजट के सापेक्ष पात्र दावेदारों को जल्द आर्थिक सहायता मिलेगी।
1: कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्रा का।
2: पीलीभीत जिले में इस समय भीषण गर्मी से हर कोई बेहाल है। इसके चलते स्कूल कॉलेजों में अवकाश कर दिया गया है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने गर्मी से बचाव हेतु पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
3: सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगवाए हैं और पानी की व्यवस्थाएं की हैं। जितने वाटर कूलर थे नगर पालिकाओं के टाउन एरिया के, वो हम लोगों ने सही कराए हैं और निर्देशित किया सभी ईओ को कि वो एक बार चेक करा लें जो वाटर कूलर शहर में लगे हुए हैं उनमें प्रॉपर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और खासतौर से बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्थाएं कराएं। और ग्राम प्रधानों से भी हम लोगों ने अपील की है कि वो गाँव में भी देख लें कि कोई भी जानवर प्यासा ना रह जाए। इसलिए जो भी तालाब है हमारे और सार्वजनिक स्थान है जो ग्रामीण क्षेत्र उनकी भी व्यवस्था की गई है।
2: गर्मी का असर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पशु पक्षियों पर भी देखने को मिल रहा है। बाघ हिरण आदि जीव जंगल से बाहर खेतों व सड़कों पर टहलते नजर आ रहे हैं। टाइगर रिजर्व प्रशासन ने वन्य जीवों की प्यास बुझाने हेतु सभी ताल पोखरों को नहर व नालों के जरिए भरवाने की व्यवस्था की है। प्रभागीय वन अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि जंगल के बीच कई तालाबों को सौर ऊर्जा चालित पंपों से भी भरा जा रहा है। पीलीभीत में एक जनपद एक नदी योजना के तहत गोमती व खन्नौर नदियों का पुनरोद्धार कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, विधायक बाबूराम पासवान, स्वामी प्रवक्तानंद, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर दलजीत कौर सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी स्नेह कार्य में योगदान दे रहे हैं। बाघ और बांसुरी के साथ पीलीभीत की पहचान बासमती उत्पादन के लिए भी है। जिले के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के प्रयासों से अब बांसमती की महक और बढ़ने जा रही है। जिले में बांसमती बीज उत्पादन शोध व निर्यात केंद्र की स्थापना करोड़ों की लागत से कराई जा रही है। इस केंद्र को 7 एकड़ जमीन हस्तांतरित कराने के अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा,
4: ये जो बासमती जैविक प्रशिक्षण केंद्र और सह प्रदर्शन का फार्म जो बनेगा, ये इस क्षेत्र के लिए मेरे लिए कहने की मुझे गर्व महसूस होता है कि ये पीलीभीत जनपद बांसुरी के लिए जाना जाता है। ये पीलीभीत जनपद यहाँ के प्राकृतिक धरोहर जंगल है, यहाँ के शेर है, उसके लिए जाना जाता है। मगर आने वाले समय में ये बासमती चावल का जो कटोरा है उसके लिए जाना जाएगा।
2: पीलीभीत जिले में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार ने जिले की आपूर्ति व वितरण व्यवस्था को सामान्य व नियंत्रण में बताया है। उन्होंने लोगों से डीजल, पेट्रोल व कुकिंग गैस की अनावश्यक खरीद व भंडारण से बचने को कहा है। पीलीभीत जिले में पुरुषोत्तम मास में कथा, भागवत, भजन, कीर्तन, यज्ञ व भंडारों जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तकिया दीनारपुर स्थित महाकाली मठ व पीताम्बरा पीठ पर महंत बाबा सूरजगिरी जी द्वारा सचंडी महायज्ञ कराया गया। ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर मंदिरों पर सुंदर हनुमान चालीसा व भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं। पीलीभीत में इस समय साठा धान व गन्ने की फसल खेतों में हरियाली बिखेर रही है। गन्ने की उपज का सर्वे गन्ना विकास विभाग द्वारा शुरू करा दिया गया है। जिला गन्ना अधिकारी खुशी राम भार्गव ने बताया,
5: वर्तमान में गन्ना सर्वे का काम चल रहा है। पूरे जनपद में 144

0: टीमें बनी हुई हैं और ये 144 टीमें जनपद की चीनी मिलें और जो जनपद से बाहर की चीनी मिलें हैं उनका गन्ना सर्वे कर रही हैं। गन्ना सर्वे का काम गन्ना पर्यवेक्षकों द्वारा किया जा रहा है और इसकी मॉनिटरिंग ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पूरनपुर, बीसलपुर, बरखेड़ा और मझोला के द्वारा की जा रही है। सभी जो किसानों का सर्वे होना है वो 30 जून तक सर्वे होना है। 1 मई से सर्वे की शुरुआत हुई थी और 30 जून तक गन्ना सर्वे का कार्य पूर्ण किया जाना है।
1: पीलीभीत जिले में जनगणना 2027 के तहत इस समय मकानों की गिनती का कार्य तेजी से चल रहा है। 7 से 21 मई के बीच ऑनलाइन माध्यम से सुगणना की गई और अब गणना कर्मी घर घर जाकर गणना कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कई जगह इसका निरीक्षण भी किया है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गंगा दशहरा पर्व पर विशेष गंगा गीत। गायक कलाकार हैं रजनी टोंक।

0: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित
1: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती।
0: किसान भाई सुनेंगे हर माह के अंतिम मंगलवार को शाम 6:05 पर
1: बासमती धान से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं के बारे में।
0: स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से जानकारी लेने के लिए हमारे फोन नंबर है
1: 0134123015
0: और हमारा मोबाइल नंबर है 9457082888।
1: बासमती धान की गुणवत्ता युक्त जानकारी लेने के लिए सुनते रहिए
0: हर माह के अंतिम मंगलवार को बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित
1: सजीव फोन इन कार्यक्रम
2: हेलो बासमती।

अभी आप सुन रहे थे रजनी टॉक के स्वर में गंगा दशहरा पर्व पर विशेष गंगा गीत। ढोलक पर आपके साथ संगत कर रहे थे रामकेश, हारमोनियम पर थे अखिलेश कुमार और बेंजो पर परवेज। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 9:50 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बात आसपास की।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आसपास की में आपका स्वागत है। मैं हूँ इशिका कौशिक
1: और मैं दिव्यम कंडवाल।
0: और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं, बात आसपास की हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अपने आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, साथ ही स्थानीय समस्याओं और मुद्दों पर भी आपका ध्यान केंद्रित करते हैं।
1: श्रोताओं, आज पूरा देश माँ गंगा के धरती पर अवतरण का पर्व यानी गंगा दशहरा मना रहा है।

0: पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ की तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हुई, जिनका जल भगवान शिव ने अपने जटाओं में समाहित कर धीरे धीरे धरती पर अवतरित किया और मानव जाति का कल्याण हुआ।
1: श्रोताओं, आज कार्यक्रम बात आसपास की में हम सीधे आपको ले चलेंगे बिजनौर जनपद के दो सबसे बड़े आस्था केंद्रों पर। एक तरफ महाभारत कालीन इतिहास को समेटे दारा नगर गंज की ऐतिहासिक विदुर कुटी, वहीं दूसरी तरफ लहरों की अटखेलियां करता भव्य बैराज घाट। गंगा दशहरा के अवसर पर यहां भोर से ही हर हर गंगे के जयकारों की गूंज शुरू हो जाती है। आइए इस पावन पर्व को जानने के लिए जुड़ते हैं पंडित अनुज शर्मा के साथ।
0: श्रीमान, महात्मा विदुर की इस पावन भूमि विदुर कुटी का क्या ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है?
2: ऐतिहासिक ये है कि महावर से पहले महात्मा विदुर यहाँ करके उन्होंने तपस्या की और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी संधि के प्रस्ताव लेकर जब द्वारका हस्तिनापुर आए, उन्होंने भी पांडव पक्ष बात रखी। महादुर्योधन ने कहा कि मैंने युद्ध के उनको कोई सिंह बराबर भी जंगल नहीं दूंगा। तो उसके बाद उनके 56 प्रकार के भोग को छोड़ करके भगवान इस स्थान पर आज मियाँ विदुर कुटी और उन्होंने यहाँ करके महात्मा विदुर के हाथ से बथुआ का साग खाया, जो कि वो बथुआ आज भी उसी समय से चला रहा है कि बथुआ हमेशा हरा रहता है। अभी आपने बाहर देखा कि बथुआ कैरियों में है, वो बथुआ यहाँ प्रसाद के रूप में दे जाता है।
0: यहाँ पर गंगा दशहरा जो मनाया जाता है उसके विषय में थोड़ा बताइए।
2: गंगा दशहरा की यह है कि जैसे मान लिया हमारे सामने गंगा जी का घाट है, उस पर सभी श्रोताएं अपना आते हैं और स्नान करके अपना मंदिर घूम के सभी जाते हैं। आसपास के सभी क्षेत्र लोग अपने यहाँ स्नान करने और अपने जो दुकानें वगैरह वो सब लगती हैं। प्रशासन की भी अपनी व्यवस्था रहती है।
1: सर, विदुर कुटी पर कौन से विशेष कार्यक्रम या पर्व मनाए जाते हैं?
2: कार्यक्रम ये है कि जैसे मान लिया तो कार्तिक पूर्णिमा का जो मेला लगता है उसमें यहाँ कार्यक्रम अपना कुछ ना कुछ चलता रहता है और अगस्त में भी एक मेला लगता है और भागवत कथा जैसे जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दीपावली, अपने कुछ ना कुछ यहाँ पर्व चलता रहता है।
0: महात्मा विदुर की इस पावन धरती पर गंगा स्नान करने का क्या विशेष महत्व है?
2: इसका ये विशेष महत्व है कि कार्तिक पूर्णिमा जो एक सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, उसमें हमारे जो पितृ मिलाने होते हैं जिनको बोलते हैं, जैसे मान लिया किसी के यहाँ मृत्यु होती है तो उनको पितृ मिलाने के लिए यहाँ पर आकर के उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि जैसे कुछ बच्चों के सिर मुड़ते हैं और पितृ मिलाना अपना गंगा जी से स्नान करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, यही उसका विशेषता है।
0: श्रोताओं, गंज के पास स्थित विदुर कुटी वो जगह है जहाँ कदम रखते ही द्वापर युग का एहसास होने लगता है। महात्मा विदुर की भक्ति और भगवान कृष्ण के आगमन की साक्षी इस भूमि पर गंगा स्नान का एक अलग ही महत्व है। यहाँ के इतिहास और महत्ता को समझने के लिए आइए सुनते हैं विदुर कुटी में हुई हमारी बातचीत के और कुछ मुख्य अंश। सर, हमारे श्रोताओं के लिए एक संदेश।
2: मैं यही चाहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ विदुर कुटी क्षेत्र है, इस पावन भूमि पर जो कि भगवान श्री कृष्ण के साक्षात चरण पड़े हुए हैं, कि सभी श्रोता यहाँ आए, दर्शन करें और जो हमारा जो बथुआ का जो प्रसाद है उसको भी ग्रहण करें। हम यही चाहेंगे

0: ये जो हमारे यहाँ गंगा जी का किनारा है, लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर आसपास है, अपना महास्नान करें और मधुकुटी मंदिर घूमें, आसपास की जो आश्रम वगैरह यहाँ सब कुछ बने हुए हैं वो सब चीज़ घूमें आए, और आप देख रहे हो कि यहाँ एक शांति का बड़ा ही महत्वपूर्ण, तो हम ये चाहेंगे श्रोताओं कि एक बार यहाँ पे आकर के मित्र जी के शरण में मार्गदर्शन करें।
1: आपका नाम?
2: ब्रह्म सिंह।
1: गंगा दशहरा किस तरह से मनाते हैं?
2: गंगा जी में जाते हैं, सब नहाते हैं, गंगा मैया को पहले अपना नहा धोकर प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर वहां से आके विदुर कुटी आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी के भी चरणों में अपना फूल भी अपने श्रद्धा से चढ़ाते हैं, और विदुर जी महाराज की शरण में अपना माथा टेक लेते हैं। जब जब कोई तीर्थ त्योहार या जैसे गंगा स्नान है, दशहरा है, तो उसमें परिवार के सभी सदस्य जाते हैं और अपना नहा धोकर के गंगा माई को प्रसाद चढ़ा के अपने मंदिर में माथा टेकते हैं।
1: विदुरकोटी की इस माटी में आज भी सादगी और भक्ति की महक है। यहाँ स्नान करके श्रद्धालु स्वयं को धन्य महसूस करते हैं। केवल दशमी को ही नहीं बल्कि पूर्ण दशा तक श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं।
3: श्रोताओं, विदुरकोटी से आगे बढ़ें तो बिजनौर बैराज यानी गंगा बैराज घाट पर आस्था का एक अलग ही समुन्दर दिखाई पड़ता है। दूर दराज के इलाकों और गाँव कस्बों से हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ उपस्थित दुकानदारों और श्रद्धालुओं से। आपका नाम?
4: मंगलराम।
3: इस मेले में आपका क्या रोल है और आपके यहाँ पे दुकानों कितने साल हो गए?
4: 85 में जब ये पुल चला था, जब 2-4 दुकानदार बैठे करते थे, 10-15 साल तक यहाँ ही चलो गया, अब ज्यादा दुकानदार आने लगे कुछ।
3: इस मेले पे कितनी भीड़ रहती है?
4: भीड़ तो काफी रहती है, रोड का मेला है।
3: आपकी बिक्री वगैरह कैसे होती है?
4: बिक्री सही होती है, जैसा किसी के पास सामान है वैसे ही बिक्री होती है।
1: आपका नाम?
5: मोहित कुमार।
1: गंगा दशहरा आप कब से देखते आ रहे हैं और इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए।
5: 20 साल के आसपास से हम भी देखते आ रहे हैं, तो इसमें मतलब लगभग लगभग 1 लाख आदमी के आसपास स्नान करते हैं लोग हर साल, मतलब कम भी आते ज्यादा भी आते, बाकी दुकानें भी लगती हैं, नीचे भी लगती है, यहाँ भी लगती है, प्रसाद भी दिखता है, सब चीज होती है।
1: आपका नाम?
6: सतेंद्र कुमार कश्यप। ये मेला तो लगता है जेठ की दशमी को लगता है, ये हर वर्ष लगता है यहाँ, और काफी लोग आते हैं यहाँ स्नान के लिए, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ दुकान भी है और भी बहुत खिलौने उलौने वाले भी हैं, कोई घटना नहीं होती यहाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है।
1: सुरक्षा को किस तरह से मेंटेन किया जाता है?
6: वो तो प्रशासन लगता है, काफी पुलिस प्रशासन रहता है, बहुत सबकी मौजूदगी में लोग स्नान करते हैं यहाँ।
1: गोताखोरों का भी सहयोग रहता है?
6: गोताखोर भी है यहाँ, 5-7-10 गोताखोर भी लगभग है यहाँ पे, और जो पानी के बोर्ड है, अपना मोटर बोर्ड है, वो भी चलती है, वो सुरक्षा करते हैं, सब लोगों की देखभाल करते हैं। लगभग 50-60 पंडित लोग आते हैं, कोई झालू से है, कोई नजीबाबाद से, कोई किरतपुर, कोई बिजनौर, काफी पंडित लोग आते हैं।
1: गंगा आरती ऐसा कुछ?
6: गंगा जी की आरती प्रतिदिन होती है यहाँ, 7 बजे का समय है गंगा आरती का, पंडित जी आते हैं बीच नॉर्थ है, और मैं जो हूँ तैयारी करता हूँ आरती।
3: सर आपका नाम?
7: रोहित शुक्ला।
3: कहाँ से आ रहे थे और आपने इस घाट को कैसे एक्सप्लोर करा?
7: मैं दिल्ली से आ रहा था, लंच टाउन जा रहा था, तो मुझे मालूम था रास्ते में कहीं ना कहीं तो गंगा जी मिलेंगी, तो मेरे साथ मेरी सासू माँ है, उनको गंगा जी में स्नान करना था, तो रास्ते में ये घाट मिला तो हम लोग यहाँ रुक गए नहाने के लिए।
3: तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको?
7: पानी ठंडा है, अच्छा है, चिलचिलाती गर्मी में ठंडा पानी, इट्स गुड।
3: जैसे दिल्ली के सर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये मतलब जो नेचुरल साइट्स होती हैं,
7: दिल्ली थोड़ा सा बंद है, ये ओपन है तो अच्छा लगता है यहाँ पे, बट टेम्परेचर तो यहाँ भी ज्यादा ही है, अभी उतना कम नहीं है, लेकिन दिल्ली कंपेरिजन में तो हाँ एटलीस्ट वी कैन सी स्काई, मतलब आसमान दिख रहा नीला, दिल्ली में नीला आसमान नहीं होता।
3: आपका नाम?
8: उर्मिला त्रिपाठी।
3: घाट के विषय में कैसे जानने को मिला और आपको इसके साथ क्या जुड़ा रहा है?
8: ये पुरुषोत्तम का महीना है, यहाँ का बड़ा महत्व है गंगा जी का, इसमें गंगा जी की पूजा होती है, बहुत अच्छा लगा। गंगा दशहरा होता है हम लोगों में और गंगा जी के स्नान करना चाहिए बहुत जगह गंगा दशहरा के।
1: प्रशासन और क्षेत्रीय नागरिकों की मुस्तैदी वाकई काबिले तारीफ। जल पुलिस की नावें गोताखोर और तैराक लगातार निगरानी कर रहे हैं। हमारी सभी श्रोताओं से भी यही अपील है कि प्रशासन द्वारा लगाए गए रेड फ्लैग या बैरिकेडिंग से आगे गहरे पानी में बिल्कुल ना जाएं।
3: श्रोताओं, गंगा दशहरा पर स्नान और दान का महत्व तो है ही, लेकिन माँ गंगा को साफ रखना भी हमारा एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। घाट पर आए हुए श्रद्धालुओं का इस बारे में क्या सोचना है, आइए जानते हैं।
2: सामने जो है कचरा तमाम भरा पड़ा है, फिर जोधपुर के सामने जाकर के नीचे लोग नहा रहे हैं, सामने कोई सफाई कोई वो नहीं है मौके पर, उसमें तमाम जो है गंद का भरा पड़ा है बाहे के अंदर, लेकिन कोई सफाई उफाई नहीं है, और जो से आते हैं साहब वही अपना ठिया लगा और बैठ जाते हैं, लेकिन क्या करें उनके सामने भी मजबूरी है। जो पंडित लोग वहाँ अब नहा नहा कर नीचे वहाँ अपने जो जो किसी प्रसाद या देना है जो पितृ मिलवाने हैं अपना वहीं बैठ कर मिलवा लेते हैं साहब।
3: आप क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं को एक अपील?
0: मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मान लिया हमारे श्रद्धालु जो भी गंगा स्नान करने के लिए आते हैं कि चलो ठीक है गंगा जी, अब आपने स्नान किया या आपने कुछ भी जल प्रसाद वगैरह कुछ भी वहाँ चढ़ाया है लिया है, मान लिया कुछ पॉलिथीन वगैरह या कुछ आप उसमें चढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं कि वहाँ गंगा जी में चढ़ा दिया और फेंक दिया, उसको अपनी जिम्मेदारी खुद समझें, उसको कोई दूसरा ठाना नहीं आएगा, वो अपनी हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम ऐसा करेंगे तो वहाँ गंदगी क्यों रहेगी पता।

0: प्रसाद चढ़ा दिया या कुछ भी चढ़ा दिया, पोलिथीन या कट्टा वगैरह कुछ भी वहीं गेर दिया, तो उसको दूसरा ठाना नहीं आनेगा। वो हमें अपनी खुद जिम्मेदारी उसको समझनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि श्रद्धालु जो भी वो अपनी गंगा जी की स्वच्छता और खुद अपनी इस चीज की जिम्मेदारी समझे।
1: बहुत जरूरी बात, पूजा की सामग्री फल फूल पॉलिथीन या कपड़े गंगा जी में ना बहाएं। माँ गंगा को स्वच्छ रखना ही हमारी सच्ची पूजा है, इसलिए नहरों में डुबकी तो लगाएं, साथ ही जल की हर बूंद का सम्मान करें और नदियों को मैला ना होने दें।
2: श्रोताओं, आशा करते हैं कि गंगा दशहरा पर्व पर हमारा यह खास कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। संपूर्ण आकाशवाणी परिवार की ओर से भी आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मुझे अर्थात दिव्यम कंडवाल
1: और इशिका कौशिक को दीजिए अनुमति, कल फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ।
2: सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बात आसपास की। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर।

0: श्रोताओं, आज के सुहाना सफर कार्यक्रम में हम आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं, हृदय से इस्तकबाल करते हैं। आज के सुहाना सफर कार्यक्रम को लेकर हम स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूं आपका साथी लोकेंद्र और मेरे साथ हैं
1: मैं हूं ताहिर महमूद। आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।
0: श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि हम भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष्य में प्रतिदिन आपके लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम सुहाना सफर लेकर उपस्थित होते हैं।
1: जी लोकेंद्र जी, और अपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में अपने श्रोताओं के लिए हम किसी वर्ष से संबंधित प्रमुख खबरों की बात करते हैं, जो उस वर्ष आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाली महत्वपूर्ण खबरें रहीं।
0: जी, और उन खबरों को आकाशवाणी ने अपने श्रोताओं तक बखूबी पहुंचाया। ताहिर जी, आकाशवाणी का अपना एक अलग आकर्षण है। ये सरल और व्यापक होते हुए भी बहुत शक्तिशाली भी है।
1: लोकेंद्र जी, ये बहुत सहजता के साथ हमारी दिनचर्या का हिस्सा रहता है, हमारे साथ यूं ही घुल मिल कर अपने पन का एहसास कराता है।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी हमेशा से एक भरोसेमंद आवाज रहा है। देश के कोने कोने तक सूचना, ज्ञान और मनोरंजन के क्षेत्र में आज भी अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है।
1: लोकेंद्र जी, हम अपने श्रोताओं को ये तो बता ही दें कि आज के सुहाना सफर कार्यक्रम में दोस्तों के साथ हम किस वर्ष की खबरों की बात करेंगे।
0: जी ताहिर जी, ये तो हम अपने श्रोताओं को बताना भूल ही गए थे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम साल 2021 की बात करेंगे और जानेंगे कि ये साल भारत में रेडियो सफर की दृष्टि से कैसा रहा और कितना महत्वपूर्ण रहा।
1: लेकिन
0: पहले क्यों ना अपने श्रोताओं को एक गीत सुनवा देते
1: हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गीत सुनवा देते हैं, ये प्यारा सा।

0: श्रोताओं, गीत के बाद स्वागत है आपका फिर से कार्यक्रम सुहाना सफर में। श्रोताओं, आप जानते हैं कि आज के अंक में हम आपके साथ बात कर रहे हैं साल 2021 के बारे में। श्रोताओं, साल 2021 हिंदुस्तान के लिए बेहद खास रहा। देश ने इस दौरान कई उतार चढ़ाव देखे, खट्टी मीठी यादें संजोई, जिन्हें आप और हम कोई भी देशवासी लंबे समय तक नहीं भूल पाएगा।
1: भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने अप्रैल मई 2021 में त्राहिमाम मचाया था। मरीजों के साथ उनके परिजन अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवा और अन्य दूसरी चीजों के लिए दर दर भटक रहे थे।
0: और हाँ, महामारी इतनी भयंकर रूप ले चुकी थी कि शमशान हो या कब्रिस्तान, हर जगह हमें लाशें ही दिखाई दे रही थी। इस दौर ने लोगों को रिश्तों की अहमियत और अपनों के साथ का महत्व भी बताया था। ताहिर जी,
1: श्रोताओं, कोविड-19 महामारी के दौरान भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 2021 से दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी और इस महामारी तथा टीकाकरण अभियान की पल पल की जानकारी अपने श्रोताओं तक पहुंचाई थी आकाशवाणी ने।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा। इस दौरान आकाशवाणी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। समय समय पर अपने देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और बीमारी से बचने के लिए जरूरी सावधानियों के बारे में जन जन को प्रेरित किया गया था।
1: लोकेंद्र जी, उस समय पर आकाशवाणी के जरिए समय समय पर महत्वपूर्ण अपडेट प्रसारित किए जाते थे।
0: बिल्कुल सही कहा था आपने ताहिर जी। आकाशवाणी के इन सब प्रमुख दिशा निर्देशों और टीकाकरण के प्रमुख अपडेट्स को आकाशवाणी पर सुनकर देशवासी स्वयं से प्रेरित होकर सजग रहने लगे थे।
1: ठीक कहा आपने, वो समय हमारे देश के लिए बहुत कठिनाई भरा था, परेशानी का समय था, इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक था। श्रोताओं, वक्त

अभी आपसे और भी बातें करने का है। पहले सुन लेते हैं एक और गीत, और ये गीत लोकेंद्र जी सुनवा रहे हैं आपको।

0: ये गीत हमने लिया था अतरंगी रे फिल्म से। आवाज़ थी श्रेया घोषाल की, गीत लिखा था इरशाद कामिल ने और धुन एआर रहमान की थी।
1: श्रोताओं, भारत में रेडियो प्रसारण के 90

0: साल के उपलक्ष्य में आप इस समय आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से कार्यक्रम सुहाना सफर सुन रहे हैं। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपका साथी लोकेंद्र, और मेरे साथ हैं ताहिर महमूद जी। तो ताहिर जी, साल 2021 हमारे भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा था। इस उपलक्ष्य में भी वर्ष भर आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए।
1: जी लोकेंद्र जी, राष्ट्र की आज़ादी के 75 वर्ष यानी अमृतकाल प्रत्येक राष्ट्रवासी को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान कर रहे थे। आकाशवाणी ने इस खुशी को अपने देशवासियों के साथ साझा किया।
0: और इस अवसर पर आकाशवाणी ने ऐतिहासिक घटनाओं और स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित विशेष श्रृंखलाओं का प्रसारण भी किया।
1: साल 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा किए गए प्रमुख मिसाइल परीक्षणों की खबरें आकाशवाणी ने प्रमुखता के साथ प्रसारित की।
0: अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान की इन प्रगतिशील खबरों को सुनकर देश के लोगों को गौरवान्वित होने का अवसर मिला था।
1: श्रोताओं, वित्तीय वर्ष 2021-22 के आम बजट और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई आर्थिक घोषणाओं का विस्तृत विश्लेषण भी आकाशवाणी पर प्रसारित किया गया था।
0: सही कहा आपने ताहिर जी, साल 2021 की कुछ और राजनीतिक घटनाओं में भारत के 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे।
1: जी, इनके परिणामों में पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी थी
0: और तमिलनाडु में DMK ने अपने दम पर बड़ी जीत हासिल की थी। केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी LDF ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर वापसी की थी।
1: जी, असम और पुदुचेरी में BJP गठबंधन ने जीत दर्ज कर सरकार बनाई। इन चुनाव परिणामों को आकाशवाणी ने देश के जन जन तक पहुंचाया था।
0: आकाशवाणी भारत में वर्ष 2021 तक 23 भाषाओं और 181 से अधिक बोलियों में अपने कार्यक्रम प्रसारित कर रही थी। इस वर्ष न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से 200 से अधिक लाइव रेडियो स्ट्रीम उपलब्ध भी कराए गए थे।
1: इसके जरिए देश के कोने कोने के कार्यक्रमों ने वैश्विक पहचान बनाई और विदेशों में बैठे भारतीयों को भी अपनी जड़ों से जोड़े रखा। आकाशवाणी ने स्वयं को और अधिक सशक्त किया इस दौरान।
0: जी, आकाशवाणी उस समय अपनी पहुंच को और अधिक व्यापक बना रहा था। भौगोलिक दृष्टि से अपनी मजबूत पैठ स्थापित कर दुनिया के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्कों में अपनी पहचान स्थापित कर चुका था। श्रोताओं, ये तो थी अपनी आकाशवाणी की स्वयं की मजबूती। अब हम आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनवाते हैं आपको साल 2021 की फिल्म
1: अंतिम द फाइनल ट्रुथ का फिल्म का ये गीत, जिसे शब्बीर अहमद ने आवाज़ दी है और रवि बसरूर ने इसका संगीत तैयार किया है।

0: श्रोताओं, अभी आपने जुबिन नौटियाल के स्वर में फिल्म अंतिम दी फाइनल टूथ का ये गीत सुना। इस गीत के लिए शब्द रचना थी शब्बीर अहमद की और संगीत था रवि बसरूर का।
1: श्रोताओं, स्वागत है गीत के बाद कार्यक्रम सुहाना सफर में आपका। साल 2021 में साल भर चले किसान आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने की ऐतिहासिक घोषणा की।
0: जुलाई 2021 में मोदी सरकार में बड़ा कैबिनेट विस्तार हुआ। 36 नए चेहरों को शामिल किया गया। युवाओं, पेशेवरों और सामाजिक संतुलन पर विशेष जोर दिया गया। आकाशवाणी ने जब इन खबरों को प्रसारित किया तो देश और दुनिया की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया।
1: लोकेंद्र जी, कुछ और खबरें साल 2021 की लेते हैं, अपने श्रोताओं के साथ साझा करते हैं, जिन्हें आकाशवाणी ने प्रमुखता के साथ प्रसारित किया था। बात खेल जगत की करें तो साल 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और ऐतिहासिक जीत के समाचार आकाशवाणी ने जन जन तक बखूबी पहुंचाए।
0: ताहिर जी, साल 2021 भारतीय खेलों के इतिहास में सबसे स्वर्ण युग रहा। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीतकर किसी भी ओलंपिक में अपने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया। भारत पुरुष हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर 41 साल का सूखा खत्म कर कांस्य पदक हासिल किया।
1: पैरा ओलंपिक में देश के एथलीटों ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 19 पदकों का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया था।
0: जो पैरा ओलंपिक में अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता था।
1: भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतकर भारत को टोक्यो ओलंपिक का पहला पदक दिलाया था। इन खबरों को आकाशवाणी ने प्रसारित कर खेल प्रेमियों को झूमने पर मजबूर कर दिया था।
0: ताहिर जी, फिल्म जगत की खबरों की बात करें तो साल 2021 में कई शानदार फिल्में रिलीज हुई, जिनमें शेरशाह, सूर्यवंशी, पुष्पा दी राइस आदि फिल्में प्रमुख हैं।
1: श्रोताओं, कोरोना महामारी के कारण सिनेमा घर लंबे समय तक बंद रहे, जिसका कारण और
0: जिसका कारण था बॉक्स ऑफिस के लिहाज से साल 2021 जो है वो बहुत धीमा रहा था, लेकिन कला
1: जी
0: और कहानी की दृष्टि से ये साल बेहतरीन माना जाता है।
1: जी जी जी
0: साल 2021 भारतीय फिल्म जगत के लिए भी परिवर्तनकारी और चुनौतीपूर्ण रहा था। साल 2021 में भारत ने कुछ वीर सपूत फिल्मी सितारे, राजनीति, कला और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों और उन हस्तियों को कुछ हमें आघात भी पहुंचा था। हमेशा हमेशा के लिए ताहिर जी हमने कुछ महान विभूतियों को खो दिया था।
1: जी जी जी जी चीफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल विपिन रावत अपनी पत्नी सहित एक हादसे में शहीद हो गए थे इस साल।
0: जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार साहब और राजीव कपूर भी साल 2021 में दुनिया को अलविदा कह गए थे। रामानंद सागर की रामायण के मशहूर अभिनेता, जिन्होंने रावण का किरदार निभाया था, अरविंद त्रिवेदी, वो भी इस साल दुनिया को अलविदा कह गए।
1: जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मशहूर भारतीय धावक मिल्खा सिंह, जम्मू और कश्मीर के प्रमुख अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का निधन हम सब देशवासियों के लिए दुखद रहा।
0: तो ताहिर जी, बात अभी और करेंगे श्रोताओं से, लेकिन कार्यक्रम में पहले एक और गीत अपने श्रोताओं के लिए ले लेते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: और इस गीत को हमने किस फिल्म से लिया है?
1: इस गीत को हमने लिया है 83 फिल्म से। इस गीत को आवाज़ दी है अरिजीत ने और कौसर मुनीर ने इस गीत को लिखा है और धुन है प्रीतम की।
0: तो श्रोताओं, सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, आज के सुहाना सफर कार्यक्रम में हमने जाना कि साल 2021 में आकाशवाणी ने कदम दर कदम राष्ट्रीय प्रगति में कितना योगदान किया
1: और खुद की प्रगति पर भी अग्रसर रहा। साथियों, रेडियो न केवल मनोरंजन करता है बल्कि ज्ञान और संस्कृति का एक सेतु बनकर हम सभी को देश के कोने कोने को जोड़े रखता है।
0: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इस ध्येय वाक्य को साकार करते हुए समाज में प्रेम, सहिष्णुता और जन कल्याण की भावना आकाशवाणी की अपनी अलग ही पहचान है। श्रोताओं, इसी उम्मीद के साथ कि आपका और हमारा ये कारवां यूं ही चलता रहेगा, आज के सुहाना सफर कार्यक्रम के अंक का साथ बस यहीं तक कार्यक्रम संपन्न करने की

0: साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुहाना सफर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आपके अनुरोध पत्रों और व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। सभी सुनने वालों को मेरा यानी ताहिर महमूद का
1: और लोकेंद्र का
0: नमस्कार। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी के स्वर में काजल फिल्म से। आवाज है, गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और धुन है रवि की।

0: मोहम्मद रफ़ी के स्वर में आप सुन रहे थे काजल फिल्म का गीत। गीत लिखा था साहिल लुधियानवी ने और धुन थी रवि की। इस गीत को पसंद करते थे आप सब श्रोता।
1: खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुब्बू भाविक सिक्का।
0: निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली से इस गीत के लिए फरमाइश की थी कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद दानिश और इकराम अली प्रेमी ने। हलवाईयान कस्बा शेरकोट से आप थे मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू, साजिदा और चांदनी रानी।
1: टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत सिंह छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा इसी गीत को पसंद किया था।
0: दाऊद सर

0: सहारनपुर से फरमाइश की थी अनवर साबरी, शन्नो साबरी, इरम और अमान साबरी ने। धौलापुर जिला मुरादाबाद से आप थे मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य और सोनी।
1: एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक, परी और स्वाति, प्रयाग और देविका चौधरी इसी गीत को पसंद करने के लिए हमें फरमाइश भेजी थी।
0: ये पत्र आया था अफगानान शेरकोट जिला बिजनौर से। अनुरोध करने वाले हमारे श्रोता थे नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, नाजिमा बी, अलमीर और जन्नत।
1: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा इसी गीत को सुनना चाहते थे।
0: जसपुर उत्तराखंड से आप थे रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, समरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: श्रोताओं, अभी आपने फिल्म लाड साहब का ये गीत सुना, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में। गीत के लिए शब्द रचना थी हसरत जयपुरी की और इस गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने।
1: इस गीत को पसंद करते थे आप सब श्रोता। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया।
0: सब्जी मंडी बुल्डाना से शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन।
1: ग्राम जुझैला थाना शिवाला कलां बिजनौर से फरमाइश करने वाले श्रोता थे राशिद अंसारी, परवीन जहां अंसारी, निशात, आयशा और मोहम्मद अफ़ान।
0: गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार। रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल।
1: ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड से फरमाइश करते थे जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद यादव, रागिनी रिया, रेणु दिव्यांशी, आराधना, रोनिका और रोमिका यादव।
0: हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से इसी गीत को सुनना चाहा था ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम और आशीष विश्वकर्मा ने।
1: निकट पत्थर वाली मस्जिद कस्बा जलालाबाद से ये पत्र आया था अब्दुल खालिक सलमानी, कुलसुम, महनाज, मेहताब, नेहा, सादिया, आफिया, शहनाज, अरहान, आलिया और आयशा का।
0: जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। इसी गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज किए हैं।

0: तलत महमूद के स्वर में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। सजिन देव बर्मन ने इस गीत की धुन तैयार की थी सुजाता फिल्म के लिए और इस गीत को पसंद करते थे आप सब श्रोता।
1: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरबाज और अबान अब्बासी।
0: पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से पसंद करते थे इस गीत को मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री।
1: इसी गीत को सुनने के लिए व्हाट्सएप मैसेज हमें भेजा था जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल ने।
0: रहमानिया मोहल्ला महसौल सीतामढ़ी बिहार से ये पत्र हमारे पास आया था। अनुरोध करते थे तलत जहां नाज, फरत जहां नाज, रिफत जहां नाज, रूही नाज, वसीम अकरम, नदीम अकरम, शमीम अकरम और अमन अकरम।
1: ये पत्र हमारे हाथ में है गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और इनके परिवार के सभी लोग।
0: गंज डूंडवारा से मोहम्मद फारूक शेख, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शमा परवीन शेख, अल कमर बेगम, अफसाना महजबी, मिर्जा नसरीन बेग, अरहान शेख और अली शान शेख ने भी इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश भेजी थी।
1: नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा असद और अरमान हाशमी ने इसी गीत के लिए सुनने के लिए फरमाइश भेजी थी।

0: संघर्ष फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शकील बदायूं ने इस गीत को लिखा था और धुन थी नौशाद की। कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार के स्वर में, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से।
1: पसंद करने वाले हैं आप सभी बिरडी मध्य प्रदेश से हुकुम कर्माकर, सुनीत कर्माकर, हार्दिक, प्राची, तन्नु और इनके परिवार के सभी लोग इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
0: मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से आप हैं अभिजीत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर और प्रिंस एकांश गवाणकर।
1: जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल और विलिस डिकेस्ट्रो इसी गीत को सुनने के लिए व्हाट्सएप मैसेज हमें करते हैं।
0: कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार ने फरमाइश की है। बत्ता परिवार के सदस्यों के नाम है मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता।
1: अनारकली बाजार जलगांव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुच्चा सिंह पाठक, विनोद और जयपाल यादव इसी गीत को सुनना चाहते हैं।
0: मालवा रेडियो श्रोता संघ से फरमाइश भेजी है। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिला गंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजी है। बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने।
1: मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी ने।
0: तो आप सब श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ
1: पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश संपन्न करने की अपने दोस्त लोकेंद्र
2: और ताहिर महमूद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बजे हैं। श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में ये गीत सुना 1942 ए लव स्टोरी से। गीतकार इस गीत के लिए जावेद अख्तर और संगीत तैयार किया था आरडी वर्मन ने। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है, हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: कार्यक्रम में सुनते हैं ये गीत फिल्म मर्यादा से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर में। गीत के लिए शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।
3: अरे
4: चुपके से दिल दे दे,
3: नहीं ते
4: नहीं ते

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं मुद्दत फिल्म का एक गीत, आशा भोंसले और मोहम्मद अजीज के युगल स्वर में। गीत इंदिवर साहब का है और संगीत बप्पी लहरी का।

मुद्दत फिल्म में अभी आप सुन रहे थे आशा भोंसले और मोहम्मद अजीज को। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम चित्र पर संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म फूल और कांटे का ये गीत, अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के युगल स्वर में। गीत के लिए शब्द रचना है समीर की और संगीत है नदीम श्रवण का।

फूल और कांटे, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के युगल स्वर में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत फिल्म लावारिस से। गीत प्रकाश मेहरा का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया है, गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

किशोर कुमार के गाए फिल्म लावारिस के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करते हैं। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
1: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मनतीन भाई और मोतिम भाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
1: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
2: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?

0: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
1: और श्रोताओं, आप सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
0: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा।

0: कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: कालक्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको,
5: फेंका जनाब।
6: अरे अरे, ये क्या हुआ,
5: ये क्या हुआ? अरे बच्चों, बच्चों, बच्चों,
6: फट निकल,
5: सब निकल, निकल,
6: निकल, निकल, निकल, निकल।
2: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
7: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
5: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
8: सही में
5: बहादुर सैनिक हो तुम।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
9: May I come in, sir?
7: Yes, come in.
9: Sir.
7: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
9: सर।
7: वेल डन एडी, तुम बहुत

0: आगे जाओगे, ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
1: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
0: हाँ हाँ, कहो।
1: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
0: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो, शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: गो अहेड यंग मैन।
1: सर,
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
3: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
2: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
4: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
5: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
4: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
6: जी जनाब।
0: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
1: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
5: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर, वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
4: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
5: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
4: फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
4: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल। फायर, समय मत गवाओ, फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
4: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
5: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौविंडा छोड़कर चली गई।
3: इस तरह चौविंडा क्षेत्र पर भारत का

0: अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन, उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बजे हैं। हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां दे दें। आज रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक

ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय याद रखिए, आज रात्रि 9:30 पर। आज संध्या 7:32 पर मजलिस ए अजा दरगाह ए आलिया नफज ए हिंद के संपादित अंश पर आधारित रेडियो रिपोर्ट प्रसारित की जाएगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक रहेंगे शिया वक्फ बोर्ड ऑफ इंडिया। समय याद रखिए, आज संध्या 7:32 पर। आज शाम 6:45 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता, देश के विकास में जलमार्ग का योगदान। वार्ताकार रहेंगे रोहित कौशिक। आज शाम 5:15 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा। इसमें क्रम होगा बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, क्रैश कोर्स पैसा वसूल, बूस्टर्स और गपशप अड्डा का। आज शाम 5:00 रिश्ता ये खास है आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित होगा। आज शाम 6:05 पर किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में किसान भाई सुनेंगे चर्चा, पशुओं के लिए साइलेज का महत्व। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत भजन हमारे श्रोता सुन सकेंगे। कलाकार रहेंगे पुनीत मेहरा। लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत आज दिन में 1:45 पर मीरा शर्मा के स्वर में भोजपुरी लोकगीत हमारे श्रोता सुन सकते हैं। परिवार जगत कार्यक्रम प्रसारित होगा आज दिन में 1:45 पर। इस कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे जानकारी गंगा दशहरा और रास बिहारी बोस जयंती के बारे में, साथ ही लघु नाटिका उड़ान प्रसारित की जाएगी। हमारे आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकते हैं। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम मिड डे मेलोडी, दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम नई फिल्मों से, शाम 6:55 पर कार्यक्रम छाया गीत, रात्रि 8:00 कार्यक्रम गीत संध्या, रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से, रात्रि 10:00 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, और रात्रि 10:30 पर पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश के अंतर्गत। ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारियां। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न करते हैं। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 12:05 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं सुनते हैं विजया गोड़ बोले का राग

या गोडबोले का गायन आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग शुद्ध सारंग। विलंबित रचना एक ताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत में हैं संतोष कुमार पांचाल।

शास्त्र संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे विजया गोड़बोले का गायन।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सुनते हैं फिल्म लोफर का एक गीत लता मंगेशकर के स्वर में। इस गीत के लिए शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। हसीन चेहरे तो बहुत देखे हैं इस जमाने में, हसीन चेहरे तो बहुत देखे हैं इस जमाने में, पर जो बात तुझ में है वो किसी और के फसाने में नहीं। डरता हूं कहीं टूट कर बिखर न जाऊं मैं, तू यूं मुझे अपने प्यार में आजमाने की कोशिश न।

ये गीत सुना। श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं पूर्णिमा और कुमार सानू के युगल स्वर में फिल्म कुली नंबर वन का ये गीत। गीत के लिए शब्द रचना समीर ने तैयार की है और संगीत आनंद मिलिंद का है। तपते हुए मौसम की जब डगरी है, तपते हुए मौसम की जब डगरी है, साजन की बाहों में ही सपनों की नगरी है। इस चिलचिलाती धूप की किरणों से बचा लो, मुझे अपने जुल्फों की छाँव में छुपा लो। तन से पसीना पोंछ कर दे दो आंचल की हवा, तुम्हारे सिवा इस धूप में हमको कहाँ मिलती कोई दवा। जेठ की इस दोपहरी में जब पांव जले हैं मेरे, तब मेरे हर दर्द का मरहम सिर्फ साजन है तेरे।

श्रोताओं, अभी आपने पूर्णिमा और कुमार सानू के युगल स्वर में ये गीत सुना फिल्म कुली नंबर वन से। आप इस समय आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आप सुनते हैं केके के स्वर में फिल्म वो लम्हे का ये गीत। गीतकार हैं नीलेश मिश्रा, संगीत इस गीत के लिए तैयार किया है प्रीतम ने। तुम क्यों चले आते हो हर रोज इन ख्वाबों की गलियों में, चुपके से उतर आओ एक दिन हमारी बाहों की पलियों में, तेरी आंखों के प्यालों में कोई नशा सा घुलता है, तू ही मेरे सवालों में हर ख्याल में मिलता है।

अभी आपने के सुर में फिल्म वो लम्हे का ये गीत सुना। श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में एक और गीत फिल्म मैंने प्यार किया से। गीत के लिए शब्द रचना असद भोपाली की है, संगीत राम लक्ष्मण का है, गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर। ओ उड़ने वाले पंछी जरा मेरी छत पर भी उतरना, ओ उड़ने वाले पंछी जरा मेरी छत पर भी उतरना, उसके आंगन में जाकर मेरे प्यार का जिक्र करना, कह देना कि तड़फते हैं हम उनकी एक झलक पाने को, बिन उनके अब मुश्किल है इस जिंदगी का सफर करना।

0: अभी आपने मैंने प्यार किया इस फिल्म के गीत को सुना, लता मंगेशकर और साथियों के सुर में। इसी के साथ मिड डे मेलोडी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first round of the civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. The Supreme Court today expressed concern over repeated lapses in the conduct of the NEET examination, saying it was sad that the National Testing Agency, NTA, had not learned

क्योंकि आज हम मना रहे हैं विश्व फुटबॉल दिवस। ये दिन हर साल 25 मई को मनाया जाता है। फुटबॉल केवल एक खेल नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जोड़ने वाला एक ऐसा उत्सव है जिसमें उत्साह, अनुशासन, टीम भावना और एकता की झलक दिखाई देती है। फुटबॉल दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में गिना जाता है। छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े स्टेडियमों तक हर जगह इस खेल का जुनून दिखाई देता है। ये खेल लाखों लोगों की भावनाओं और सपनों से जुड़ा होता है। यही कारण है कि बच्चे हों या युवा, हर कोई फुटबॉल के प्रति आकर्षित होता है। दोस्तों, विश्व फुटबॉल दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में खेल भावना को बढ़ावा देना, युवाओं को फिटनेस और अनुशासन के प्रति प्रेरित करना तथा समाज में भाईचारे और एकता का संदेश फैलाना है। फुटबॉल हमें सिखाता है कि सफलता अकेले नहीं बल्कि पूरी टीम के सहयोग और समर्पण से मिलती है। श्रोताओं, फुटबॉल का इतिहास बहुत पुराना माना जाता है। आधुनिक फुटबॉल की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, लेकिन आज ये खेल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल बन चुका है और दुनिया के लगभग हर देश में खेला जाता है, चाहे यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो या दक्षिण अमेरिका। हर जगह फुटबॉल लोगों के दिलों में बसता है। फुटबॉल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे खेलने के लिए ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। एक गेंद और थोड़ी सी जगह, बस खेल शुरू हो जाता है। शायद यही कारण है कि गरीब से गरीब बच्चा भी फुटबॉल के सपने देख सकता है। दोस्तों, विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में अभी और भी चर्चा करेंगे, परंतु पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम परिवार जगत में। दोस्तों, फुटबॉल की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 मई 2024 को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया और पहली बार 25 मई 2025 को इसे पूरे विश्व में मनाया गया। आज फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल बन चुका है। फीफा वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। जब कोई बड़ा मैच होता है तो पूरा विश्व जैसे एक परिवार बन जाता है। दोस्तों, अगर हम फुटबॉल के महान खिलाड़ियों की बात करें तो लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पेले और डिएगो मैराडोना जैसे नाम हमेशा याद किए जाते हैं। इन खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा से दुनिया को प्रेरित किया है। इनके संघर्ष की कहानियां हमें सिखाती हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। फुटबॉल की सबसे खास बात है टीम वर्क। इस खेल में अकेला खिलाड़ी मैच नहीं जिता सकता, हर खिलाड़ी को मिलकर खेलना पड़ता है। यही सीख हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार, समाज और देश हर जगह एकता और सहयोग की आवश्यकता होती है। आज भारत में भी फुटबॉल की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, खासकर वेस्ट बंगाल, केरला और गोवा जैसे राज्यों में फुटबॉल को त्योहार की तरह मनाया जाता है। साथ ही भारतीय सुपर लीग यानी कि आईएसएल ने देश में फुटबॉल को नई पहचान दी है। आज भारत के युवा भी इस खेल में अपना भविष्य बना रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय

0: पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। श्रोताओं, खेल हमारे जीवन को स्वस्थ और सकारात्मक बनाते हैं। फुटबॉल खेलने से शरीर फिट रहता है, मानसिक तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। आज के डिजिटल युग में, जहां बच्चे मोबाइल और स्क्रीन में अधिक समय बिताते हैं, वहां फुटबॉल जैसे खेल उन्हें मैदान से जोड़ते हैं और स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करते हैं। आज का ये दिन, विश्व फुटबॉल दिवस, हमें ये भी सिखाता है कि खेलों में कोई भेदभाव नहीं होता। मैदान में न जाति देखी जाती है, न भाषा और न ही धर्म। वहां केवल प्रतिभा, मेहनत और खेल भावना का सम्मान होता है। यही कारण है कि फुटबॉल दुनिया में शांति और भाईचारे का संदेश देने वाला खेल माना जाता है। और दोस्तों, जब फुटबॉल के मैदान में गोल होता है, तो केवल एक टीम नहीं, बल्कि लाखों दिल खुशी से झूम उठते हैं। स्टेडियम की आवाज, दर्शकों का उत्साह और खिलाड़ियों का जज्बा, ये सब मिलकर फुटबॉल को एक भावनात्मक अनुभव बना देते हैं। इसीलिए आज के दिन, विश्व फुटबॉल दिवस पर, हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी खेलों को अपना हिस्सा बनाएंगे, बच्चों में खेलों के लिए प्रोत्साहित करेंगे और खेल भावना को हमेशा बनाए रखेंगे, क्योंकि खेल हमें हार में धैर्य और जीत में विनम्रता सिखाते हैं। अंत में बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि फुटबॉल केवल पैरों से खेलने वाला खेल नहीं है, बल्कि ये दिलों को जोड़ने वाला उत्सव है। ये खेल हमें सिखाता है कि गिरकर फिर उठना ही असली जीत है। तो श्रोताओं, ये तो थी कुछ संक्षिप्त जानकारी विश्व फुटबॉल दिवस की। आशा करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। दोस्तों, जीवन में कई बार हमारे सामने एक ऐसा समय आता है जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, रोशनी की कहीं किरण नहीं दिखाई देती। हमें नौकरी नहीं मिलती, रिश्ते टूटने लगते हैं, सपने बिखरने लगते हैं और हिम्मत जवाब देने लगती है। उस वक्त एक छोटी सी आवाज अंदर से आती है, छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, यही वो पल होता है जब हमारा असली इम्तिहान होता है, क्योंकि हार का मतलब सिर्फ ये है कि अभी सही वक्त नहीं आया है। जड़ें अभी और गहरी होनी हैं, इसलिए और प्रयास करो, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। याद रखिए, हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी है। इसलिए आप सभी अपने आप पर भरोसा रखें और बस एक कदम और रखिए, सिर्फ एक और, बाकी रास्ता अपने आप खुद बन जाता है। दोस्तों, जीवन के इसी सबक को सिखाती हुई एक लघु नाटिका, जिसका शीर्षक है उड़ान, आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसने सपने देखे, जो गिरा, टूटा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के बल पर सफलता हासिल की। नाटक में प्रतिभागी कलाकार हैं दीप्ति माहेश्वरी, विवेक प्रताप सिंह और सुवेंद्र सिंह। निर्देशक हैं अंकित सैनी, प्रस्तुतकर्ता हैं शोभित शर्मा। आलेख और प्रस्तुति सहयोग है दीप्ति माहेश्वरी का। तो लीजिए, सुनते हैं लघु नाटिका उड़ान। खाना खा लो, कितनी देर से अकेले बैठे हो, क्या हुआ?
1: माँ, मुझे भूख नहीं है।
0: क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो?
1: ओफो माँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। माँ, मैं तीसरी बार भी रिजेक्ट हो गया, तीसरी बार। मैं क्या करूँ माँ, पहले सरकारी नौकरी में, फिर उस कंपनी में, और इस बार भी। शायद मेरा नसीब ही खराब है माँ।
0: बेटा, नसीब उनका होता है जो कोशिश करते हैं, जो हार मानकर बैठ जाते हैं उनका नसीब भी बैठ जाता है। बेटा, तू हिम्मत मत हार, कोशिश कर, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: ओफो माँ, ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में तो बस पैसा चाहिए, और मेरे पास तो कुछ काम भी नहीं है। माँ, तुम ही बताओ मेरे पास क्या है।
0: बेटा कोई बात नहीं, तेरे पास वो चीज है जो पैसों से नहीं मिलती, जिगर और मेहनत। तू चिंता मत कर, तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। तू अभी आराम कर, कल गुरुजी के पास चलते हैं। गुरुजी नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
1: नमस्ते गुरुजी।
2: नमस्ते बेटा नमस्ते। आओ आओ बैठो, बताओ कैसे आना हुआ। और बहन जी आप बता रही थी कि आजकल आकाश बहुत दुखी चल रहा है, क्या हुआ आकाश, बताओ क्या बात है भाई।
1: कुछ नहीं गुरुजी, बस थक गया हूँ, हर तरफ मुझे अंधेरा ही दिखाई देता है।
2: अंधेरा दिखाई देता है? अरे बेटा थकना अच्छा है, जो थकता नहीं वो दौड़ता नहीं। लेकिन पहले मुझे बताओ तुमने पिछले 2 सालों में क्या सीखा।
1: क्या सीखा गुरुजी, मैं तो बस फेल ही होता रहा।
2: तो क्या फेल होना सीखना नहीं है? बताओ पहले जॉब इंटरव्यू में क्या हुआ था?
1: वो उन्होंने मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स की जो कमी थी वो बताई थी और मैं वहीं पे घबरा गया था।
2: और दूसरी बार वाले इंटरव्यू में क्या हुआ?
1: दूसरी बार मैं टेक्निकल राउंड तक पहुंचा था, लेकिन उन्होंने कहा मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम है।
2: और तीसरी बार वाले इंटरव्यू में?
1: तीसरी बार मैं फाइनल राउंड तक पहुंचा था, बस एक कदम से चूक गया था।
2: देखो बेटा, पहली बार के इंटरव्यू में घबराहट थी, दूसरी बार एक्सपीरियंस की कमी, तीसरी बार तुम फाइनल राउंड तक पहुंचे। अब तुम मुझे बताओ बेटा, ये फेल होना है या आगे बढ़ना है, सोचो।
1: मतलब मैं हर बार बेहतर हो रहा था?
2: बिल्कुल आकाश बिल्कुल। और अब सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ।
1: जी गुरुजी।
2: चीन में बांस की एक प्रजाति होती है चाइनीज बैम्बू। जब उसका बीज बोते हैं तो पहले साल कुछ नहीं उगता, दूसरे साल भी नहीं, तीसरे चौथे साल भी जमीन खाली दिखती है।
1: तो वो उगता ही नहीं क्या?
2: रुको, 5वें साल में सिर्फ 6 हफ्तों में वो बांस 85 फुट तक बढ़ जाता है।
1: क्या?
2: हाँ, तो सोचो क्या वो केवल 5वें साल में होगा? नहीं, वो 4 साल तक जमीन के नीचे जड़े फैला रहा था, जड़े, अपनी मजबूत जड़े। अब समझ आया?
1: जी समझ गया।
2: जब समय आया तो आसमान छू लिया।
0: गुरुजी आपने तो बहुत ही सुंदर बात बताई।
2: आकाश तुम भी वही बांस हो, ये 2 साल की हार ये तुम्हारी जड़े हैं। हर रिजेक्शन ने तुम्हें कुछ सिखाया है, हर गिरावट ने तुम्हें पहले से अधिक मजबूत किया है। अब बस थोड़ा थोड़ा और जोर लगाओ बेटा।
1: गुरुजी मैंने तो कभी इस तरह से कभी सोचा ही नहीं।
2: सोचो बेटा सोचो। और एक बात बेटा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो गिरकर बैठ जाते हैं और दूसरे वो जो गिरकर और मजबूत बनते हैं। वे देखते हैं कि वे गिरे क्यों। और आकाश तुम दूसरी तरह के हो बेटा, इसलिए हर बार कुछ सीखो, हर बार आगे बढ़ो।
1: गुरुजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब मैं हार नहीं मानूंगा, अब मैं दिन रात मेहनत करूंगा, रुकूंगा नहीं। सबसे पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारूंगा, नए प्रोजेक्ट करूंगा।
2: बिल्कुल बेटा बिल्कुल, आगे बढ़ो।

0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं सोमवार में पहुंच जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपके मेल पर सारी डिटेल भेज दी गई है।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माँ मेरी नौकरी लग गई है। माँ
2: क्या?
0: हाँ माँ मेरी नौकरी लग गई है। माँ
2: आकाश ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मुझे पता था आकाश, मुझे हमेशा से पता था तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी।
0: गुरुजी मुझे नौकरी मिल गई गुरुजी, और पता है वही कंपनी जिसने एक साल पहले मुझे रिजेक्ट किया था।
3: ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अरे उन्होंने तुझे नहीं रिजेक्ट किया था, तेरी थोड़ी सी कमी को रिजेक्ट किया था, एक अधूरे आकाश को रिजेक्ट किया था। आज के आकाश को उन्होंने खुद बुलाया है, खुद फोन किया है।
0: नहीं गुरुजी, अब मैं बहुत बदल गया हूँ। अब मुझे रिजेक्शन से डर नहीं लगता। हर ना मुझे बताती है कि अभी और सीखना है।
3: यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है बेटा। सफलता कोई मंजिल नहीं, ये एक सफर है, और इस सफर में हर गिरावट, हर रुकावट, हर रिजेक्शन सब तुम्हें आगे धकेल रहे थे बेटा।
0: मैं तो उन सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ जो अभी टूटे हुए हैं, कि रुको मत, थक जाओ तो आराम करो, लेकिन हारना मत सीखो।
3: शाबाश बेटा शाबाश। और याद रखो, दुनिया की सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे अच्छा सवेरा आता है बेटा।

अभी हम सुन रहे थे एक लघु नाटिका उड़ान। आशा करते हैं आपको ये लघु नाटिका पसंद आई होगी। दोस्तों, जीवन का सफर भले ही छोटा हो, लेकिन अगर दिलों में प्यार और रिश्तों में अपनापन होता है तो हर पल खास बन जाता है। इसी खूबसूरत एहसास को एक गीत के माध्यम से आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म बड़े दिल वाले से। तो लीजिए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

अभी हम सुन रहे थे प्यारा सा एक गीत। आशा करते हैं गीत सुनकर आप सब भी प्रसन्न हो गए होंगे। श्रोताओं, समय समय पर हम आपको भिन्न भिन्न जानकारियां देते रहते हैं और इसी श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं आज के ही दिन मनाए जाने वाले गंगा दशहरा के बारे में। ये पर्व भारत की आस्था, श्रद्धा और संस्कृति से जुड़ा पर्व है। ये पर्व ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थीं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, लेकिन उनके तेज वेग को संभालना आसान नहीं था। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे उन्हें धरती पर प्रवाहित किया। तभी से माँ गंगा को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी माना जाता है। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और माँ गंगा की आराधना करते हैं। माना जाता है इस दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है, इसलिए इसे गंगा दशहरा कहा जाता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज और वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों पर इस दिन विशेष पूजा और भव्य आरती का आयोजन किया जाता है। तो ये तो थी कुछ संक्षिप्त जानकारी गंगा दशहरा के बारे में। इसी के साथ एक और जानकारी आपको दे रहे हैं और वो है आज के दिन मनाई जाने वाली रास बिहारी बोस जी की जयंती के बारे में। जी हाँ, रास बिहारी बोस भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और अद्भुत देशभक्त थे। उनका जन्म 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। बचपन से ही उनके मन में देश को आजाद कराने की प्रबल इच्छा थी। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था और देशवासियों पर अत्याचार हो रहे थे। ऐसे कठिन समय में रास बिहारी बोस ने क्रांति का मार्ग चुना और स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1912 में उन्होंने अंग्रेज वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला करने की योजना बनाई। इसके बाद अंग्रेजी सरकार उनके पीछे पड़ गई, लेकिन वे चतुराई से बच निकले। बाद में वे जापान चले गए, जहां रहकर उन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। जापान में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और आगे चलकर आजाद हिंद फौज की नींव रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद में यही संगठन सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में और अधिक शक्तिशाली बना। रास बिहारी बोस केवल क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि दूरदर्शी नेता भी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। विदेश में रहकर भी उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। आज उनकी जयंती पर हम उनके साहस, राष्ट्रभक्ति और त्याग को नमन करते हैं। रास बिहारी बोस युवाओं के लिए प्रेरणा और अदम्य देशभक्ति के प्रतीक हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी कुछ संक्षिप्त जानकारी रास बिहारी बोस जी की जयंती के बारे में। इसी जानकारी के साथ समय हो गया है आपसे विदा लेने का, परंतु जाने से पहले जानना चाहेंगे आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा। अपनी शिकायतें और सुझाव देने के लिए हमें पत्र जरूर लिखिए। हमारा पता है कार्यक्रम परिवार जगत, द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन नंबर
2 4 6 7 6 3। इसी के साथ आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। इसी के साथ मुझे यानी अपनी दोस्त दीप्ति माहेश्वरी को दीजिए अनुमति कार्यक्रम परिवार जगत संपन्न करने की। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम परिवार जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम पब्लिक स्पीक हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम लोकधारा। लोकधारा कार्यक्रम में आज प्रस्तुत हैं भोजपुरी लोकगीत, कलाकार हैं मीरा शर्मा।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत मीरा शर्मा से भोजपुरी लोकगीत सुन रहे हैं।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत सुन रहे हैं। कलाकार हैं मीरा शर्मा। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और लोकगीत।

0: 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ा

0: आने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमरीका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल की वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से

0: 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। जीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी नजीबाबाद है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम का पहला गीत अरिजीत सिंह और अरमान खान के युगल स्वर में फिल्म धुरंधर से। गीत इरशाद कामिल का है, संगीत शाश्वत सचदेव का है।

0: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम नई फिल्मों से सुन रहे हैं।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
3: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: श्रोताओं, नई फिल्मों से कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं ये गीत। श्रेया घोषाल और वैशाली माधे के युगल स्वर में फिल्म कलंक से। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है और संगीत प्रीतम का है।

श्रेया घोषाल और वैशाली माधे के सुर में अभी आपने फिल्म कलंक का ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम नई फिल्मों से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं गीत जुबिन नौटियाल और नीति मोहन के युगल स्वर में फिल्म जॉली LLB 2 से। गीत लिखा है जुनैद वारसी ने और संगीतबद्ध किया है चिरंतन भट्ट ने।

0: कार्यक्रम में श्रोताओं आप सुनते हैं फिल्म तेरे इश्क में। इस फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह के स्वर में, शब्द रचना इरशाद कामिल की है और संगीत एआर रहमान का।
1: म्यूजिक बंद हो गया, बस चलो पीछे चलो।
2: तुम अच्छे लड़के हो अभीर, मैं भी अच्छा हूं, पर तुम शुरू से अच्छे होगे, मैं नया नया बना हूं। ये साथ थी तो याद रहता था कि अच्छा हूं,

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से सुन रहे हैं।
1: सुनो, दिमाग ना हिला हुआ है तुम्हारा।

परंपरा टंडन और जोश ब्रार के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म बागी 4 का ये गीत। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय नई फिल्मों से कार्यक्रम सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं मेघना मिश्रा के स्वर में सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म का ये गीत। गीत कौसर मुनीर का है और संगीत अमित त्रिवेदी का।

सीक्रेट सुपरस्टार, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और गीत सुनिधि चौहान के स्वर में, फिल्म जुबली से। गीत कौसर मुनीर का है और संगीत अमित त्रिवेदी का।

सुनिधि चौहान के गाए फिल्म जुबली के इसी गीत के साथ नई फिल्मों से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजे हैं। हमारी आज की प्रथम सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। अपनी दूसरी प्रसारण सभा के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है। रिश्ता ये खास है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ममता अग्रवाल का नमस्कार। साथियों, आकाशवाणी भारतवासियों की धड़कन था, है और रहेगा। इसकी ध्वनि तरंगे देश के कोने कोने तक पहुंचती हैं। सूचना और मनोरंजन के स्रोत के रूप में लोगों के दिलों तक पहुंचती हैं। आकाशवाणी न केवल एक प्रसारण माध्यम है बल्कि देश की संस्कृति और एकता का प्रतीक भी है। आकाशवाणी की लहरें हमारे दिलों में बसी हुई हैं। ये हमें जोड़ती हैं और एक सूत्र में पिरोती हैं। पूरी करती सबकी आस, इस पर है सबका विश्वास। पूरी करती सबकी आस, इस पर है सबका विश्वास। श्रोताओं के दिल के पास आकाशवाणी सबसे खास। साथियों, भरोसे की गूंज के 90 बरस का ये सुहावना सफर, आवाजों का सुनहरा सफर हमारे लिए बहुत ही आत्मगौरव और आत्मसम्मान का विषय है। ये 90 वर्ष का स्वर्णिम सफर आगामी 8 जून को पूरा होगा और इसी का जश्न हम सभी मना रहे हैं अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से अपने श्रोताओं के साथ उनके विचार उनके अनुभव साझा करते हुए। और इसी क्रम में आज के कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसका आकाशवाणी से दोहरा रिश्ता है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे भला वो कैसी, तो हम आपको बता दें कि आज जो हमारे साथ हैं उनका जुड़ाव आकाशवाणी से एक श्रोता के रूप में तो है ही, साथ ही आपने बहुत लंबे समय तक आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र पर एक आकस्मिक उद्घोषिका के रूप में भी कार्य किया है और वो हैं अचला अग्रवाल जी। तो अचला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद ममता जी, आपको और आकाशवाणी परिवार को, क्योंकि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में सहभागिता देकर अपने बीते दिनों की यादें ताजा करने का जो अवसर प्रदान किया है। आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 वर्ष का ये शानदार ऐतिहासिक सफर पूर्ण करने को ही है। सर्वप्रथम इसके अवसर पर तहे दिल से आकाशवाणी परिवार से जुड़े हर व्यक्ति को मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, क्योंकि कोई भी सफर आसान नहीं होता। न जाने कितनी पथरीली राहों से होकर गुजरना पड़ता है, तब कहीं अपनी मंजिल पाता है। एक बात और है ममता जी, रेडियो श्रोता की भूख रेडियो सुनकर ही मिटती है।
0: बिल्कुल सही बात कही अचला जी आपने। आकाशवाणी ने जनमानस के दिलों में अपनी एक पहचान बनाई हुई है। हम सब के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है रेडियो का। इस बारे में अचला जी आप क्या कहेंगी?
1: देखिए, आज 90 वर्षों का हम सफर बना आकाशवाणी भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण संस्था है। और आकाशवाणी केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं है बल्कि भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत जीवन का एक अभिन्न अंग है। देखिए, इसका मूल मंत्र है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, और उस पर खरी उतरती है ये आकाशवाणी। सच कहें तो आकाशवाणी का श्रोताओं के जीवन में बहुआयामी महत्व है। भारत देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने में भी इसने अपनी अहम भूमिका सत्यता और निष्पक्षता के साथ निभाई है।
0: जैसा कि हमने जिक्र किया था, आपका रेडियो और श्रोताओं के साथ एक उद्घोषिका के रूप में बहुत लंबे अंतराल तक साथ रहा है। तो अचला जी, शुरुआत आपने कब की और किस कार्यक्रम से की थी, थोड़ा सा इस बारे में हमें बताएंगी?
1: देखिए, मैंने इस सफर की शुरुआत की थी वर्ष 1982 में, और ये की थी एक कहानी के माध्यम से। और ममता जी, एक आकाशवाणी की निष्पक्षता का किस्सा मैं यहाँ आपको जरूर बताना चाहूंगी। मैंने अपनी एक कहानी अटूट बंधन, जिसका शीर्षक था, जो भाई बहन के पवित्र स्नेह पर आधारित थी, तो रक्षाबंधन पर्व से कुछ ही समय पहले सन 1981 में आकाशवाणी पर पोस्ट की, लेकिन उसका आकाशवाणी की ओर से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिला। तब मुझे थोड़ी निराशा हुई और लगा कि कहाँ इतने लोगों का आता होगा, पोस्टें आती होंगी तो कहाँ सब देख पाते होंगे। लेकिन ठीक एक वर्ष बाद अचानक एक दिन रक्षाबंधन पर्व से लगभग एक माह पहले मुझे कॉन्टैक्ट मिला, जिसमें मुझे उसी कहानी की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया था। ये देखते ही मेरी खुशी और आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि क्या किसी की मेहनत और भावनाओं को इतना संजो कर रखा जा सकता है। और फिर उसके बाद तो सिलसिला जारी रहा। युवाणी विभाग में मैंने मेरी पसंद कार्यक्रम प्रस्तुत किया और फिर 3-4 माह बाद ही मेरा आकस्मिक उद्घोषिका के रूप में चयन हो गया। और वर्ष 1982 से सन 2023 तक मैंने वहां आकस्मिक उद्घोषिका के रूप में कार्य किया, और साथ ही उसी बीच में समय समय पर कई नाटकों में, झलकियों में, रूपकों इत्यादि में मैंने प्रतिभाग किया।
0: तो अचला जी, आपने बताया कि सबसे पहले जो कार्यक्रम आपने दिया था वो 1982 में दिया था, और अगर मैं जिक्र करूं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र की स्थापना का, तो ये हुई थी 27 जनवरी 1978 को, जब एक छोटे से शहर नजीबाबाद में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई होगी, तो नगरवासियों के लिए ये बहुत ही गौरव के पल होंगे। नजीबाबाद वासियों ने अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस किया होगा आकाशवाणी की स्थापना से। तो अचला जी, अतीत के उन खूबसूरत लम्हों की यादें कुछ साझा करेंगे आप हमारे साथ?
1: हाँ बिल्कुल ममता जी, सच कहें तो नजीबाबाद एक छोटा सा कस्बा, उसे जानता ही कौन था। नजीबाबाद की पहचान ही आकाशवाणी से बनी। दूर दूर तक आकाशवाणी नजीबाबाद की वजह से ही नजीबाबाद जाना जाने लगा। और देखिए, 100 किलोवाट क्षमता का आकाशवाणी नजीबाबाद का ही स्टेशन था, और दूसरा गोरखपुर का स्टेशन था जो 100 किलोवाट की क्षमता का था। और इस ये कितनी दूर तक सुना जाता था, क्योंकि गढ़वाली और कुमाऊं सारे प्रोग्राम्स यहीं से होते थे, और ये बद्रीनाथ तक सुनाई देता था। तो आकाशवाणी नजीबाबाद की तो बात ही कुछ और है।
0: रेडियो एक सुलभ और सस्ता माध्यम होने के साथ साथ अपनी विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरता है। हर वर्ग के व्यक्ति की पहुंच में है रेडियो। अचला जी, मानती हैं आप इस बात को?
1: बिल्कुल ममता जी, देखिए रेडियो एक ऐसा स्रोत है जिसका कि आनंद हर व्यक्ति ले सकता है, और चाहे कोई निरक्षर हो, चाहे कोई डिसेबल्ड हो, और आज भी ब्लाइंड व्यक्ति की जिंदगी आकाशवाणी के माध्यम पर ही निर्भर है। और देखिए, इसके लिए मैं हर पल अनुभवी हूँ। हम स्वयं अपने घर में हर पल इसका अनुभव करते हैं,

0: भाई देखिए 100% ब्लाइंड होने के कारण रेडियो ही उनका हम सफर बना हुआ है। और मैं तो ये कहूंगी कि सवेरे से रात तक जैसे रेडियो उनके लिए रामबाण औषधि का कार्य करता है।
1: साथियों, आकाशवाणी ज्ञान और मनोरंजन का वो साधन है जिसके माध्यम से हमें हर क्षेत्र के कार्यक्रमों की जानकारी मिलती है और साथ ही साथ हम आनंद लेते हैं गीत संगीत का। अच्छा जी, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहेंगी?
0: हाँ देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि जो बात आकाशवाणी में है वो कहीं नहीं। हमारे रेडियो के जो श्रोता हैं इस जन जन की वाणी को अपनी वाणी बनाए और प्रस्तुतकर्ताओं को अपने सुझाव देकर प्रशंसा करके उनकी हौसला अफजाई करते रहें, ताकि हर्षोल्लास के साथ ये हमारा आकाशवाणी परिवार 90 वर्ष मनाने के बाद शताब्दी वर्ष मनाए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया अचला जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष्य में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित कार्यक्रम रिश्ता ये खास है, अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। और अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज के शेष प्रसारित कार्यक्रमों पर। आज रात 9:30 बजे रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। मजलिसे अजा दरगाहे अलिया नजफे हिंद के संपादित अंश पर आधारित रेडियो रिपोर्ट प्रसारित की जाएगी 7:32 पर। देश के विकास में जलमार्ग का योगदान, रोहित कौशिक की ये वार्ता श्रोता सुनेंगे विविधा कार्यक्रम में 6:45 पर। अब से कुछ ही देर में 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज क्रम है गपशप अड्डा। कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6:05 पर चर्चा का विषय रहेगा पशुओं के लिए साइलेज का महत्व। फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुनेंगे 6:55 पर कार्यक्रम छाया गीत में। रात 8 बजे गीत संध्या कार्यक्रम होगा। 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हम आपको फिल्मी गीत सुनवाएंगे। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और रात 10:30 बजे पेश किया जाएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष कार्यक्रमों की।

और अब हम आपको कल प्रसारित कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कल रात 10 बजे। कल रात 9:30 बजे सुनिएगा परिचर्चा, जिसका विषय है विकास के नए प्रतिमानों की आवश्यकता। प्रतिभागी हैं राजेश कुमार, एजाज अहमद और प्रीति वर्मा। संचालन होगा नरेंद्र पाल सिंह का। समय याद रखिएगा कल रात 9:30 बजे। 90 साल बेमिसाल रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विशेष भेंटवार्ता के अंतर्गत उज्जवल चौधरी और मंतशा से शोभित शर्मा जी की बातचीत श्रोता सुनेंगे संध्या 6:45 पर। बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला का

1 प्रसारित किया जाएगा कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6:05 पर। स्वयं द्वारा उपचार या सेल्फ मेडिकेशन कितना घातक, इस विषय पर जानकारी सुनिएगा स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:05 पर। खेती की बातें क्रम में 7:10 पर चर्चा का विषय होगा कृषि से संबंधित स्वरोजगार।

धरती गाती है कार्यक्रम में सुबह 9:25 पर सुनिएगा अर्जुन सिंह और साथियों के स्वर में रागनी बात आसपास की। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:50 पर। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष में एक विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर श्रोता सुनेंगे सुबह 10 बजे। बच्चों की परवरिश और रचनात्मकता में माँ की भूमिका, इस विषय पर चर्चा हमारी बहनें सुनेंगी 1:15 पर कार्यक्रम महिला जगत में। और साथ ही कार्यक्रम में एक परिचर्चा भी प्रसारित की जाएगी जिसका विषय है डिजिटल युग में बच्चों की छुट्टियां मोबाइल या मैदान। प्रतिभागी हैं शालिनी चौधरी, अनीता रावत और शशिकला राजपूत। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

0: गीत वो, संगीत वो जो मन के हर कोने में एक उमंग भर जाए, सुरों की दुनिया में दिल खो जाए।
1: ताल और धुन का संगम सुंदर है इतना, जो आत्मा की भाषा से दिल का रिश्ता जोड़ जाए।
0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी में, जहां आज की शाम आपसे जुड़ने वाली हूं मैं, आपकी अपनी सखी सहेली और रेडियो पार्टनर वंशिका सोती।
1: नमस्कार, हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों। वंशिका के साथ प्रोग्राम में शामिल हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो साथी शैली। तो दोस्तों, मंडे में हम आए हैं आपका मन रखने।
0: जी हाँ, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपका फेवरेट सेगमेंट गपशप अड्डा, जिसमें आप हमें हमारे फोन नंबर 9457078288 पर कॉल कर सकते हैं और हमसे कॉल्स के जरिए जुड़ सकते हैं।
1: वैसे वंशिका, तुमने जो स्टार्टिंग में ये म्यूजिकल लाइंस कही थी, उनकी कोई खास वजह?
0: म्यूजिक की कोई खास वजह नहीं होती है शैली, क्योंकि सुर तो बेवजह ही तानों में रस घोल जाते हैं।
1: अरे भाई, सीधा बोलो ना कि तुम्हें सॉन्ग सुनना है।
0: नहीं, मुझे कोई सॉन्ग नहीं सुनना, अभी तो प्रोग्राम देखो स्टार्ट हुआ है, तो हमें पहले क्वेश्चन पूछना है।
1: क्वेश्चन? बूझो तो जाने का।
0: जी हाँ, क्योंकि आज का सवाल सुरों की क्वीन से जो जुड़ा है, जो है दिवंगत प्लेबैक सिंगर आशा भोसले का जन्म कहाँ हुआ था।
1: और दोस्तों, इसका सही जवाब आपको लिख भेजना होगा हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर।
0: और अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं हमारे एक और खास सेगमेंट के साथ, जो है क्रैश कोर्स पैसा वसूल, जिसमें आज आप जानेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो आइए सुनते हैं इस सेगमेंट को।

0: बिजली के बिना लाइफ इमेजिन करना काफी मुश्किल है। फोन चार्जिंग से लेकर ट्रेन्स, हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्रीज तक सब इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इतनी मैसिव एनर्जी आखिर आती कहाँ से है? आज के क्रैश कोर्स पैसा वसूल में हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी की। ये क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और क्या ये फ्यूचर की एनर्जी बन सकती है? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो है क्रैश कोर्स पैसा वसूल। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एटम के न्यूक्लियस यानी कि सेंटर से निकलती है। जब किसी हैवी एटम जैसे यूरेनियम को तोड़ा जाता है तो उस प्रोसेस में बहुत ज्यादा हीट और एनर्जी रिलीज होती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन और इसी रिलीज्ड हीट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी आखिर काम कैसे करती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम फ्यूल्ड रॉड्स यूज होते हैं। जब यूरेनियम एटम स्प्लिट होता है यानी टूटता है तो ह्यूज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। ये हीट पानी को गर्म करती है और स्टीम यानी कि भाप बनाती है और भाप से टर्बाइन्स रोटेट होती हैं यानी कि घूमने लगती हैं। टर्बाइन जनरेटर को चलाती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो एटम से निकलती है हीट, हीट से निकलती है स्टीम और स्टीम से चलती है टर्बाइन और फिर जनरेट हो जाती है हम सभी के घरों में आने वाली और जिसके बिना हमारी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब हम जानते हैं कि आखिर न्यूक्लियर एनर्जी के यूजेस क्या क्या हैं। सबसे बड़ा यूज जो है न्यूक्लियर एनर्जी का वो है लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। कई मिलिट्री सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर पर ही चलती हैं और मेडिकल फील्ड में भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट, मेडिकल इमेजिंग में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स काफी ज्यादा यूज होते हैं। स्पेस रिसर्च जैसे नासा ऑर्गेनाइजेशंस स्पेस मिशंस में न्यूक्लियर एनर्जी यूज करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन और साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है। तो अब जानते हैं कि आखिर इसके फायदे क्या क्या हैं। मैसिव एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि थोड़ा सा फ्यूल बट बहुत ज्यादा एनर्जी। लो कार्बन एमिशन मतलब कोयले और पेट्रोल के कंपैरिजन में पॉल्यूशन काफी ज्यादा कम होता है। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पॉसिबल होती है इसकी वजह से। ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करने में ये काफी ज्यादा हेल्प करती है। दोस्तों जिस तरीके से सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं उसी तरीके से अगर कोई चीज हमें फायदेमंद है तो उसके नुकसान भी हैं। तो जिस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी के एडवांटेजेस हैं उसी तरीके से इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसमें सबसे पहले आता है न्यूक्लियर वेस्ट डेंजरस होता है और हजारों सालों तक ये हार्मफुल रह सकता है। चेर्नोबाइल और फुकुशिमा जैसे एक्सीडेंट्स ने दुनिया को काफी ज्यादा डरा दिया था। न्यूक्लियर प्लांट्स बनाना और इन्हें मेंटेन करना काफी ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल गलत हाथों में चला जाए तो डेंजरस हो सकता है। इंडिया भी न्यूक्लियर एनर्जी पर काफी फोकस कर रहा है। कुंडनकुलम, तारापुर और काकरापाट जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इंडिया का एम है क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना और फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम करना। अब सवाल ये है क्या न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूचर है, आपको क्या लगता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सेफ्टी प्रॉपरली मेंटेन की जाए तो न्यूक्लियर एनर्जी दुनिया की ग्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को फुलफिल करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, लेकिन हमें सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पावरफुल भी है और रिस्की भी। ये फ्यूचर को ब्राइट बना सकती है लेकिन सिर्फ तब जब इसे रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज किया जाए। तो दोस्तों आप सुन रहे थे आप सभी का फेवरेट सेगमेंट क्रैश कोर्स पैसा वसूल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे, तब तक क्यूरियस रहिए और नॉलेज कलेक्ट करते रहिए।
1: Work from home? High salary? बस एक क्लिक में? अरे वाह!
2: फंसी! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
5: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
4: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
6: और डोज में क्या है?
5: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
7: चाकू छुरिया तेज करा लो। अरे चाकू छुरी तेज करा लो भैया, आ जाओ।
8: अरे अरे देख ले, घर में कुछ पड़ा तो नहीं है चाकू छुरी तेज कराने के लिए? चाकू छुरी वाला है, रुक जा, मैं देखता हूँ, बाहर जाके रोकता हूँ उसको। अरे हाँ भाई, और क्या क्या तेज कर रहे हो तुम?
7: अरे चाकू छुरियां तेज करा लो भाई, तलवारों पे धार लगवा लो, बताओ और क्या चाहिए।
8: अच्छा अच्छा ले आ भाई ले आ। और बताओ भाई, इतनी गर्मी में चाकू छुरियां तेज करने निकला है?
7: अरे ये तो हमारा काम है भाई साहब, ये नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा हमारा।
8: अच्छा चल कोई बात नहीं, ये बता अकल भी तेज करता है क्या जब चाकू छुरियां तेज कर रहा है?
7: अरे क्यों नहीं भाई, अगर हो आपके पास तो ले आओ।
4: जी हाँ मजा आ गया।
7: अरे वंशिका इस गर्मी ने तो हाल ही बुरा कर रखा है भाई, ऐसे तो फेस का सारा ग्लो ही खत्म करके जाएगी ये गर्मी।
8: क्या ही कर सकते हैं शैली, हर मौसम अपना प्रकोप दिखाएगा ही, बस ध्यान ये रखना है ग्लो अप सिर्फ फेस का ही नहीं होता, सोच अच्छी हो तो इंसान खुद ही चमक उठता है।
7: क्या बात है वंशिका, ये बहुत बढ़िया बात कही तुमने, सच में हम सिर्फ चेहरे की चमक दमक पर रुक जाते हैं, जबकि होना ऐसा चाहिए कि हमारी थिंकिंग का माइंडसेट का ग्लो अप एक नंबर होना चाहिए।
8: एग्जैक्टली, नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड करके, खुद को दूसरों से कंपेयर ना करके और दूसरों की तारीफ करके शायद आप इंटरनली ग्लो कर जाए।
7: दोस्तों लुक्स तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन आपके थॉट्स और एक्शंस ही आपकी असली पहचान बनाते हैं।
8: इसलिए दोस्तों अच्छी संगत रखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाइए और थैंकफुल रहिए हर उस चीज के लिए जो आपके पास है।
7: दूसरों के साथ कंपैरिजन करके सिर्फ आप खुद को दुख पहुंचा सकते हैं, इसलिए सेल्फ लव पर फोकस कीजिए, ग्लो आपके चेहरे पर खुद ही नजर आएगा।
8: बाकी खुश रहिए, युववाणी सुनते रहिए और हमारे साथ बढ़िए अगले सेगमेंट लव स्टोरीज की तरफ, जो कि आज की लव स्टोरी है परिणीता। इसका आज आप सुनेंगे एपिसोड 1 और इसको प्रेजेंट किया हमारी साथी शैली ने।
6: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे, ये धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे, हम तड़पने लगे, आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
0: कुछ रिश्ते नाम से नहीं एहसासों से बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज से शुरू हो रही है एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें मासूमियत है, अपनापन है और वो प्यार है जो बिना कहे दिल में बस जाता है। मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो साथी शैली और इस हफ्ते आप सुनेंगे एक प्रेम कहानी परिणीता, जो कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। आज है कहानी का भाग 1। कोलकाता की पुरानी गलियों में रहने वाली मासूम सी लड़की थी ललिता। माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वो अपने मामा गुरुचरण के घर रहती थी। घर की आर्थिक हालत बहुत खराब थी, लेकिन ललिता के चेहरे पर हमेशा सादगी और मुस्कान रहती थी। उस छोटे से घर में पैसे कम थे, लेकिन अपनापन बहुत था। ललिता घर का काम संभालती थी, मामा की दवाइयों का ध्यान रखती थी और सबकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखती थी। उसी घर के पास रहता था शेखर, अमीर परिवार का बेटा। बचपन से ही दोनों साथ बड़े हुए थे, कभी लड़ाई कभी हंसी, कभी रूठना तो कभी मनाना। शेखर अक्सर ललिता को छेड़ा करता था, कभी उसकी किताब छुपा देता तो कभी बिना वजह उसे परेशान करता, लेकिन अगर कोई और ललिता को कुछ कह दे तो सबसे पहले शेखर ही उसके लिए खड़ा हो जाता। धीरे धीरे ये साथ एक अनकहे रिश्ते में बदलने लगा। शेखर को आदत हो गई थी ललिता की और ललिता को शेखर की। वो शेखर की हर बात को अपना हक समझती थी, लेकिन शेखर अपने दिल की बात कभी समझ ही नहीं पाया। उसे लगता था कि ललिता सिर्फ उसकी दोस्त है, जबकि दिल में कहीं ना कहीं वो उसे खोने से डरता भी था। एक दिन शेखर ने देखा कि ललिता किसी और से हंसकर बात कर रही है और पहली बार उसे जलन महसूस हुई। उसने गुस्से में ललिता से बात करना कम कर दिया। ललिता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शेखर बदल क्यों रहा है। रात को जब सब सो जाते तो दोनों अपने अपने कमरे में एक दूसरे के बारे में सोचते रहते, लेकिन दिल की बात दोनों में से कोई नहीं कह पाया। क्या शेखर अपने दिल की बात समझ पाएगा? क्या ये दोस्ती कभी प्यार बन पाएगी? जानने के लिए सुनिए परिणीता का दूसरा भाग।
6: नजरों से नजरें
9: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
10: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
5: हो जाओगे एहसास कर लोट कोट,
10: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
7: और डोज में क्या है?
5: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
7: हाँ भाई, क्या हाल है? इतनी गर्मी में कैसे बाहर बैठा है तू?
8: अरे भाई, इस गर्मी का हाल देखने के लिए बाहर बैठा हूँ। मैंने सुना है कि 9 तपे शुरू हो रहे हैं, 9 दिन तक ज्यादा गर्मी रहने वाली है। मैंने सोचा आज पहले दिन की गर्मी का एहसास तो ले लूं।
7: अरे भाई, पहले दिन ही ऐसे पसीना टपक रहा है, आगे 9 दिन क्या होने वाला है हमारा?
8: अरे पता नहीं यार, मेरा तो कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा। एक तो वैसे ही देख ले, ज्यादा गर्मी और ज्यादा ठंड में तो मैं बिल्कुल काम नहीं कर सकता।
7: अच्छा, और जब मौसम सुहाना होता है तब?
8: अरे यार, तो मौसम सुहाने में काम करने का कौन सा मन करता है?
4: जी हाँ, मजा आ गया।

0: हेलो 9457078288।
1: कौन बोल रहा है?
2: ये है गपशप अड्डा।
1: ये है गपशप अड्डा।
3: हेलो। हाँ जी, तो गपशप अड्डा प्रोग्राम सेगमेंट शुरू हो चुका है, तो कौन सी साथी हैं जो हमसे जुड़ी हैं?
4: थोड़ी सी इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का हमारे कानों में आवाज हुआ।
3: क्या बात है, तो इतनी खूबसूरत बात कहने वाली कौन है, जरा नाम तो बताएं।
4: मैं हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
3: जी, तो ये बताइए सबसे पहले कैसी हैं आप?

0: और गाने के बोल हैं, तेरे इश्क का मुझसे हुआ ये असर है, देखती हो तो आता नजर है,
1: बहुत खूब,
0: तेरे इश्क
1: कितनी
0: का।
1: प्यारी आवाज है आपकी, हम तो सुनते ही मंत्रमुग्ध हो गए हैं। तो अब बिना देरी किए हम आपको ये गीत जरूर सुनवाएंगे। कोई साथी आपके साथ जो इस गीत को एंजॉय करना चाहते हैं?
0: भाई है मतलब अम्मी है, बस 3 जने और रेडियो को बहुत एंजॉय करते हैं। अम्मी नदी
1: चलिए
0: मंसूरी है, भाई मोहम्मद रफी मंसूरी।
1: चलिए चलिए, ठीक है, आप सभी के लिए पेश करते हैं ये इस गीत को।

0: तो चलिए देख दोस्तों, अब देख लेते हैं कि हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग
0: गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कौन बात कर रहे हैं
1: जी। मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश तली बोल रहा हूँ
0: जी? अविनाश जी, कैसे हैं आप?
1: जी। बहुत बढ़िया है और मौसम भी बहुत ही सुहाना बना हुआ है हमारे जो त्रिपुरा में। अभी देखिए बारिश हो रहा है लगातार और गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है वंशिका। और मैं तो यहाँ बैठकर बारिश को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं।
2: सच में इतनी गर्मी पड़ी है
1: जी जी
2: यहाँ पे तो बहुत।
1: ठीक है, तो हम फोन के माध्यम से आपको उधर कुछ फुहारे बारिश का भेज देते हैं।
0: जी, बिल्कुल, हमें बहुत जरूरत है यहाँ पर।
1: जी जी बिल्कुल, क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि देखिए उधर 44-45 डिग्री सेल्सियस रहता
0: जी,
1: है, बहुत ही तापमान। जी,
0: हाँ
1: तो इस
0: जी
1: गर्मी में बहुत ही परेशान होंगे आप लोग,
0: जी
1: लेकिन हम
0: सही
1: लोग का
0: बात।
1: देखिए यहाँ पर अभी 27-28 सेंटीग्रेड बना हुआ है, तो हम लोग बहुत ही मजे में अभी आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम का।
0: चलिए, तो बढ़िया है कि बारिश भी हो रही है, साथ ही साथ युववाणी का आनंद भी आपको मिल रहा है। तो ये बताइए, आज की
1: जी
0: शाम
1: जी
0: में कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी आज मेरी जन्नत में मुझे जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया।
0: जी,
1: एक गीत ओके
0: बहुत
1: ओके आवाज
0: खूब,
1: में जी
0: आवाज आपकी बहुत ही
1: जी
0: खूबसूरत है। आपने दो लाइनें सुनाई, हमारा दिन बन गया आज का।
1: जी क्योंकि अच्छा लगता है गुनगुनाना अभी।
0: जी, आपने बिल्कुल सही किया और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपने गीत गुनगुना कर बताया। ये बताइए, आपके साथ कुछ
1: जी
0: साथी हैं जो इस गीत को सुनना पसंद करेंगे आज?
1: जी जी बिल्कुल है, तो पहले तो आप दोनों के लिए रहेगा,
0: जी
1: उसके बाद जी उसके बाद है कानपुर से पूनम जी हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, केसे सिंह जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, सतीश फरुखाबाद से, और राकेश जी हैं, पूरन वर्मा जी हैं, और जितने श्रोता सुन रहे हैं सब तरीके डेलीगेशन पर है।
0: जी, चलिए आज की शाम में हम सुनवाते हैं आपको ये गीत, और कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? कौन से श्रोता
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: जी? कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ।
0: और प्रोग्राम सुनते हैं आप हमारा, युववाणी डेली?
1: अरे मैडम जी, ये पूछा मत, मैं तो आपके प्रोग्राम कॉल भी लगाता हूँ, फोन प्रोग्राम तो मेरा फेवरेट है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर आपका ये प्रोग्राम फेवरेट है, सेगमेंट फेवरेट है, तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो इस फेवरेट
1: क्योंकि
0: सेगमेंट
1: मैं आपका नजियाबाद, मेरे इधर पकड़ता रेडियो भी दिन में भी, तो मैं नजियाबाद भी सुनता रहता हूँ, 12 बजे सुनता रहता हूँ और शाम को, और जैसे रात में कई काम काम करने जाते हैं खेती बाड़ी में, तो नहीं सुन पाता हूँ क्योंकि आदमी का मजबूरी आई है तो कामों करना पड़ेगा, है कि नहीं मैडम?
0: बिल्कुल।
1: और
0: देखिए
1: फिर मोबाइल
0: कितना
1: भी
0: अच्छा
1: डाउन हो
0: मीडियम है ना
1: जाता है,
0: रेडियो, तो कितना अच्छा मीडियम है कि आप फोन
1: और
0: पे भी
1: रेडियो तो
0: डाउनलोड
1: रात
0: करके
1: को,
0: सुन
1: मैं
0: सकते
1: तो
0: हैं।
1: मेरे रात को 8 बजे चालू हो जाता है और 11 बजे चलता रहता है रेडियो।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप जुड़े ही रहते हैं हमसे। तो ये
1: हाँ,
0: बताइए कि आज
1: मैं तो आपके प्रोग्राम में जुड़ा हूँ, किसी नाम से पूछ लेना, सतीश के नाम से, फरुखाबाद से बहुत कॉल आती है,
0: हाँ
1: क्यों हम ही कॉल लगाते हैं।
0: जी, तो ये बताइए सतीश जी,
1: हाँ,
0: कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: आज दिल फिल्म का सुनना चाहता हूँ, वो प्रिया प्रिया, क्योंकि मैं अभी मेरे इधर आज जैसे दशमी का वो दशहरा वाला जो आम वाला मेला नहीं होता, हम देखते हैं मेला देखने आए थे, तो मेले में थे, तो मेले में प्रोग्राम भी सुन रहे थे और
0: जी,
1: कॉल भी ट्राई मार रहे थे।
0: अच्छा, अच्छी बात
1: हाँ,
0: है।
1: मेला भी देख रहे हैं।
0: अच्छा, तो लेकिन गर्मी में मेले का कैसे आनंद हो रहा होगा फिर?
1: अरे मैडम जी पूछो मत, गर्मी में तो मेरे पास सबसे ज्यादा चाट पकौड़ी वकौड़ी, ये तो खाने में इच्छा नहीं होती है, जैसा लगता है बर्फ है, पानी पीते रहो पीते रहो पीते रहो,
0: बिल्कुल,
1: सारी
0: देखिए
1: पेट भर
0: गर्मी
1: जाता है
0: में तो
1: पानी से।
0: पानी की ही ज्यादा आवश्यकता होती है, और पानी ही ज्यादा
1: हाँ
0: जरूरी भी है, तो बेटर
1: हाँ
0: है
1: ठंडा
0: कि
1: पानी, भाई देर तक कोई चीज खाना खाओ, पानी पानी पेट पेट भर जाता है, फिर पानी पीते रहो ऐसा लगता है,
0: हाँ, तो
1: और
0: चलिए
1: यही
0: ऐसे
1: गर्मी
0: पानी
1: पड़ती है।
0: पीते रहिए और गर्मी का मौसम एंजॉय करते रहिए, है ना? अपनी सेहत का ख्याल रखिए, और हम आपको सुनवाते हैं आपकी
1: और
0: पसंद का
1: गर्मी
0: एक
1: में तो
0: गीत।
1: मैडम जी कहना चाहता हूँ, अभी
0: जी
1: तो खनीने खरबूजा तरबूजा खीरा।

0: तो दोस्तों, अब कार्यक्रम की शुरुआत में जो हमने आपसे सवाल पूछा था, बूझो तो जाने सेगमेंट के अंतर्गत समय है उसका जवाब जानने का। सवाल था, दिवंगत प्लेबैक सिंगर आशा भोसले का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका सही जवाब है सांगली, महाराष्ट्र में।
1: और फेसबुक पर सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं विजय सुरलकर, हीरामणि वर्मा, मोहम्मद यासीन अनजान, धर्मेंद्र चीपा, अरविंद कुमार, कैलाश फुलमाली, विनय मोहन, दुर्गा राम साहू, नंद कुमार ठाकुर, बबलेश पवार, संतोष वैष्णव, लाल मोहम्मद अंसारी, नरेन नेताम, शाहरुन नूर अंसारी, राजेश वर्मा, राजू मिगलानी, दिनेश वर्मा, मोहम्मद सईद अब्बासी, संजय ढींगिया, सुदर्शन शाह, राम कुमार रेवार, प्रवीण चौहान, मोहम्मद जाहिद अली, विठल सुरोशे, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, रवि कुमार, राहुल, प्रेम सिंह, निसार सलमानी, अभिजीत नजमुल, मसरूर हसन, कृष्णन ढाबी, आर्यन राज, राधेश्याम पांडे और राष्ट्रपाल गजबिये।
0: तो दोस्तों, अब देख लेते हैं प्रोग्राम में अगली कॉल किसकी मिली है। हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
2: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: जी केसरी जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया है, और आप कैसे हो?
0: हम सब बहुत अच्छे हैं सर। आप बताइए कि आपके यहाँ गर्मी के क्या हाल है?
2: गर्मी तो बहुत तेज पड़ रही है दीदी,
0: जी बिल्कुल सही बात
2: और
0: कही आपने।
2: आज से नौ तपा लग गए हैं, तो और भी तेज है।
0: आज नौ तपे का पहला ही दिन है, उसके बाद तभी इतना बुरा हाल है, और आगे 9 दिन कैसे कटेंगे हमारे?
2: हाँ, वो तो कट तो जाएंगे, खैर दिन तो इससे पहले भी बढ़िया पड़ रही थी गर्मी तो, लेकिन अब थोड़ी सी और टेम्परेचर और बढ़ा है।
0: जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो ये बताइए, आज की शाम में कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
2: मूवी का नाम है जवाब हम देंगे, जाने के बोले हैरान हूं मैं आपकी जुल्फों को देखकर।
0: जी, ठीक है। तो ये बताइए, आपके साथ कुछ आपके साथी हैं जो इस गीत को सुनना पसंद करेंगे आज की शाम में?
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले आप सुनेंगे,
0: जी
2: और
0: जी
2: राम बाबू शर्मा जी हैं, गजराज लोधी जी, मांगीलाल चंदेल जी, भगवान सिंह परमार जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, शाहरुन अंसारी जी, सुनील झा जी हैं, और
0: जी
2: अविनाश तेली जी हैं, आशुतोष जी, संगीता देवनाथ जी, और पूनम जी हैं कानपुर से, और जितने भी लाइव सुन रहे हैं सबके लिए रहेगा।
0: जी जी जी ठीक है। आज की शाम में हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का एक गीत, और कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार जी। कौन बात कर रहे हैं?
1: जिला गुना मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बात कर रहा हूँ बहन जी।
0: जी मांगेलाल चंदेल जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया हूँ, आपकी दुआ से और भगवान की कृपा से बढ़िया हूँ। और मैं ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे।
0: जी हम सब बढ़िया हैं।

0: है। तो ये
1: बस बढ़िया ही
0: बताइए
1: आना
0: कि
1: चाहिए
0: देखिए,
1: जी।
0: क्योंकि समय की सीमा को हमें नजर में रखना है, उसको देखते हुए हम आपसे जल्दी से जानना चाहेंगे कि कौन सा गीत आज आप सुनना चाहेंगे।
1: तो फिर फिल्म का नाम है आंखें और गाने की बोल है मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
0: बिल्कुल, आपको जरूर सुनवाएंगे कोई साथी जो आपके साथ इस गीत को सुनना चाहे।
1: हाँ वो साथी मेरे वो हैं केसरी सिंह राजपूत जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, मोहम्मद बक्कार फरीदी जी हैं, मकसूद हुसैन भाई साहब हैं और विष्णु अग्रवाल जी हैं, और सभी सभी सब्जी मंडी नजीबाबाद से हमारी भाभी रानी अग्रवाल जी भी
0: चलिए, तो आप सभी की पसंद पर हम आपको सुनवाते हैं ये आपका
1: जी।
0: गीत।

0: तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का युववाणी कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं हमें जरूर बताइएगा अपने खत के जरिए। खत के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 246763।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288, जिस पर आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं बताने के लिए। आप हमारे सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अपडेटेड रहने के लिए हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है @आकाशवाणी नजीबाबाद। साथ ही हमारे पुराने प्ले, कहानियाँ, हमारे खूबसूरत से प्रोग्राम्स आप यूट्यूब चैनल आकाशवाणी नजीबाबाद पर सुन सकते हैं। आप सभी लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिए। और इसी के साथ अपनी साथी शैली
0: और मुझे वंशिका सोती को दीजिएगा कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
2: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह के अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा की पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं और अब किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया नरेश पाल सिंह की राम राम। और किसान भाइयों, क्या हाल चाल हैं आपके? भैया देखिए, आपके हाल चाल तो ठीक होंगे, लेकिन गर्मी ने थोड़े से हाल चाल खराब कर रखे हैं। तो भाइयों को चाहिए कि भाई वो गर्मी से अपना बचाव रखें, और भाई धूप में अपने सर पर कपड़ा अवश्य रखें, फुल बांह की कमीज पहने और सूती वस्त्र पहने, और भैया पानी जो है वो बार बार पीते रहें, ताज़ा और ठंडा पानी। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई थोड़ी सी सावधानी रखें, हो सके तो भैया नींबू पानी आप अवश्य पिएं। नींबू पानी बहुत बढ़िया चीज़ होती है, और भाई शाम को या दोपहर को भोजन में यदि पुदीने की चटनी मिल जाए तो क्या कहने। तो भाई अपने आप को हाइड्रेट रखिए और गर्मी से बचाइए, और इसी प्रकार आप अपने पशुओं का ध्यान रखिए। आपके पशु भी भाई गर्मी से बहुत प्रभावित होते हैं, और इन दिनों आप देख रहे हैं कि कितनी लू चल रही है। दोपहर 12 बजते बजते लू का प्रकोप शुरू हो जाता है, और जो देर शाम 4 बजे के आसपास तक रहता है। तो भैया अपना काम सुबह खेतों में जल्दी निपटा लें, और शाम को भी खेतों में देर से जाएं जब धूप हल्की हो जाए और लू भी कम चले। लेकिन बस यही ध्यान रखना है कि भाई आपके अंदर पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। और भाई इसके साथ साथ हमारे किसान भाई आम का पना बनाकर पी सकते हैं, जो लू में एकदम कारगर होता है। नींबू और प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी लू लगने का भय कम रहता है। और भाई आम का पना तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। आम को आप कच्चे आम को आप उबाल कर उसका जो गूदा होता है उसमें आप जो है नमक चीनी और जीरा पाउडर मिलाकर पी सकते हैं, और उसमें आप चूर्ण भी डाल सकते हैं, जो स्वादिष्ट लगने के साथ साथ एक तरल पेय है, आपके अंदर हाइड्रेशन होगा, यानी कि आप जो है पानी की कमी नहीं आपको रहेगी, और दूसरा भैया आपको लू भी नहीं लगेगी, क्योंकि ये कच्चे आम में विशेषता होती है। और भाई जो हमारे पशु हैं उनका भी किसान भाई इसी प्रकार ध्यान रखें। पशुओं को भैया सुबह तेज धूप होने से पहले ही पशुशाला में बांध दें, और पशुशाला में पशुओं के लिए यदि पंखे की व्यवस्था हो, क्योंकि आजकल सभी के पास भैया बिजली उपलब्ध है, तो किसान भाई अपने पशुओं के ऊपर पंखा भी चलाते हैं। कुछ लोग साइड में बड़ा कूलर या तूफानी पंखा भी चलाते हैं, और किसान भाई ये भी जानते हैं कि भैया नहलाना पशुओं को कितना लाभदायक होता है। तो कम से कम ऐसी गर्मी में हमारे किसान भाई दो बार तो अपने पशुओं को अवश्य नहलाएं, और भैया उन्हें साफ और ताज़ा पानी एकदम पिलाएं, तभी हमारे किसान भाइयों के पशु सही रह सकते हैं। और भैया हाँ, इस गर्मी में थोड़ा सा पशुओं का रातब बढ़ा दें, क्योंकि भाई पशुओं को भी गर्मी से लड़ने के लिए अतिरिक्त शक्ति चाहिए, और उसमें भैया हरा चारे का समावेश जरूर करें। कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि रातब के साथ सूखा भूसा खिलाते हैं सानी करके, तो भाई जब तक हरा चारा भी हमारे पशुओं को नहीं मिलता तब तक हमारे पशु चाहे कितना ही हम दाना खिलाएं, कितना ही रातब दें, हमारे पशु तब तक अपना पेट अच्छी तरह नहीं भरते जब तक उन्हें हरा चारा नहीं मिलता। तो भैया हरा चारे का समावेश हमारे किसान भाई गेहूँ के भूसे में अवश्य करें, और अपने पशुओं को स्वस्थ रखें। और भैया पशुओं के लिए एक और चीज़ होती है खाने की, वो होता है साइलेज।

0: तो किसान भाई जो गेहूं का भूसा होता है जिसकी इस समय बहुत अधिकता है, तो उसका साइलेज बना सकते हैं। और साइलेज बनाने के लिए हमारे किसान भाई जो है यूरिया का उपचारित करके साइलेज बनाते हैं, और इस प्रकार से हमारे पशु साइलेज से बड़े चाव से सूखा भूस भी खाते हैं जब उसमें साइलेज बन जाता है। तो इसके लिए हमारे किसान भाई यूरिया से बना साइलेज खाते हैं, और यूरिया की मात्रा कितनी डालनी चाहिए ये हमारे किसान भाई अपने नज़दीक के पशु चिकित्सा अधिकारी से बात करके अवश्य करिए, क्योंकि साइलेज बनाते समय कुछ किसान भाई यूरिया की मात्रा बढ़ा देते हैं तो हमारे पशु को नुकसान हो सकता है, जो बहुत ही भारी नुकसान भी हो सकता है। यदि हमारे पशु की मृत्यु हो जाए तो किसान भाई को कितनी बड़ी हानि होगी, क्योंकि आजकल भैया छोटी से छोटी भैंस भी 1 लाख से कम की नहीं है। और भाई आप देख रहे हैं कि गर्मियों में दूध कितना ज़रूरी होता है, तो भैया अपने पशुओं को सूखे चारे से बना हुआ, सूखे गेहूं के भूसे से बना हुआ साइलेज खिलाइए, जो हरे चारे की पूर्ति भी कर देता है और पशु इसको चाव से भी खाते हैं। खैर भैया, आज के कार्यक्रम में आपसे बातें तो और भी होंगी, लेकिन यहाँ पर कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित
2: बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो बासमती।
1: किसान भाई सुनेंगे हर माह के अंतिम मंगलवार को शाम 6:05 पर
2: बासमती धान से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं के बारे में।
1: स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से जानकारी लेने के लिए हमारे फोन नंबर है
2: 01341230105
1: और हमारा मोबाइल नंबर है 9457072888।
2: बासमती धान की गुणवत्ता युक्त जानकारी लेने के लिए सुनते रहिए
1: हर माह के अंतिम मंगलवार को बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ द्वारा प्रायोजित
2: सजीव फोन इन कार्यक्रम
3: हेलो बासमती।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: तो किसान भाई, और किसान भाई जानते हैं कि भाई इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने किसान भाइयों को कोई ना कोई ऐसी जानकारी देते हैं जिससे हमारे किसान भाई अपनी खेती किसानी से, अपने पशुपालन से कुछ ना कुछ अतिरिक्त लाभ लें या भाई अपने जो काम धाम है उसमें तरक्की करें। तो भाई आज हम अपने कार्यक्रम में एक प्रगतिशील कृषक से आपकी भेंट कराएंगे जो कि गन्ना उत्पादन में विशेष महारत हासिल रखते हैं, और इन्होंने कई कृषि विभाग से और गन्ना विभाग से और सरकार से भी कई पुरस्कार जीते हैं। तो ऐसे ही आज एक प्रगतिशील कृषक हमारे बीच हैं, श्री कुलवीर सिंह। तो आइए जानते हैं कि गन्ना उत्पादन के इनके क्या क्या अनुभव हैं। तो भैया ज़्यादा देर न करते हुए आइए सुनते हैं इनकी ये स्थल रिकॉर्डिंग और करते हैं इससे बातचीत। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपसे हम समय समय पर प्रगतिशील कृषकों से रूबरू कराते रहते हैं, तो आज हम जनपद बिजनौर तहसील और विकास खंड नदीबवाद के अंतर्गत आने वाले गांव तिसोत्रा में पहुंचते हैं और वहां मिलते हैं एक प्रगतिशील कृषक से जिन्होंने गन्ना उत्पादन में रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त किया है और उन्हें कई जगह से अवार्ड और पुरस्कार भी मिले हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा उनके ही द्वारा उनका परिचय। आपका शुभ नाम?
3: मेरा नाम कुलवीर सिंह, गाँव तिसोत्रा।
2: तो कुलवीर सिंह, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में है।
3: धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत।
2: तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादातर हमारी नकदी फसल गन्ना।

0: होती है। तो गन्ने की फसल हमारे किसान भाई ज्यादा उगाते हैं इधर, और हमारे जिले में 10 चीनी मिल भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कौन सी प्रजाति का गन्ना इस समय उगाते हैं?
1: प्रजाति तो कई सारी हैं
0: जी,
1: पहले तो मुख्य 238 थी, अब तो कई प्रजाति आ गई
0: जी जी।
1: अब जा तो दोबारा जैसा 18231 है, 19231 है
0: जी,
1: 16030 है, 17018
0: जी,
1: इनका गन्ना लगा रहा है।
0: तो 0238 गन्ना अब आप नहीं बोते?
1: नहीं, अब दूध नहीं, खत्म ही कर दिया
0: जी जी जी। हाँ, लगभग सभी किसानों ने उसको जो है
1: उसका जो टाइम खत्म हो गया
0: जी जी, उसमें लाल फरण रोग इस कदर छा गया था, और उसमें जो है ऊपर जो टॉप बोरर है वो भी बहुत ज्यादा आता था।
1: हाँ, वो तो असल में हर चीज का एक टाइम पीरियड है
0: जी जी जी,
1: तो उनका टाइम अपना पूरा हो गया उसका वैरायटी का
0: जी। हाँ, तो गन्ना उत्पादन से अधिक आमदनी लेने के लिए गन्ने की फसल से, आप गन्ने की फसल में शुरू से और बाद तक जो शस्य क्रियाएं करते हैं, जो उसमें खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या विधि है, किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमारे किसान भाई भी सुने कार्यक्रम में और कार्यक्रम को सुन के वो भी लाभ उठाएं।
1: गन्ना खेती में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही है अब
0: जी,
1: कि ये जो मोनोक्रॉपिंग हम कर रहे हैं
0: जी,
1: गन्ने में गन्ना, गन्ने में गन्ना
0: जी, फसल चक्र नहीं पड़ा है,
1: 90% क्षेत्र पर हम गन्ना बो रहे हैं
0: जी। हाँ,
1: तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो हमारे यहाँ ये होगी कि मोनोक्रॉपिंग की
0: जी जी,
1: तो हमें एक तो थोड़ा बदलाव ये करना जरूरी, हमें एक फसल का उसके बीच में कोई गैप लगाना चाहिए
0: जी। हाँ,
1: दूसरी जो हम विधि हमारी जो परम्पर विधि हम बोते हैं 2.5 फीट की दूरी पर गन्ना
0: जी,
1: वो विधि भी छोड़नी चाहिए,
0: बिल्कुल जो हमारी परंपरागत विधि है
1: उसमें बदलाव करना चाहिए आज के समय के अनुसार। जैसे लेबर की समस्या आ रही है, पानी की दिक्कत हो रही है, तो हमें स्पेस बढ़ाना चाहिए, यानी कि 4.5 से लगाकर 5 फीट की दूरी पर हमें गन्ने की बुआई करनी चाहिए
0: जी जी जी। तो लाइन से लाइन की दूरी हमारे किसान भाई कम से कम 4.5 फीट,
1: 4.5 फीट जी, उसमें हमें मैकेनिकल काम करने में लाभ होगा, जैसे छोटा ट्रैक्टर चल जाता है निराई गुड़ाई के लिए
0: जी जी,
1: लेबर की समस्या आ रही है
0: जी। हाँ, लेबर तो मिलती नहीं है, और बैल भी किसान के पास नहीं है, पशु नहीं है।
1: दूसरा जो पानी है वो हम नाली नाली में पानी लगाते हैं
0: जी,
1: तो 90% पानी की भी उसमें बचत होती है
0: जी, यानी कि हम ट्रेंच विधि से बोएं वो गन्ना,
1: ट्रेंच विधि से गन्ना,
0: ऐसा ना बोएं कि हम चौड़ी विधि से बोएं उस पर पाटा लगा दें,
1: ना वो गलत,
0: वो गलत,
1: वो गलत
0: जी,
1: वो विधि गलत। दूसरे जब हम खेत को चुनाव करो गन्ना बुआई के
0: जी जी,
1: तो खेत में हम गहरी जुताई करो,
0: अच्छा
1: मिट्टी को हम पलटना,
0: यानी कि जो हमारे ट्रैक्टर चालित यंत्र हैं वो जिसको मिट्टी पलट बोलते हैं, बड़े बड़े जो है प्लाउ,
1: दो हल्का एक प्लाउ आता है जिसे मोल्ड प्लाउ बोलते हैं
0: जी जी, मोल्ड वोल्ड प्लाउ,
1: उससे हम जमीन को दो बार क्रॉस
0: जी,
1: एक बार है उत्तर दक्षिण
0: जी, एक बार पूर्व
1: पश्चिम
0: जी जी जी,
1: और फिर कंप्यूटर लगवा कर अपनी खेत की तैयारी करो।
0: अच्छा।
1: उसी समय हम 5 किलो ट्राइकोडर्मा,
0: अच्छा
1: देसी खाद में मिलाकर
0: जी जी
1: 5-7 दिन रख कर,
0: अच्छा
1: उसे खेत में जुताई पर खेलते।
0: हाँ, जब ट्राइकोडर्मा उस के ऊपर अपनी जो है
1: फंगस
0: एक्टिव हो जाता है, लाल लाल हो जाता है जी,
1: तो उसे बखेर दे।
0: अच्छा,
1: और उसे फिर अपना रूटावेटर चला के उसे तैयार खेतू करके
0: जी
1: 4.5 फुट को 910 इंच गहरी लाइन निकाल दो।
0: अच्छा,
1: खेत में
0: जी जी कूड़ बनाए,
1: कूड़ बना
0: जी,
1: और फिर दो आग के टुकड़े
0: जी,
1: दो आग से बड़ा टुकड़ा
0: नहीं होना चाहिए,
1: नहीं बोना चाहिए
0: जी जी,
1: दो आग के टुकड़ों को 100 ग्राम दवाती है फंगीसाइड थायफेड मिथाइल
0: जी जी,
1: उसमें डुबो को
0: मिथाइल थायफेनेट,
1: हाँ
0: जी जी
1: उसमें डुबो को
0: जी हाँ,
1: और उन टुकड़ों को निकाल कर अपना 6 इंच की दूरी पर
0: जी
1: खुड़ में रखते चले जाते।
0: अच्छा,
1: यानी कि जैसा हम पहले 30-35 क्विंटल प्रति एकड़ बीज डालते थे
0: जी,
1: तो इस विधि में हम 10 क्विंटल में
0: एक एकड़ का काम हो जाए,
1: बुआई कर लेंगे। तो है भी हमारी बचत होगी,
0: बिल्कुल 4-5 क्विंटल एक बीघा में लगता है।
1: दूसरा, जब हम खूब गन्ना बोने से पूर्व खूब की जो नाली निकलती है हमारी
0: जी,
1: उसमें हम 1 क्विंटल या 2 क्विंटल कंपोस्ट खाद 50 किलो DAP में मिलाकर खुड़ में
0: डालते, जो हमारे गन्ने के टुकड़े हैं उसको रखने से पहले
1: पहले।
0: अच्छा,
1: और उसमें ही हम कोई ऐसी कि अगर मान ले हमारी जमीन रेतीली है
0: जी,
1: तो हमें दीमक के बचाव के लिए कीटनाशक कोई दवाई उसमें मिला देनी चाहिए
0: जी जी, बिल्कुल
1: उसके अंदर। अगर दीमक आपके खेत में नहीं है तो कीटनाशक दवाई गिरने की कोई
0: आवश्यकता नहीं
1: जी, उससे बचाओ। बुआई करने के बाद हमें गन्ने के ऊपर 1 इंच मिट्टी डाल ली।
0: अच्छा जी,
1: और हल्की एक सिंचाई
0: कर देनी,
1: कर देनी
0: जी।
1: उसके बाद हमें खरपतवार की एक दवा का स्प्रे कर देना
0: जी। बुआई से पहले पलेवा नहीं करते?
1: पलेवा नहीं करना।
0: अच्छा, सूखे में
1: बुआई करनी
0: जी जी जी,
1: सूखे में जुताई करनी, सूखे में बुआई करनी।
0: अच्छा,
1: और फिर उसमें हल्का सा पानी देना
0: जी। उसके बाद आप बता रहे हैं कि
1: खरपतवार नाशक का उसको स्प्रे कर
0: जी,
1: के अंदर
0: जी, तुरंत। अच्छा,
1: इसके 20-25 दिन बाद जब हमारा गन्ना पूर्ण रूप से जम कर बाहर आ जा
0: जी हाँ,
1: तो गन्ने की लाइन के बीच में जमीन की भौतिक दशा सुधारने के लिए 2 लाइन मूंग की लगा दे।
0: अच्छा जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने।
1: अगर आप फली तोड़ना चाहते हैं तोड़ ले, नहीं तो उसे जोत के खेत में
0: मिला दें, मिला बिल्कुल कार्बनिक खाद हो जाएगी और
1: 50 दिन बाद में जोत दे।
0: और उसमें हमारे किसान भाई समझ रहे होंगे कि जो दलहनी फसलें हैं उनकी जड़ों का भी खाद लगता है।
1: हाँ, जड़ों का भी खाद लगता है। दूसरा एक और होता
0: जी,
1: हमारी जमीन को जब हम आच्छादन करते हैं
0: जी,
1: मतलब चाहे आप जितनी भी छाकर करो,
0: खरपतवारों का भी नियंत्रण रहे,
1: चाहे हरी मतलब कोई फसल बो को करो
0: जी,
1: आच्छादन तीन प्रकार का होता है
0: जी जी,
1: निर्जीव पत्ती
0: जी,
1: सजीव कोई फसल दाल वाली फसल उसमें बीच में बोना
0: जी हाँ,
1: तो जमीन का जो तापमान है वो मेंटेन होता है
0: जी,
1: उसके नीचे सूक्ष्म जीव है वे अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल, सूक्ष्म जीव की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती, सुचारू रूप से जारी है,
1: चलती रहती 70-80-90 दिन तक। उसमें हम कोई भी वो नहीं डाल, मतलब मट्टी नहीं डालनी।
0: अच्छा जी,
1: गन्ने के अंदर
0: जी जी, कूड़ के अंदर,
1: कूड़ के अंदर 40-50 दिन के बाद हम उसमें 5 किलो एकड़ यानी 25 किलो एकड़
0: जी
1: नाइट्रोजन डाल ली।
0: अच्छा, यूरिया,
1: यहाँ जब गन्ना जम जा
0: जी,
1: इससे दिख गई उसकी एक बार खोद के अंदर निराई गुड़ाई कर दो
0: जी,
1: मतलब कोई किसी चीज से उसकी जमीन को उसकी वो थोड़ी तोड़ दो हार्डनेस
0: जी जी,
1: और अपना उसको ऐसे ही जब हमारी टिल्डिंग 6-7-8 गन्ने हमारे
0: हो जाए तैयार
1: हो जाए
0: जी,
1: जब उसमें मिट्टी डाल दी।
0: अच्छा, जब उसको एक सार कर दे,
1: बीच बीच में उसमें अपना जो कीट ना कोई कीट दिखाई देता है उसका स्प्रे कर दे,
0: कोई कीटनाशी लगाते रहे,
1: शुरू में तो एक दो स्प्रे कीटनाशी के कर दे आप, क्लोरो के, प्रोपोनोफॉस के
0: जी जी जी,
1: सही मात्रा में, मतलब दवा की सही मात्रा, ना ओवरडोज हो ना दवा कम हो।
0: तो जैसे आमतौर पर किसान भाई जो है, यदि हम छोटे स्तर की बात करें तो एक 15 लीटर की टंकी होती है नैपसैक स्प्रेयर, जैसे कमर पर लाद के हमारे किसान भाई करते हैं, तो उसमें कितनी दवाई हम क्लोरोपाइरिफास या प्रोफेनाफोस साइपरमेथ्रिन वाली डाल लें?
1: हाँ, ये दवाई है, जैसे मान लो कुछ दवाई तो ऐसी है
0: जी
1: जो 27 ग्रुप की, तुम्हारी कोरोजन हो या कोई और
0: जी, जी।
1: तो मात्रा बहुत कम।
0: अच्छा,
1: लेकिन जैसे क्लोरो प्रोफेनाफोस
0: जी,
1: ये दवाई हम एक एकड़ में 500 ml पहुंचानी,
0: आधा लीटर जी,
1: उसका अनुपात बना ले
0: जी जी जी।
1: बहुत ज्यादा पानी लोग जैसे लोगों 1000 के या 500 लीटर टैंक रखे
0: जी,
1: जब गन्ना छोटी अवस्था में हो तो इतने पानी की आवश्यकता नहीं।
0: हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
1: अगर इतना पानी हम लगाएंगे
0: जी
1: तो दवाई का जो वो होता है घनत्व वो घट जाता है।
0: अच्छा, जैसे बरसात आ जाती है, जुलाई से बरसात लग जाती है और गन्ना भी बड़ा हो जाता है, और उस समय हमारी फसल में ऊपर चोटी बेधक या कोई ऐसी चीज आया, और एक आपने सुना होगा ग्रामीण कहते हैं कि हमारा गन्ना बैठ गया, तो यदि वो वाला रोग आ जाए तो उस समय कैसे कंट्रोल करेंगे?
1: उसमें जून के जब बरसात आती है
0: जी,
1: एक दिवाली से गन्ना बैठना कहते हैं
0: जी,
1: वो है मिलीबग।
0: अच्छा,
1: मिलीबग हमेशा फैल लगा खेत के डॉल पर जहाँ खरपतवार होगी या पेड़ हो।
0: अच्छा अच्छा, यानी कि ऐसा कीट है वो।
1: हाँ, एक जगह से शुरू होगा
0: जी,
1: और फिर पूरे खेत में फैल लगा
0: जी जी जी,
1: तो जहाँ शुरू में दिखाई दे
0: जी
1: उतने ही हिस्से को एक इमिडा दवा थी,
0: इमिडा क्लोपिड,
1: उसे तल से ऊपर तक उसे धो दे।
0: अच्छा जी जी,
1: खेत का निरीक्षण करते रहे, अगर कहीं और दिखाई दे तो घुमा दे, पूरे खेत को मारने की दवाई की
0: जरूरत नहीं,
1: जरूरत नहीं
0: जी जी जी। जहाँ से
1: खेत के आसपास डॉलो पर उसको जो उसकी मेन
0: जी
1: वो कोई घास वगैरह नहीं होनी
0: जी।
1: रही बात उसकी जो आखिर में टॉप आता
0: जी,
1: अगर हम इसकी टॉप ओवर की पीढ़ी है, जैसे एक मार्च मारती, फिर दूसरी अप्रैल मारती, फिर तीसरी जून मारती, फिर जुलाई मारती, फिर अगस्त मारती, तो अगर हम पहली पीढ़ी जो मार्च मारती
0: जी हाँ
1: उसका कंट्रोल कर दे
0: जी,
1: तो दूसरी पीढ़ी का वेग कम आवे। अगर हम दूसरी पीढ़ी आने पर क्रोजन एक दवाई आती
0: जी हाँ
1: उसकी ड्रेंचिंग कर दे
0: जी जी,
1: यानी मई के पहले सप्ताह उस दूसरी पीढ़ी के वेग को हम रोक दे।
0: अच्छा,
1: तो तीसरी चौथना भी कम
0: कम आती है
1: क्योंकि उसका प्रसार नहीं हो पाया।
0: बिल्कुल, आगे जो लार्वा अंडे वो नहीं बन पाए,
1: वो नहीं बन पाए
0: जी जी जी।
1: तो इसलिए हम एक पीढ़ी को उनकी दो पीढ़ी हम हटानी बहुत जरूरी
0: जी
1: उनका
0: जी।
1: पहली पीढ़ी का निस्तारण बहुत आसान है
0: जी,
1: पहली पीढ़ी में जहाँ वो तुमको दिखाई दे उसे जड़ से काटो
0: जी,
1: बाहर निकालो
0: जी,
1: लाइट ट्रैप फॉर्मेन ट्रैप का भी प्रयोग कर सकते हैं
0: जी, जैविक कीट नियंत्रण के लिए। हाँ, मतलब यदि आप रसायन का प्रयोग ना करें तो फोरमैन ट्रैप और लाइट ट्रैप का प्रयोग कर सकते हैं हर किसान भाई। अच्छा, और कोई विशेष बात रह गई हो गन्ना उत्पादन से? तो कोई
1: गन्ना उत्पादन में तो एक विशेष बात ये हो कि हम बीज का जो चुनाव है
0: जी
1: वो महत्वपूर्ण
0: जी, जी जी।
1: हम किसान अब ज्यादातर हम भी थे, हाँ उसमें हम जो गन्ना मिल में बेच रहे हैं
0: जी हाँ
1: उसे ही खेत में बो रहे हैं
0: जी,
1: जिस गन्ने को मिल में ले जा रहे हैं उसे खेत में बो रहे हैं
0: जी हाँ,
1: यो गलत।
0: तो कौन सा गन्ना हम अपनी बुआई के लिए तैयार करें या लाएं?
1: इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है बीज
0: जी हाँ,
1: बीज का हमें प्लॉट अपना अलग बनाना।
0: अच्छा,
1: यानी कि बीज प्लॉट ही बनाना।
0: तो वो किस तरह से तैयार करेंगे?
1: उसका तैयार करने का तरीका यो है कि जब हम फरवरी की बुआई करते हैं
0: जी हाँ,
1: तो उसके बीज के लिए हम मई में गन्ने की बुआई करनी। मई में जब गन्ना हम जितनी हमारी जरूरत है, मान लिया 50 क्विंटल हमें गन्ने की जरूरत है
0: जी,
1: तो हम 1.5 बीघा गन्ना मई में बोला
0: जी,
1: उस गन्ने को बोने के लिए हमें खेत में जब बीज लाना है
0: जी,
1: तो वो हम बीज जो छांट के लाना, मतलब अच्छा। खड़े गन्ने में काट के लाना।
0: जी जी।
1: अगर हम 100 गन्ने की बुआई करनी है तो हम 300 गन्ने लाने काट के।
0: जी।
1: 300 को काट कर फिर हम 150 गन्ने छांट के खेत।
0: जी जी।
1: और बोतो हम 100 पे लाना।
0: जी हाँ।
1: यानी कि बिल्कुल जो विशेष गन्ने हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल,
1: उनकी हम बुआई करनी,
0: रोग रहित
1: गन्ने,
0: आकर्षक चमकीले
1: चमकीले गन्ने।
0: और मेरे ख्याल से आपका कहना ये भी होगा कि जो नीचे जमीन के पास वाला भाग होता है, जड़ वाला,
1: उसको भी उसे छोड़ दे, 1 फीट के करीब
0: उसे 1 फीट छोड़ दे।
1: जी जी। उस बीज को दवाई में डीप करके 24 घंटे के लिए।
0: जी हाँ, किसी कवकनाशी में
1: उसमें उसे लगा।
0: अच्छा।
1: उस खेत की विशेष ध्यान रखो, कोई भी कीट उसमें आता।
0: जी।
1: पहली बात तो उस गन्ने को काट कर बाहर निकालते रहे।
0: अच्छा।
1: दवाई वाई का भी स्प्रे करते रहे।
0: जी जी।
1: और उसमें देर तक हम खाद नाइट्रोजन वगैरह देते रहने से।
0: अच्छा।
1: वो गन्ना हमें पकने नहीं देना।
0: जी जी।
1: यानी कि उसमें कच्चापन रहना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: बीज का गन्ना काटने से 10 दिन पहले उसमें हम 5 किलो का बीघा यूरिया यानी 25 किलो यूरिया एक कर डालकर 8 दिन पहले पानी देना चाहिए।
0: जी।
1: जब उसमें से बीज काटना चाहिए।
0: जी जी।
1: तो हमारा गन्ना परिपक्वता उसकी कम से कम 9 से 10 महीने से अधिक ना हो।
0: जी।
1: वो गन्ने
0: की उसकी आयु 10 महीने के करीब
1: से ज्यादा ना हो।
0: और आपने बिल्कुल सही बात बताई कि बाद में जो पानी देते हैं कटाई से पहले उसमें यूरिया में रहते हैं तो गन्ना अंदर से डाइल्यूट हो जाता है।
1: चिन्नी उसकी वो उसमें शेरे में परिवर्तित हो जाती
0: है। जी जी जी। पतला भी हो जाता है।
1: अगर चिन्नी घट जाएगी
0: जी
1: तो गन्ने का जमाव प्रतिशत बढ़ जाता
0: है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जी बीज का, अगर इस प्रक्रिया को आप 4 या 5 साल तक दोहराओगे
0: जी
1: तो आपके पास स्वस्थ बीज।
0: तो कुलवीर सिंह जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप 1 एकड़ में कह लो या हेक्टर में कह लो या 1 बीघा में कह लो, कितना गन्ना उत्पादन आपने किया है अधिकतम?
1: वैसे गन्ने की बुआई के हमारे यहाँ 3 सीजन है।
0: जी।
1: एक तो सितंबर अक्टूबर बुआई होती है।
0: जी हाँ, शरदकालीन गन्ना,
1: शरदकालीन बोलते हैं।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: एक हमारे यहाँ होती है बसंतकालीन जो फरवरी मार्च में बोते हैं।
0: जी हाँ।
1: एक देर से बुआई होती है जो गेहूँ काटने के बाद बोते हैं।
0: जी जी।
1: तो किसान एक तो गेहूँ की कटाई के बाद गन्ने को अवॉइड,
0: जी
1: उसकी बुआई
0: पछेती बुआई ना करो। जी।
1: दूसरा जो उत्पादन हमारा जो सबसे ज्यादा मिलता है
0: जी
1: वो सितंबर अक्टूबर की बुआई का मिलता है।
0: जी हाँ बिल्कुल। और उसका कुछ और भी फायदा होता है?
1: हाँ, उसमें सह फसली ले सकते हैं।
0: जी जी।
1: उससे दूसरा लाभ ये मिल जाता है।
0: जी।
1: दूसरा, अगर सितंबर हम बुआई करेंगे तो उससे पहले हमारी जमीन का भी बदलाव हो जाता है, यानी कि मुंडे में मुंडा गन्ना काटने वाली जमीन नहीं मिलती।
0: जी हाँ, अक्सर किसान भाई सितंबर की बुआई चारे वाली जमीन में,
1: चारे वाली में या धान वाली में।
0: जी जी जी जी।
1: या वो हरी खाद लगाने के बाद करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो वो हमारे मतलब वो भी
0: क्रॉप रोटेशन भी हमारा अच्छा हो जाता है। जी जी।
1: तो इन बातों का 2-3 ध्यान रखकर जब सबसे उत्पादन जो प्राप्त होता है वो सितंबर की बुआई।
0: जी हाँ। तो आपने अधिकतम उत्पादन कितना किया 1 बीघा के हिसाब से, यदि हम बात करें, क्योंकि इस क्षेत्र में लोग बीघा ज्यादा जानते हैं।
1: अब क्विंटल में उत्पादन बताने में थोड़ी आलोचना बहुत बढ़ती है।
0: जी जी जी। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन जो रियलिटी है, जो सही बात है वो बताइएगा।
1: 165 क्विंटल 1 बीघे में मैंने उत्पादन सितंबर की बुआई का लिया।
0: सितंबर की जो शरदकालीन गन्ने की बुआई, और बीच में अंतर्वर्ती फसल भी ली होगी।
1: बीच में अंतर्वर्ती फसल में 1 लाइन सरसों की।
0: जी जी जी। बहुत अच्छी बात है और बहुत बधाई। अच्छा गन्ना,
1: हाँ इसमें हमें सह फसली में भी एक ध्यान रखना चाहिए।
0: जी वो क्या?
1: जैसे सितंबर में हम गन्ना लगाते हैं
0: जी,
1: तो हम सह फसल में अगर सरसों बो रहे हैं तो वो गन्ना बुआई के 1 महीना बाद करनी
0: चाहिए। अच्छा।
1: हाँ।
0: बुआई के 1 महीना
1: बाद, यानी कि अक्टूबर के 20 अक्टूबर के आसपास।
0: हाँ, जब हमारा गन्ना समल जाए
1: टेलिंग कर ले,
0: क्योंकि सरसों की लंबाई ज्यादा होती है।
1: हाँ, सरसों और गन्ने में प्रतिस्पर्धा पैदा ना हो।
0: जी,
1: सरसों बढ़ने वाली फसल है।
0: बिल्कुल, क्योंकि सरसों का उस समय भी होता है।
1: हाँ।
0: तो सरसों एक तो अपने समय के अनुसार ज्यादा भागेगी ऊपर, ज्यादा वृद्धि करेगी।
1: साथ बो सकते हैं हम
0: जी,
1: गन्ना बुआई के साथ बो सकते हैं
0: जी,
1: गोभी मटर शलजम लहसुन इन्हें बो सकते हैं।
0: जी जी जी।
1: इनसे प्रतिस्पर्धा फसल नहीं करती।
0: जी।
1: इनसे कंपटीशन नहीं करती।
0: जी।
1: लेकिन कुछ फसलों से गन्ना की फसल जो वो करती है
0: प्रतिस्पर्धा। हाँ, बिल्कुल वो तो करेगी, क्योंकि वो लंबाई
1: इतना ध्यान रखना।
0: जी जी। तो आपको कृषि विभाग द्वारा या सरकार द्वारा कोई पुरस्कार भी प्राप्त हुआ?
1: हाँ, पुरस्कार तो मिलेगी।
0: हाँ, कहाँ कहाँ?
1: शाहजहाँपुर गन्ना शोध संस्थान से मिला जी।
0: जी।
1: करनाल से मिला जी।
0: अच्छा, करनाल शोध संस्थान।
1: हाँ, एक कोयम्बटूर गन्ना संस्थान है
0: जी,
1: उससे मिला था।
0: तो आपको इतनी दूर कैसे पता लग गया होना, या आपको कैसे आप वहाँ संबंध स्थापित किया?
1: उन्होंने फोन द्वारा बुलाया।
0: अच्छा। उनके पास सूचना कैसे गई कि आपने अच्छा उत्पादन किया?
1: तो उन्होंने ऐसे ही मेलों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से देख के।
0: जी जी जी।
1: और बहुत बहुत दूर तक के लोग हैं गन्ना देखने भी आए
0: जी,
1: और पूरे उत्तर प्रदेश का एक बार गन्ना विभाग के सब अधिकारी
0: जी आपके खेत
1: पाए थे
0: जी,
1: पूरे उत्तर प्रदेश।
0: जी हाँ, हमने इस क्षेत्र में हमारे किसान भाई सभी जानते हैं आपको। और एक जगह हम मुजफ्फरनगर गए थे तो वहाँ भी एक कृषि गोष्ठी में आपका नाम वहाँ लोग
1: ले रहे थे।
0: के जनपद बिजनौर में कुलबीर सिंह तिसोतरा गांव के बहुत अच्छा गन्ना पैदा करते हैं।
1: अभी वो हम महाराष्ट्र भी गए
0: जी,
1: महाराष्ट्र के किसानों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है
0: जी जी,
1: वो सेहतकारी के नाम से,
0: अच्छा
1: उनके द्वारा भी हमें सम्मानित करा गया।
0: तो अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे 0238 प्रजाति अब खत्म हो गई है लगभग, कोई नहीं बोना चाह रहा क्योंकि उसमें बोने में लाभ नहीं,
1: बोने भी नहीं चाहिए,
0: बोने भी नहीं चाहिए, तो अब किसान भाइयों को कौन सी ऐसी दो प्रजाति हैं जो बोनी चाहिए?
1: फिलहाल तो जी दो प्रजाति जो सबसे अच्छी इस टाइम है
0: जी,
1: एक तो 18231 जी
0: जी,
1: और एक है जी करनाल की 17018 सामान्य,
0: 17018
1: किसानों को 30% क्षेत्रफल सामान्य का भी लगाना चाहिए
0: जी जी,
1: एक ही वैरायटी का क्षेत्रफल किसान बोना बंद कर,
0: हाँ
1: उससे ऐसे मोनोकल्चर पैदा होते हैं वातावरण में एक वैरायटी के बोने से
0: जी,
1: कि जो कंट्रोल नहीं हो पाते,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसलिए अगर हम दो तीन प्रजाति हम रखेंगे
0: जी
1: तो उसका बैलेंस बन जाता है।
0: बहुत सही बात बताई आपने, तो हमारे किसान भाई भी जाहिर सी बात है कि आपकी बताई गई बातों को अमल में लाएंगे और अपना गन्ना का उत्पादन अधिक पैदा करें। आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी बात बताई आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद साहब, धन्यवाद।
0: प्रगतिशील गन्ना कृषक से बातचीत, अभी आपने श्री कुलबीर सिंह से ये हमारी बातचीत सुनी स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित, तो आप जान गए होंगे कि भाई किस प्रकार से हमें गन्ने का उत्पादन बढ़ाना है और गन्ने की सफल खेती कैसे करनी है। तो भैया देखिए, अब आपको जानकारी भी हो गई और हमारी चर्चा भी हो गई गर्मी और पशुओं के बारे में इस भेंटवार्ता से पहले, और भाई अब लिए चलते हैं आपको गीत संगीत की ओर। तो भैया ज़्यादा देर न करते हुए आइए सुनते हैं भीम सिंह की आवाज़ में रागनी।

0: धरती को स्वस्थ बनाए।
1: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
0: खुशहाली का नया प्रयोग।
2: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।

AIR at 90. भाइयों ने संदेश सुने और संदेश के बाद आपका फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। और भाइयों, अब हम रुख करते हैं मौसम की चिट्ठी की, जो कि हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा प्राप्त हुई है। इसके अनुसार भाई अगले 3 दिन तापमान में बढ़ोतरी और भैया लू चलने की प्रबल संभावना है। तो किसान भाई अपनी फसलों में सिंचाई करके नमी बनाए रखें और अपने पशुओं का ध्यान रखें। पशुओं को दिन में 2 बार नहलाएं और उनकी पशुशाला में हवा का प्रबंध करें। तो भैया, किसान भाइयों को सलाह ये भी दी जाती है कि भाई वो अपना भी ध्यान रखें और भाई हीट स्ट्रोक से बचें। तो भैया, इस प्रकार से हमारे किसान भाई जब काम करेंगे तो भैया तभी उनका काम सही होगा और मन प्रसन्न होगा, और प्रसन्नता में मन करता है मनोरंजन को। आइए चलते हैं फिर से गीत संगीत की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत।

डालने के लिए हमारा पता वही है, कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिंदो 46763। तो भैया इस पते पर हमें आपके चिट्ठियों का इंतजार रहेगा। और अब इसी के साथ अपने भाई नरेश फल सिंह को अनुमति दें। किसान भाइयों, राम राम।

0: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। संध्या के 6:45 हुए हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए एक वार्ता। देश के विकास में जलमार्ग का योगदान। वार्ताकार हैं रोहित कौशिक।
1: किसी भी तरह का परिवहन देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जलमार्ग निसंदेह जल परिवहन का सुगम और मुख्य साधन है। दुनिया के महान यात्री इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने जल परिवहन और जल मार्ग के माध्यम से ही अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस बचपन से ही समुद्र और जहाजों के सपनों में खोया रहता था। अपने इन सपनों के कारण ही उसने जल मार्ग की साहसिक यात्राओं को सफल बनाया। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने भी जल परिवहन और जल मार्ग के माध्यम से भारत की खोज की थी। प्राचीन समय में जल मार्ग के माध्यम से ही प्रमुख व्यापार होता था। भारतीय पुराणों में महासागर, समुद्र और नदियों से जुड़े ऐसे अनेक विवरण मिलते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि समुद्र और महासागर रूपी संपदा के माध्यम से मनुष्य ने काफी कुछ हासिल किया है। भारत से पश्चिमी देशों को जाने के लिए 3 प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे। पहला मार्ग सिंधु नदी के मुहाने से समुद्र तट होते हुए फारस की खाड़ी में स्थित दजला फरात तक जाता था। दूसरा थल मार्ग था जो हिंदुकश दरों से होकर बल्ख और ईरान होते हुए जाता था। तीसरा जलमार्ग फारस तथा अरब के तटवर्ती प्रदेशों से होते हुए लाल सागर को पार कर यूनान तथा मिश्र की ओर जाता था। भारतीय व्यापारियों ने अधिकांशतः जल मार्गों का ही उपयोग किया। अनेक विवरणों से ज्ञात होता है कि भारत में नौकाओं तथा पोतों का निर्माण बड़ी संख्या में होता था जिनके माध्यम से व्यापारी पश्चिमी देशों को जाते थे। प्रथम शताब्दी में एक यूनानी नाविक हिप्पोलस ने भारतीयों को अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं के बारे में काफी कुछ जानकारियां दी। इन जानकारियों ने भारत रोम व्यापार को एक नया आयाम दिया। उस समय गहरे समुद्र में यात्रा करना आसान हुआ और भारतीय व्यापारी अरब सागर होकर पश्चिमी एशिया के बंदरगाह पहुंचने लगे। 19वीं सदी में तथा 20वीं सदी के उत्तरार्ध में संपूर्ण वैश्विक स्तर पर जल मार्ग के माध्यम से जल परिवहन की निर्णायक भूमिका रही है। वर्षों से अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में अपर्याप्त विकास होने के साथ साथ सड़कों की द्रुत गति से विकास ने अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र को प्रभावित किया और 20वीं सदी के वर्षों में असम, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और कुछ अन्य तटीय क्षेत्रों को छोड़कर भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र को नगण्य स्तर पर पहुंचा दिया गया। हालांकि इसके अंतर्निहित फायदों को देखते हुए इस क्षेत्र के क्रमिक विकास की आवश्यकता सदैव महसूस की गई। राष्ट्रीय परिवहन नीति 1980 की अनुशंसा पर अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का वर्ष 1986 में गठन किया गया, लेकिन संगठन के तौर पर यह बहुत सफल नहीं रहा क्योंकि इसके गठन के बाद से इसे बहुत कम धन

राशि मिल सकी, प्राधिकरण द्वारा कुछ राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा एवं विकास किया गया है। विगत कुछ वर्षों में ईंधन की कम खपत करने, पर्यावरण के अनुकूल एवं सस्ते पर्यावरण के साधन के कारण जलमार्गों के माध्यम से अंतर्देशीय जल परिवहन द्वारा कार्गो ढुलाई का रुझान काफी बढ़ा है। साथ ही सरकार द्वारा भी इस क्षेत्र में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस दृष्टि से सरकार द्वारा घोषित जलमार्ग विकास परियोजना का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 नवंबर 1918 को हल्दिया वाराणसी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को चालू किया गया था। भारत में आजादी के बाद घोषित 5 राष्ट्रीय राजमार्गों में से केवल 3 ही सक्रिय रहे हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत भारत सरकार ने देश में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में 111 जलमार्ग घोषित किए हैं। इस दौर में भी जलमार्ग के कारण हमारे देश की व्यापारिक गतिविधियों को गति मिल रही है और देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। गौरतलब है कि जलमार्ग के जरिए माल ढुलाई करने से लागत पर भी फर्क पड़ता है और पर्यावरण की हानि भी कम होती है। जलमार्ग के विकास में जमीन अधिग्रहण की भी कम जरूरत होती है, इसलिए जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र भी संतुलित रहता है। पहले व्यापार और यात्री परिवहन के लिए नदियां एक अच्छा माध्यम थी। सड़क और रेल मार्ग पर ज्यादा ध्यान दिए जाने के कारण नदी केंद्रित परिवहन पर कम ध्यान दिए जाने लगा। इस दौर में अनेक चुनौतियों को देखते हुए जलमार्ग के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। गंगा यमुना और देश की अन्य नदियों को पुनर्जीवित करने के साथ ही कुछ अन्य नदियों को जलमार्ग में तब्दील करने की योजना पर भी काम चल रहा है। इस समय हमारे देश में काफी लंबा नौसंचालन जलमार्ग है। इनमें नहरें, नदियां और संकरी खाड़ियां शामिल हैं। भारत में हर साल लगभग 50 मिलियन टन माल की ढुलाई अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली से की जाती है, लेकिन इस समय यह गंगा, भागीरथी, हुगली नदी के कुछ हिस्सों, ब्रह्मपुत्र, बराक नदी, गोवा की नदियों, केरल के अपरवाही जल और गोदावरी, कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्रों तक ही सीमित है। दुनिया भर में अंतर्देशीय जल परिवहन को बराबर प्रमुखता दी जाती है। भारत में कुल यातायात का लगभग 7% जल परिवहन के जरिए होता है, जबकि चीन में यह 47% और यूरोपीय यूनियन में 44% है। यहाँ तक कि बांग्लादेश में 35% माल ढुलाई नदियों के जरिए ही होती है। बदलते माहौल में विकास की विभिन्न परियोजनाओं के साथ पर्यावरण को बचाने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है, इसलिए जलमार्गों के माध्यम से जल परिवहन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसका आर्थिक पक्ष भी है। अंतर्देशीय जलमार्ग से माल की ढुलाई की जाए तो इस पर आने वाली लागत काफी कम हो जाती है। जलमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर वाराणसी से पश्चिमी बंगाल के हल्दिया तक देश के 4 सबसे घनी जनसंख्या वाले राज्यों से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के इस क्षेत्र से देश के 40% माल का आवागमन होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 से 1,50,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होने का अनुमान है, जो कि सड़क और रेल परिवहन का इस्तेमाल करने पर ईंधन के जलने से निकलती है। अंतर्देशीय जलमार्ग और जल परिवहन के संबंध में यह कहा जाता है कि यह यातायात का सबसे सस्ता साधन है। इसमें दुर्घटना की आशंका कम होती है, इसलिए सड़क या रेल के मुकाबले अधिक सुरक्षित है। जलमार्ग विकास परियोजना को इस आधार पर मंजूरी मिली है कि इसके तहत नदी के पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, इसके बहाव को प्रभावित नहीं किया जाएगा, पानी का संग्रह नहीं होगा, सभी जहाजों में साफ ईंधन जैसे LPG का इस्तेमाल होगा, ये जहाज जीरो डिस्चार्ज की नीति का पालन करेंगे, यानी कचरा आदि पानी में नहीं

0: छोड़ेंगे, किसी जलजीव अभ्यारण्य के पास से गुजरते हुए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड रखेंगे और नदी के तल को हानि नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञ इस योजना पर भी सवाल उठाते रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जलमार्ग विकास परियोजना किफायती है और सड़क तथा रेल यातायात की तुलना में अधिक प्रभावी है। सुखद यह है कि अब जलमार्गों के विकास को गति मिलनी प्रारंभ हो गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में जलमार्गों के माध्यम से देश तेज गति के साथ विकास के मार्ग पर अग्रसर होगा।
1: देश के विकास में जलमार्ग का योगदान। रोहित कौशिक की ये वार्ता भी आपने सुनी और इसके साथ ही विविधा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म राजा और रंक से। गीत आनंद बख्शी का है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म राजा और रंक से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। गीत रचना अनजान की है और संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का।

श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनते हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की युगल आवाजों में ये गीत फिल्म साथी से। गीत के बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के और धुन तैयार की है नौशाद ने।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रही हैं मोहम्मद रफ़ी और आयशा भोंसले की आवाज़ में फिल्म दूर की आवाज़ सी। और इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत अब संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज रात 9:30 बजे रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। मजलिसे अज़ा दरगाहे अलिया नजफ़े हिंद के संपादित अंश पर आधारित रेडियो रिपोर्ट प्रसारित की जाएगी 7:32 पर। और फिल्म संगीत हमारे श्रोता सुनेंगे 8:00 बजे कार्यक्रम गीत संध्या में। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 8:30 बजे। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम होगा 10:00 बजे और श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश पेश किया जाएगा 10:30 बजे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष कार्यक्रमों की। और अब हम आपको कल प्रसारित कुछ विशेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कार्यक्रम खेल दर्पण रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कल 10:00 बजे। कल 9:30 बजे सुनिएगा परिचर्चा जिसका विषय है विकास के नए प्रतिमानों की आवश्यकता। प्रतिभागी हैं राजेश कुमार, एजाज अहमद और प्रीति वर्मा। संचालन होगा नरेंद्र पाल सिंह का। 90 साल बेमिसाल, रेडियो प्रसारण के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में विशेष भेंटवार्ता के अंतर्गत उज्जवल चौधरी और मंतशा से शोभित शर्मा जी की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे 6:45 पर। बासमती धान रेडियो कृषि पाठशाला का भाग एक प्रसारित किया जाएगा कृषि जगत कार्यक्रम में 6:05 पर। स्वयं द्वारा उपचार या सेल्फ मेडिकेशन कितना घातक, इस विषय पर जानकारी सुनिएगा स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में

प्रातः 7:05 पर। खेती की बातें क्रम में प्रातः 7:10 पर चर्चा का विषय होगा कृषि से संबंधित स्वरोजगार। धरती गाती है कार्यक्रम में सुबह 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे अर्जुन सिंह और साथियों के स्वर में रागनी बात आसपास की। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:50 पर। भारत में रेडियो प्रसारण के 90 साल के उपलक्ष में एक विशेष कार्यक्रम सुहाना सफर श्रोता सुनेंगे सुबह 10:00। बच्चों की परवरिश और रचनात्मकता में माँ की भूमिका इस विषय पर चर्चा हमारी बहनें सुनेंगी 1:15 पर महिला जगत कार्यक्रम में। और साथ ही कार्यक्रम में एक परिचर्चा भी सुनवाई जाएगी जिसका विषय है डिजिटल युग में बच्चों की छुट्टियां मोबाइल या मैदान। प्रतिभागी हैं शालिनी चौधरी, अनीता रावत और शशिकला राजपूत। लोकधारा कार्यक्रम में 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे गढ़वाली लोकगीत। कलाकार होंगे भारत सिंह नेगी। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में आकाशवाणी नजीबाबाद से जुड़े श्रोताओं के अनुभव पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम रिश्ता ये खास है प्रसारित किया जाएगा शाम 5:00। युवा श्रोता अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर। श्रोताओं ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित आज के शेष और कल के कुछ विशेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 यानी 954 KHz पर। संध्या के 7:18 हो चुके हैं। कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: बड़ी बहू ये तुम्हारी ना,
3: इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना,
4: और ये
5: मेरी गुड़िया की
6: ना। दादी आपके नाम?
7: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
6: क्या
7: आरबीआई कहता है?
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
10: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान, लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जबकि अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के 6 अन्य लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
11: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 2 पद्म विभूषण

0: छह पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों आज 66 लोगों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश से आज 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें कला के क्षेत्र में डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: डॉक्टर श्रीमती एन राजम, कला वायलिन।
0: डॉक्टर केवल कृष्ण ककराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्याम सुंदर को चिकित्सा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि को पुरातत्व विज्ञान और प्रवीण कुमार को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: श्री प्रवीण कुमार, खेल एथलेटिक्स दिव्यांग।
0: शीर्ष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार किया। उनके साथ उनकी पत्नी और उच्च प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। आगरा पहुंचने पर उनका स्वागत जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने करीब 40 मिनट तक ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया, साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास, निर्माण और पच्चीकारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने स्मारक की खूबसूरती की जमकर प्रशंसा की। श्री रूबियो ने विजिटर बुक पर इस इमारत की खूबसूरती देखने का अवसर दिए जाने पर आभार जताया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
2: पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 101.89 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की सूची में मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से श्रीचंद शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं बरेली मुरादाबाद शिक्षक सीट पर डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों को प्रत्याशी बनाया गया है। लखनऊ में स्नातक सीट पर अवनीश कुमार सिंह, जबकि शिक्षक सीट पर उमेश द्विवेदी को मैदान में उतारा गया है। आगरा की स्नातक सीट पर डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह पार्टी प्रत्याशी होंगे। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों और पावन नदियों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। फर्रुखाबाद में भी गंगा दशहरा के पावन पर्व पर श्रद्धालु गंगा तट पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। जिला प्रशासन ने गंगा तट को 4 सेक्टर में बांटा है। गंगा नदी में 50 नाव और करीब 50 गोताखोरों की भी तैनाती की गई है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भी आसपास के जिलों और राज्यों से लोग गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में सभी प्रमुख घाटों पर भोर से ही भक्त गंगा में स्नान पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा दशहरे के पावन पर्व पर श्रद्धालु त्रिवेणी संगम सहित रामघाट, दारागंज और वीआईपी घाट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस पवित्र पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए कल रात से ही आसपास के जनपदों और राज्यों से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। भक्तों ने गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर प्रार्थना, दान और भेंट अर्पित कर समृद्ध और खुशहाली की कामना की। भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान होंगे। इस अवसर पर भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराने के साथ 56 भोग लगाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
5: पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटे में बने 6 मंदिरों की स्थापना हुई थी, जिसकी कल पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। साथ ही भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे।

0: और 56 भोग लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण भी होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी है। बीते 24 घंटों में बांदा 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश के सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। वहीं झांसी, प्रयागराज, जालौन, उरई, आगरा और हमीरपुर में पारा 45 डिग्री के पार रहा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अमरोहा में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने हीटवेव से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है, साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए हैं।
2: जिले के सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ORS घोल को सभी आशा वर्कर के माध्यम से गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है और यदि किसी को किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए तत्काल इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: तेज गर्मी के मद्देनजर वाराणसी में जिला प्रशासन ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में अर्बन हीट एक्शन प्लान को सक्रिय कर दिया गया है ताकि बढ़ते तापमान के प्रभाव को कम किया जा सके।
3: 42-43 डिग्री से ज्यादा जो है वो टेम्परेचर चल रहा है, उसके दृष्टिगत जो अर्बन हीट एक्शन प्लान है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। विद्यालयों में भी चोटियां कर दी गई हैं, जो चौक चौराहे हैं जहां पे ट्रैफिक लाइट है, जहां पे ट्रैफिक में लोगों को मोटरसाइकिलों पे वेट करना पड़ता है, वहां पे भी शेड के लिए ऊपर से कवर किया गया है। वो अलग अलग जगहों पे कोल्ड रूम्स बनाए गए हैं। जो CHC PHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पे कोई हीट स्ट्रोक का अगर पेशेंट आता है तो इमीडिएटली उसके लिए रिस्पॉन्ड किया जा सके, इसके लिए वहां ट्रेनिंग्स दी गई है।
1: मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश भर में लू को लेकर चेतावनी जारी की है। हालांकि हाथरस, मथुरा, मैनपुरी समेत पश्चिमी संभाग के जनपदों में आज रात बिजली गिरने और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। नौतपा की शुरुआत के साथ श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान श्री विश्वेश्वर का आज फलों के रस से विशेष अभिषेक किया गया। बाबा विश्वनाथ का अभिषेक गुलाब, लीची और आम के रस से संपन्न हुआ। मंदिर प्रशासन के अनुसार नौतपा के सभी 9 दिनों तक प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के फलों के रस से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस विशेष अनुष्ठान का उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान भगवान विश्वनाथ को शीतलता अर्पित करना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान, लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है मजलिस अजा दरगाहे अलिया नजफ़े हिंद के संपादित अंश पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश।
3: श्रोताओं नमस्कार, आदाब, मैं साद अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम सालाना मजालिस अजा दरगाहे आलियाए नजफ़े हिंद जोगीरामपुरी के इस विशेष और आखिरी एपिसोड में। नजीबाबाद की सरजमी पिछले चार दिनों से रूहानियत, अकीदत, इल्म और इंसानियत के पैगाम से रोशन रही, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से आए हजारों जायरीन ने

0: इन चार दिनों में यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि मोहब्बत, भाईचारे, इंसानियत और सामाजिक एकता का एक बड़ा संदेश बनकर सामने आया। मजलिसों का रूहानी माहौल, जायरीन की अकीदत, उलेमाओं का पैगाम, खिदमत में लगे लोगों की मेहनत और उन व्यवस्थाओं को जिन्होंने इस बड़े आयोजन को सफल बनाया। सालाना मजालिस अज़ा के आखिरी दिन सुबह से ही दरगाह परिसर में अकीदतमंदों की भारी भीड़ देखने को मिली। कोई चादर लेकर दरगाह की ओर बढ़ता नजर आया तो कोई हाथ उठाकर दुआ मांगता दिखाई दिया। दरगाह परिसर में हर तरफ रूहानियत का माहौल था। चार दिनों तक चले इस आयोजन में सबसे अहम हिस्सा रहा मजलिसों का सिलसिला, जहां उलेमाओं ने अपने बयान के जरिए लोगों तक करबला का पैगाम पहुंचाया।
1: एक यहाँ पे एक सवाल और कायम होता है कि परवरदिगार, तू जानता है कि किसी की तरफ अगर इंसान का दिल मायल हो रहा है, किसी से वो मोहब्बत रखता है, किसी से लगाव रखता है, तो उसके अख्तियार में नहीं होता, ये तो अंदरूनी उसकी कैफियत है जो महसूस करता है। लेकिन तूने ऐसी चीज क्यों मांगी कि जिसके ऊपर इंसान का इख्तियार नहीं है? तो अब ये तो ऐसी है जैसे परवरदिगार किसी जो खड़े बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता उससे कहे, जो खड़े होकर नमाज, जो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता उससे कहे कि तू खड़े होकर नमाज पढ़। भाई वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो फिर किस तरह परवरदिगार कह रहा है कि तू खड़े होकर नमाज पढ़? या ये तकलीफ माला युता जिसकी इंसान कुदरत नहीं रखता उससे कहा जा रहा है कि तू उस काम को अंजाम दे जिससे वो जिसको अंजाम नहीं दे सकता। ये मालायुताक है, ये तकलीफ वो अंजाम नहीं दे सकता। तो अजीजो, आवाज कुदरत आएगी कि देखो मैं खाली के बशर हूँ, मैं खाली के इंसान हूँ, मैंने इंसान की फितरत को कल किया है, मैं जानता हूँ कि इंसान

परेशान किया, इसलिए आज पूरी दुनिया हुसैन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तैयार है और करती है, और वो कहती है कि हर मजहब का आदमी कहता है हमारे हैं हुसैन।

0: कार्यक्रम में शामिल होने वाले जायरीन का कहना है कि यहां आकर उन्हें दिली सुकून मिलता है और वो हर साल इसी अकीदत के साथ इस मजलिस में शामिल होते हैं। तो श्रोताओं, इस कड़ी में हमारी मुलाकात हुई एक जायरीन से, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसा उनको लग रहा है आज के इस प्रोग्राम में आकर।
1: हमारा नाम फरदीन हुसैन साबरी है, हम नजीबाबाद से हैं, वैसे चंडीगढ़ में रहते हैं। यहाँ नजीबाबाद के पास जोगीपुरा है, यहाँ मौला अली अमीरुल मोमिनीन की दरगाह है। इन दिनों यहाँ सालाना मजलिस चल रही है जो 21 तारीख से लेके और 24 तारीख तक यानी 4 दिनों तक मुनक्किद की गई है। इसमें मौला के जायर दूर दूर से आते हैं और अपनी मन्नत मुरादें लेकर जाते हैं। यहाँ किसी जाति का, किसी धर्म का कोई ऐसा वो नहीं है, यहाँ हर रंग का रूप देखा जाता है। हर आदमी यहाँ पर आता है, अपनी मन्नत मुरादें लेकर जाता है।
0: जायरीन ने बताया कि यहाँ रूहानी माहौल उन्हें हर साल अपनी ओर खींचता है। श्रोताओं, इतने बड़े आयोजन को सफल बनाना आसान नहीं होता, इसके पीछे कई लोगों की लगातार मेहनत और खिदमत शामिल होती है। जायरीन की सुविधाओं को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर मेडिकल कैंप भी लगाए गए, जहां लोगों को प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। गर्मी और भीड़ को देखते हुए मेडिकल टीम लगातार सक्रिय नजर आए।
2: मैं मुस्लिम फंड नजीबाबाद और आगोश चैरिटेबल हॉस्पिटल नजीबाबाद से दरगाह आलिया नजाफे हिंद जोगीपुरे में तकरीबन 25 साल से खिदमत को अंजाम दे रहा हूँ। मेरे साथ में अब से तकरीबन 2 साल पहले जनाब सैयद नज़ाकत अली साहब और जनाब काजी जकी साहब भी हमारे साथ में हमें कोऑपरेट करते हैं और उन्हीं की ये देन है जो हम यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त में हमारे साथ में दरगाह आलिया नजाफे हिंद जोगीपुरा में आगोश चैरिटेबल हॉस्पिटल और मुस्लिम फंड नजीबाबाद की जो जानिब से हमने यहाँ कैंप लगाया है, इसमें हमारे यहाँ पर मरीजों के रात में ड्रिप, वो मरीजों के लिए ड्रिप भी है, बोतलों का इंतज़ाम है और मरीजों के लिए उल्टी दस्त वगैरह के लिए जो है मेट्रोजिल है और रेंटेक है। इसके अलावा हम जो हैं RL बोतल लगाते हैं, DNS भी लगाते हैं, MVI वगैरह, जिसको जो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हम उसको ये मुहैया कराते हैं। और ये कैंप लगाते लगाते हमें तकरीबन 25 साल हो गए हैं और इस वक्त में जो है हमारे साथ में शबलू भाई ने हमें ये कहा कि आप जो है हमारे साथ में ही कैंप लगा लीजिएगा, तो इसलिए हम जो है अब कहीं हमने यहाँ पे लगाया, वरना हमारा कैंप जो है इमाम हुसैन के रोज़े के सामने हर साल से लगता था।
0: गर्मी के मौसम को देखते हुए जगह जगह सबीलों का इंतज़ाम किया गया, जहाँ लोगों को ठंडा पानी और शरबत पिलाकर खिदमत की जा रही थी। सबील चला रहे लोगों का कहना है कि जायरीन की खिदमत करना उनके लिए खुशी और सौभाग्य की बात है।
3: अस्सलाम वालेकुम हाजरीन, मैं सैयद मुदस्सर आलम हर साल की तरह इस बार भी मौजूद हूँ दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगीपुरा नजीबाबाद में। हर साल यहाँ पर शिया वक्फ बोर्ड लखनऊ की जानिब से एक प्रोग्राम सालाना किया जाता है, जिसमें काफ़ी दूर दूर से लोग अपनी खिदमत को अंजाम देने यहाँ पहुँचते हैं और ये मौला अली का दरबार है, यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। हमने भी इसी तरह यहाँ पर एक पानी का सबील, शरबत का सबील लगाया हुआ है और खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। पानी के सबील का और शरबत की सबील का एक अपना बड़ा महत्व, अपना एक इम्पोर्टेंस है और ये जायरीन जो यहाँ पर आते हैं हमें ये चीज़ याद आती है, याद दिलाती है करबला की, जो एक तारीखी वाकया है, हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया करबला में और उनके साथ ही वो सब प्यासे शहीद हुए थे, तो ये चीज़ हमें याद दिलाती है कि किस तरीके से उनको प्यासा शहीद किया गया। जब हम यहाँ पर घूमते हैं, जायरीन आते हैं, देखते हैं, तो जाहिर है गर्मी की शिद्दत का एहसास होता है और चीज़ें भी पेश आती हैं, परेशानियाँ पेश आती हैं, तो उसी के लिए पानी की सबील लगाई गई है ताकि लोगों को, जायरीन को ये एहसास रहे कि किस तरीके से हमारे इमाम को शहीद किया गया था करबला में।
0: पूरे आयोजन को व्यवस्थित और सफल बनाने के लिए कमेटी की टीमें लगातार काम करती नजर आई।
4: मेरा नाम हुसैन मेहदी है, मैं दरगाह आलिया नजफ हिंद का मैनेजर हूँ। मैं पिछले 4 सालों से जो है दरगाह पर लगातार खिदमात को अंजाम दे रहा हूँ। यहाँ पर दरगाह पर मौलाना शबाब हुसैन नकवी साहब एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक बनाए गए हैं और अली जैदी साहब चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उनकी निगरानी में यह सब प्रोग्राम हो रहा है। जायरीनों की खिदमात के लिए पानी का बेहतर इंतज़ाम किया गया है और टेंटों में बिजली लाइट का भी इंतज़ाम किया गया है और आज जैसे जुमे की नमाज थी तो जुमे की नमाज में जो है चारों तरफ रोड की तरफ पंखे, पानी वाले पंखे लगवाए गए। मौलवी हाउस में मौलानाओं के लिए AC का इंतज़ाम किया गया, چونکہ گرمی

0: बहुत थी।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी इस प्रोग्राम के चारों दिन की कुल रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश। मैं साद अहमद आपसे इजाजत लेता हूँ, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद। धन्यवाद।
2: मजलिसी अज़ा दरगाही अलिया नजफी हिंद की संपादित अंश पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट आपने सुनी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं एक नात।

श्रोताओं, अभी आपने ये नात सुना। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अप्रैल फूल फिल्म से। गीत के बोल हैं हसरत जयपुरी के और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, अभी आपने ये गीत सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था आमने सामने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, छलिया फिल्म से, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने और इस गीत को लिखा है कमर जलालाबादी ने, धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में फिल्म आमने सामने का गीत। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के और धुन है कल्याण जी आनंद जी की।

श्रोताओं, गीत संध्या कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाज में तीन देवियां फिल्म से। गीत के बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत है एसटी बर्मन का।

नीला आकाश। अभी आपने इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत सुना और कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की युगल आवाज़ों में फिल्म रास्सी। गीत के बोल हैं कमर जलालाबादी के और धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म राज से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। और इसके साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या अब संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:30 हुए हैं और एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अभिमान के कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

जदों एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म अभिमान के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, मनहर और साथियों की आवाज में ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म अभिमान का ये गीत। और इसके साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म सी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3

0: दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शिल्पधानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
3: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
5: रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 196,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
6: सेवरल की अग्रीमेंट्स वर साइन।
7: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों

0: नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
2: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
3: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
2: Like metric tons of imports have reached our shores.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गई और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व

0: ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर
0: आर्थिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
2: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गिल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor, late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today conferred the Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored.

0: cooled inflationary worries. In the forex market today, the rupee appreciated by 47 paise to close at 95 rupees and 23 paise against the US dollar. In the global crude oil market, Brent crude was trading 5.5% down at $97.78 per barrel when reports last came in. Vaibhav J. Srivastav for Akashvani News.
1: The government is making all efforts to ensure smooth supply of petroleum products within the country. Addressing the interministerial briefing in New Delhi today on recent developments in West Asia, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said the refinery production of LPG in the country has been increased to 50,000 tons per day. The Joint Secretary said that over 8 lakh PNG connections have been gasified since March, adding that infrastructure has been created for 2,87,000 connections. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for warm night conditions over Madhya Pradesh, Orissa, Telangana, Uttar Pradesh and Vidarbh till tomorrow. The weather agency has forecast heat wave to severe heat wave conditions over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand and Uttarakhand till tomorrow. The IMD has also predicted hot and humid weather over Gangetic West Bengal, Konkan, Goa, Saurashtra, Kutch, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. According to the Met Department, thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely to prevail over Bihar, Kerala, Mahe, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Lakshadweep, Madhya Maharashtra, North Interior Karnataka and Northeastern region tomorrow. At the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam, Indian wrestlers put up a dominant show, securing 2 gold medals today. In the 57kg freestyle category, Akshay Tanaji Dhere defeated Yelaman Amangal Diaz 4-2 to claim the top podium spot. Meanwhile, in the 97kg freestyle category, Vicky also struck gold after a closely fought 7-5 victory over Sherzad Poyonev. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system concludes. All tourists rescued safely. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under-23 Championships in Vietnam. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमी महमूद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज पद्म अवार्ड 226 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आजहानी धर्मेंद्र और शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने एमएसएमईज को मुस्तहकम करने और देही सनतों की जदीद कारी में तेज रफ्तारी लाने की गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। गुलमर्ग केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी के बाइस वहां फंसे सयाहों को बहिफाजत निकालने के लिए मुश्तरका कार्रवाई जारी है। सभी 300 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इंतहाई शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और कुश्ती में भारत के पहलवान विकी और अक्षय धीरे ने वियतनाम में 23 साल से कम उम्र की एशियन चैंपियनशिप में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा सिविल इन्वेस्टर तकरीब में साल 2026 के लिए 66 अहम शख्सियात को आज पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से

0: को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 शख्सियात को पद्मश्री से नवाजा गया। तकरीब के दौरान नायब सदर सीपी राधा कृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजरा अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और HD कुमारास्वामी इस मौके पर मौजूद थे। मारूफ फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनकी खिदमात के लिए बाद अजमर पद्म विभूषण से नवाजा गया। अदाकार की अहलिया और लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने ये अवार्ड हासिल किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: भारत की शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: पद्म भूषण के जुमरे में उत्तराखंड के साबिक वजीर आला और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को अवामी उमूर के शोबे में उनकी खिदमात के लिए ये अवार्ड दिया गया, जबकि विजय कुमार मल्होत्रा को बाद अजमर्ग अवामी खिदमात के जुमरे में इस अवार्ड से नवाजा गया। शतावधानी डॉक्टर आर गणेश को फनून लतीफा के शोबे में, जबकि एडवर्टाइजिंग से वाबस्ता पीयूष पांडे को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिया गया। सनतकार उदय सुरेश कुमार कोटक को तिजारत और सनत के शोबे में खिदमात के लिए और डॉक्टर कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी को अद्वियात के शोबे में खिदमात के लिए अवार्ड दिया गया। पद्मश्री का एजाज हासिल करने वालों में भारत की ख्वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर भी शामिल हैं। 2026 के लिए सदर जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्ड मंजूर किए थे, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। बाकी पद्म अवार्ड तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे, जो बाद में मुनक्किद होगी। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीरुल फरीद।
0: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज अंग्रेजी हर्फ F से शुरू होने वाली 3 चीजों के नामों पर मजीद तवज्जो मरकूज करने की जरूरत को उजागर किया है। ये 3 चीजें हैं ईंधन, कीमियावी खाद और जर मुबादला। इन दिनों जारी मगरबी बहरान की सूरत हाल के दौरान उन्होंने ये बात कही है। वजीर खजाना ने वाजह लफ्जों में अलबत्ता ये भी कहा कि भारतीय मईशत ने मजाहिमती सूरत हाल बरकरार रखी है। भारत के छोटी सनतों की तरक्यात से मुतालिक बैंक सिडबी के क्याम के 37वें साल के मौके पर मुंबई में एक तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कलीदी नौयत के कई पोर्टल और स्कीमों का इफ्तिताह किया, जिनका मकसद MSMEs के निजाम को मुस्तहकम करना, मुल्क के दूर दराज हिस्से तक क्रेडिट डिलीवरी को वसत देना और देही सनतों की जदीद कारी के काम को तेज रफ्तारी अता करना है। जिन स्कीमों का आज आगाज किया गया उनमें सिडबी मैकफिन मार्ट शामिल है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद MSMEs को तआवुन देना है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत का पॉलिसी रद्द अमल पूरी देखभाल के साथ इस तरह तैयार किया गया है कि आलमी चैलेंजों के बावजूद मुल्क की तरक्की का तहफ्फुज किया जा सके। भारतीय फौज और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त करने वाली कौमी फोर्स NDRF और रियासती फोर्स SDRF जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग गंडोला में राहत और बचाव की एक कार्रवाई की सरबराही में शामिल थे। गंडोला केबिर कार के निजाम में तकनीकी खराबी के बाद ये कार्रवाई की गई। बेस स्टेशन और फेस वन के दरमियान खिदमात के अचानक मुअत्तल हो जाने के सबब पैदा होने वाली खराबी के बायस आज कई सैयाह वहां फंस गए थे। एक बयान में भारतीय फौज ने कहा है कि मकामी हुक्काम की तरफ से मिली इत्तला के बाद राहत और बचाव टीमें जाए मौका पर फौरन पहुंच गईं। भारतीय फौज के मुताबिक तकनीकी खराबी के बायस कुल 65 केबल कारें मुतासिर हुई थीं। इसमें मजीद कहा गया है कि बचाव टीमों ने सभी 300 सैयाहों को बहिफाजत महफूज मकाम तक पहुंचा दिया है। इधर तकनीकी टीमें इस खराबी का जायजा ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट इम्तिहान मुनक्किद किए जाने के सिलसिले में बार बार होने वाली गलतियों पर तश्वीश का इजहार किया है और कहा है कि यह अफसोसनाक बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक के इससे पहले के तनाजों से कोई सबक नहीं लिया। जस्टिस PC नरसिम्हा और आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मरकज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और CBI से उन दरखास्तों पर जवाब तलब किए हैं, जिनमें इस टेस्टिंग एजेंसी की जगह मेडिकल दाखिले का इम्तिहान मुनक्किद कराने के लिए किसी ज्यादा वसी तजर्बे वाले और खुद मुख्तार इदारे को मुकर्रर किए जाने का मुतालबा किया है। अदालत ने NTA को हिदायत दी है कि वो जुमेरात तक एक हलफनामा दाखिल करे, जिसमें

0: एजेंसी के कामकाज को चुस्त दुरुस्त करने से मुतालिक इसरो के साबिक सरबरा के राधाकृष्णन की सदारत वाली एक कमेटी की जानिब से पिछले साल दाखिल करदा सिफारिशात पर अमल आवरी की तफसीलात पेश की जाएं। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को नीट यूजी 2026 के अगले माह की 21 तारीख को होने वाले दोबारा इम्तिहान को महफूज, सिक्योर और कामयाबी के साथ मुनक्किद कराने के सिलसिले में एक खत लिखा है। जनाब प्रधान ने मुल्क भर के तमाम वज़राए आला, लेफ्टिनेंट गवर्नरों और एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखकर इस सिलसिले में उनका तआवुन तलब किया है। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने इबोला वायरस से होने वाली बीमारी की रोकथाम के सिलसिले में तैयारियों और निगरानी के इकदामात का आज नई दिल्ली में जायजा लिया। वजारत के सीनियर अहलकारों के साथ मीटिंग के दौरान जनाब नड्डा ने हिदायत दी कि दाखिले के तमाम पॉइंट्स जिनमें हवाई अड्डे, बंदरगाहें और जमीनी सरहदें शामिल हैं पर जांच पड़ताल के इंतजामात होने चाहिए। उन्होंने अहलकारों से यह भी कहा कि वह पूरी तरह मुस्तैद और चौकस रहें। आलमी सेहत तंजीम WHO ने इबोला वबा को बैनुल अक्वामी तशवीश की अवामी सेहत से मुतालिक एक इमरजेंसी करार दिया है। मरकजी वजारत सेहत ने वजाहत की है कि अब तक मुल्क में इबोला के किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर में कलदम जमाते इस्लामी तंजीम से मुंसलिक दहशतगर्दी की माली मुआवनत के एक मामले में 3 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की। कश्मीर के श्रीनगर और शोपियां जिलों में 3 मकामात पर की गई तलाशी की कार्रवाई के दौरान कई काबिल एतराज दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद हुए जिसके बारे में शुबा है कि इनका ताल्लुक रियासत में जमात इस्लामी और इसके मुतअद्दिद ट्रस्ट और तंजीमों की सरगर्मियों से है। एजेंसी के मुताबिक अब तक की तफ्तीश से यह इंकशाफ हुआ है कि ममनुआ तंजीम वादी कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी के लिए फंड इकट्ठा करने और दहशतगर्दी को फरोग देने में सरगम रही है। यह तंजीम तालीम और सेहत जैसी फलाही सरगर्मियों के नाम पर अंदरून और बैरून मुल्क से चंदा इकट्ठा करने के काम में मुलव्वस थी। ये आकाशवाणी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर नई दिल्ली में कल क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पैनी वॉन्ग, जापान के वजीर खारजा तोशी मिसो मोतेगी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रोबियो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वज़रा तमाम तरजीही शोबों में क्वाड तआवुन को फरोग देने, इन दिनों जारी क्वाड स्कीमों की पेशरफ का जायजा लेने और भारत बहरुल काहिल खित्ते में रूनुमा होने वाली हालिया तब्दीलियों पर इजहार ख्याल समेत बाहम नौयत के दीगर बैनुल अक्वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। एक आजाद और खुले भारत बैरुल काहिल के क्वाड तसव्वुर के पेश नजर वज़रा पिछले बरस 1 जुलाई को Washington DC में हुई तबादला ख्याल को आगे बढ़ाएंगे। हमारे नुमाइंदे ने इस सिलसिले में ये रिपोर्ट पेश की है। इस बरस वज़राए खारजा की मीटिंग आलमी गैर यकीनी और मगरबी एशिया के बहरान के वक्त मुनक़िद हो रही है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल क्वाड एक अहम ग्रुप के तौर पर उभरा है जिसकी ज्यादातर तवज्जो भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम है। इत्तेहाद के मौजूदा सदर की हैसियत से भारत ये मीटिंग मुनक़िद कर रहा है। क्वाड मुल्क इस अज़्म के साथ यकजा हुए हैं कि पूरी दुनिया की बेहतरी और एक खुले, आज़ाद और सबकी शमूलियत वाले भारत बहरुल काहिल खित्ते को ताउन देने की गरज से एक ताकत के तौर पर काम करेंगे और इसे एक ऐसा खित्ता बनाएंगे जो खुशहाल और मुजाहिम हो। क्वाड ने एक मुस्बत और अमली एजेंडा अख्तियार किया है जिसमें हम असर मसाइल और चैलेंजों पर तवज्जो दी जा रही है। इन मामलों में सेहत से मुतालिक सिक्योरिटी, आबो हवा की तब्दीली, अहम और भारतीय और उभरती हुई टेक्नोलॉजी और इलाकाई ममालिक के दरमियान समंदरी सरहद के निजाम से मुतालिक बेदारी को मुस्तहकम करना शामिल है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज हिमाचल प्रदेश में 1947 किलोमीटर तवील कौमी शाहरा प्रोजेक्ट के मेयार और देखभाल की पेशरफ का जायजा लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गडकरी ने जमीनी सतह पर अमल दरामद में तेजी लाने, मेयार की निगरानी को मजीद मौसर बनाने और असासों की पायदारी को बढ़ाने के लिए जदीद तामीराती तरीक़ेकार इख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने सफरी मेयार को बेहतर बनाने और अहम राहदारियों में बिला रुकावट रबते को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। सरकार मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। मगरबी एशिया में हालिया सूरत हाल के बारे में आज नई दिल्ली में मुनक़िदा बैन वजारती मीटिंग से खिताब

0: करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क में एलपीजी की रिफाइनरी प्रोडक्शन बढ़ाकर 50,000 टन योमिया कर दी गई है।
1: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय सिफारतखाना और कौंसुलेट भारतीय बिरादरी की खैर आफियत के लिए उनसे राबते में है। दिल्ली जिमखाना क्लब के मेंबरान ने आज मरकज के उस हुक्म के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है जिसमें क्लब से कहा गया था कि वो अगले माह की 5 तारीख तक जिमखाना की इमारत हुकूमत के सुपुर्द कर दें। अदालत ने इस मामले की समाअत के लिए कल की तारीख मुकर्रर की है। दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस लीडर अलका लांबा को 2024 में जंतर मंतर पर एक एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकार पर हमले से मुतालिक एक मामले में कसूरवार करार दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने लांबा को कसूरवार करार दिया और सजा के मुतालिक दलाइल की समाअत के लिए 5 जून की तारीख मुकर्रर की है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक गर्म रात की सूरत हाल रहने से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद से शदीद गर्म लहर की सूरत हाल रहने के बारे में पेशगोई की है। छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और उत्तराखंड में भी कल तक इसी तरह की सूरत हाल रहने का इम्कान है। वियतनाम के दा नांग शहर में एशियाई अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवानों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 2 तमगे हासिल किए हैं। 57 किलोग्राम के फ्री स्टाइल जुमरे में अक्षय तनाजी धीरे ने अपने हरीफ यलमेन को 2 के मुकाबले 4 से हराकर टॉप पोजिशन हासिल की। 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल जुमरे में विकी ने शेरजोत को सख्त मुकाबले में 5 के मुकाबले 7 से हराकर सोने का तमगा हासिल किया। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज पद्म अवार्ड 2026 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आजहानी धर्मेंद्र और शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने MSMEs को मुस्तहकम करने और देही सनतों की जदीदकारी में तेज रफ्तारी लाने की गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। गुलमर्ग केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी के बाइस वहां फंसे सयाहों को बहिफाजत निकालने के लिए मुश्तरका कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। सभी 300 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा आपके साथ। आज का ये दौर जहां हर इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है कि अपनों खासकर अपने माता पिता के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय भी मुश्किल से निकल पाता है। नौकरी की मजबूरियां, घर की जिम्मेदारियां और बेहतर भविष्य की तलाश में पलायन, इन सबके बीच सबसे ज्यादा अकेलेपन का सामना करते हैं हमारे बुजुर्ग। वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदलते समय के साथ उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सही सहारा देना आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुना होकर 23 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक सहारे को लेकर नई सोच और नई पहल की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ सरकार ने शुरू किए हैं जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। आज पब्लिक स्पीक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुए इन प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे। आपका स्वागत है मोनाली जी।
1: धन्यवाद।
0: और श्रोताओं, हमारी स्टूडियो

0: 0111 जो दिल्ली का कोड है वो डायल करें और उसके बाद ये नंबर डायल कर सकते हैं 2331-0481 या 2371-1711 साथ 2371-7106 और 2331-4444 हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और श्रोताओं आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। मोनाली जी, सबसे पहले ये बताएं कि जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड क्या है और क्या उद्देश्य है इनका?
1: जीवन ऐप जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क है इसका फुल फॉर्म, और शतायु सीनियर होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। जीवन ऐप जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 2025 मई में माननीय राष्ट्रपति जी ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल को लोकार्पित किया था। उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने यह मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम है जीवन जॉइंट एलरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। अभी आपने कहा कि जैसे हमारे वरिष्ठ जनों की पॉपुलेशन 2011 में टोटल जो 8.4% थी, अभी 2036 तक 15% की ओर बढ़ेगी। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सीनियर इंडियन की, वो 30 से 32 सालों के बीच से आज बढ़ के हो गई है 70.3। इसको सबको नजर रखते हुए जैसे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव, आपातकालीन सहायता, इन सब चीजों पे विचार करते हुए हमारे मंत्रालय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इन्होंने जब सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया, इसी के सीरीज में यह ऐप एक वन टाइम स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा, इसी को लॉन्च किया गया है। दूसरा है शतायु। शतायु एक डैशबोर्ड है जहां पे ट्रेंड प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर, अभी तक हमारे मंत्रालय ने जितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स किए हैं उन सबके बारे में वहां पे जानकारी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अगर किसी को उनकी सेवा चाहिए तो वो वहां पे अपना ढूंढ सकते हैं।
0: ऐसे जेरियाट्रिक केयरगिवर्स की बात की, यानी जो बुजुर्ग देखभाल कर्मियों की जानकारी जो उपलब्ध है, तो इसी से जुड़ा एक हमारे व्हाट्सएप पे सवाल आया और सीनियर सिटीजन के बहुत सवाल आए आज मोनाली जी हमारे पास व्हाट्सएप पे। और पहला सवाल ये है कि हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जेरियाट्रिक केयर प्रोवाइडर्स अवेलेबल इन माई लोकल एरिया, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस फॉर सर्चिंग द केयर वर्कर्स? ये है नैना का सवाल मुंबई से।
1: जी थैंक यू नैना जी। जेरियाट्रिक केयर गिवर का जो अगर आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो उसमें आपके लोकेलिटी पे जो आप रहते हैं वहां पे मुंबई में या महाराष्ट्र में जैसे आपने मुझसे कहा, तो वहां पे कितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स हैं उसके बारे में आपको तहत जानकारी मिलेगी। उसमें एक नंबर होगा जहां पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। एक ओटीपी आते ही आपका जेन्युइन चेक करके वहां के जितने प्रोफेशनल केयर गिवर्स है वहां पे एक मैसेज चला जाएगा उनको कि आप ये सेवा चाहती है, उसके हिसाब से जो भी फ्री होंगे या अभी कहीं काम नहीं कर रहे होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे आपके नंबर पे और फिर आप उनकी सुविधाएं यूज कर
0: पाएंगे। तो ये नंबर्स रजिस्टर्ड होंगे, जैसे अगर हमें ओटीपी आएगा और अगर कोई बुजुर्ग है वो चाहता है कि है, तो ये इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा या मेडिकल हिस्ट्री भी ऐसी कुछ भी देनी होगी उस समय?
1: नहीं, एक सीनियर सिटीजन या उसके घर के परिवार वाले अगर फोन करते हैं तो उनको वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं के मोबाइल पे ओटीपी आएगा।
0: जी,
1: कि हमारे जेरियाट्रिक केयर गिवर का वहां पे सिर्फ नाम होगा, वो किस जेंडर का है वो होगा और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये होगा, इसके अलावा वहां पे कोई जानकारी नहीं होगी।
0: और एक और सवाल

0: आपके वहाँ के अवेलेबल चार्जेस पे आपको देना पड़ेगा, पर इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, वो आप ही को करना पड़ेगा। हम सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड केयर गिवर्स दे रहे हैं
1: जी, हम सब जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और बाकी की जो प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा
0: जी।
1: सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। हेलो,
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपको भी मालूम है कि सीनियर सिटीजन जब अपनी एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी कान सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है
0: जी।
2: वो फोन चलाने लायक नहीं रह जाते और कोई स्मार्टफोन नहीं चलाना जानता हो। कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे लोगों की क्या एक अलग ही प्रॉब्लम होती है? कोई बर्थ दिव्यांग है, किसी के दोनों पैर खराब हैं, वो अपने घर से तो निकल भी नहीं सकते, उनको तो लेटरिन बाथरूम बिठाने के लिए भी।
1: जी जी जी, मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन से या तकनीक से बहुत परिचित ना हो, जो ये एक्सेस ना कर सके, तो उन्हें किस तरह से सहायता मिलेगी? जी धर्मवीर जी, और संजय सूरी जी का भी हमारे पास इसी से जुड़ा सवाल है व्हाट्सएप पे कि जैसे जो कई सीनियर सिटीजन्स हैं जो वो बहुत सेवी नहीं है, जो मतलब टेक्निक्स और जो आजकल की जो नई सेवाएं आ रही हैं वो मोबाइल पे वो नहीं चाहते, तो उनके लिए ये कैसे हेल्प करेगी और कौन हेल्प कर सकता है इसको लेकर?
0: जी, इसमें एक हमारा एल्डर लाइन है 14567, ये नंबर हमारा एल्डर लाइन का है जो हमेशा इस ऐप से जुड़ा हुआ है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक 14567 पे डायल करके जो भी सेवाएं हैं वो उसके बारे में तहत जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए मोबाइल जानकारी होना या मोबाइल पे टेक सेवी होना जरूरत नहीं है।
1: जी थैंक यू मोनाली जी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे एल्डरी के लिए। और एक और हमारा व्हाट्सएप पे प्रश्न है, ये है कमल कांत जी का हैदराबाद से कि हाउ कैन सीनियर सिटीजन्स गेट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज, अगर आपातकालीन कई बार होता है और बहुत इमरजेंसी कोई होता नहीं क्योंकि अकेलेपन में रहते अकेले रहते हैं, तो उस समय बुजुर्ग को जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह से सहायता सुलभ हो सकती है?
0: जी थैंक यू कमल कांत सर आपके क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जीवन ऐप में भी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे भी आपको पता होगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14567, तो यही सुविधा इमरजेंसी में हमारे वरिष्ठ नागरिक यूज कर सकते हैं। जब आप जीवन ऐप करते हैं तो इसका हमने 112 और 108 के साथ भी उसी पे एक सुविधा प्रदान की हुई है जिसके माध्यम से आप तीनों नंबर्स पे कहीं भी अपना हेल्प या इमरजेंसी पे आप कॉल कर सकते हैं।
1: और एक बहुत ही विशेष अनुरोध आया है हमारे पास व्हाट्सएप से कि आप प्लीज जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मराठी में चाहते हैं, और उनका प्रश्न ये है, अरुण पवार जी हैं, उनका प्रश्न है कि हाउ कैन आई फाइंड नियर बाय वॉक इन सेंटर फॉर सपोर्टिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम जीवन मोबाइल ऐप। अनुरोध किया है उन्होंने बहुत ही।
0: थैंक यू अरुण पवार जी, मी तुम्हाला मराठीमध्येच उत्तर देईल। आमच्या याच्यात राष्ट्रीय वयोश्री योजनेच्या तहत पुष्कळसे सेंटर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत, तुम्ही तिथे नाव टाका आणि तुमच्या जागेत तुम्हाला मिळेल। अभी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूंगी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हम लोग जैसे कैंप्स लगाते हैं वो ऑनलाइन सेंटर्स के पूरी जानकारी 100 के करीब हमारे दिव्या वयोश्री केंद्र है, वहां पे बुजुर्ग जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की जरूरतें जो होंगी वो आधार कार्ड का देके परिचय पत्र देके ले सकते हैं। तो ये जानकारी ऑलरेडी हमारे जीवन ऐप पे भी अवेलेबल है
1: जी। और सवाल है गोपाल सोनी जी का राजस्थान के सीकर से और संजय सूरी जी का, जो कई उनके जो प्रश्न हैं दोनों के वो समान है। उनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा।
0: जी संजय सूरी जी और गोपाल
1: सोनी जी,
0: आपके सवालों के लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि जीवन ऐप के बारे में मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूंगी। जीवन ऐप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के सीनियर सिटीजन होम जिसको हम वयो आश्रम बोलते हैं उसकी पूरी जानकारी जो हमारे मंत्रालय से ग्रांट्स पाते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी विद ज्योग्राफिकल लोकेशन नाम पता। दूसरा है एल्डर लाइन जैसे मैंने कहा 14567, उसका 112 और 10

0: पेट के साथ। तीसरी है हमारे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जितने कैंप्स लगने वाले हैं और जितने वॉक इन सेंटर्स हैं उसके बारे में। चौथी जानकारी आपको मिल सकती है जहाँ पे हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन जो है अपने पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कीम है, कहाँ से लिया जाए, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है जहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कहाँ अप्लाई करना हो, इन सब के बारे में इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है। इसके अलावा हमारे जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं, MOU हुए हैं, वो आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो, ब्रह्म कुमारीज हो, वेव विकास हो, या जिस भी संस्थाओं के साथ हमारा काम चल रहा है, हमारी जितने भी स्कीम्स के बारे में जो हमारा ब्यौरा है, हम लोग इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जो भी नए पहल हैं, इसकी गैलरी है, मैसेजेस है, अनुभव बोलता है जहाँ पे सीनियर सिटीजन आके भी बोलते हैं, तो ये सब जानकारी आपको उस जीवन ऐप में भी उपलब्ध होगी।
1: और संजय सूरी जी का एक और दूसरा प्रश्न ये है, क्योंकि जैसे आपने अभी मराठी में जवाब दिया, तो ऐसे ही कई श्रोता जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो सुविधा दी जा रही है तो उपलब्ध होगी?
0: जी, इसका प्रयास चल रहा है और तुरंत ये उपलब्ध हो जाएगी
1: ताकि लोगों को आसानी हो।
0: जी, जो संजय सूरी जी।
1: और सासाराम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
2: जी नमस्कार, मैं सासाराम बिहार से बोल। इसमें मैडम ने अभी बताया बहुत अच्छा कि दूर दराज तक कैसे हम लोग इसको पहुंच बना सकते हैं। मेरा इसमें और ऐड करना था कि क्या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक जो उसमें कुछ ऐसा रेशियो भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चलक से नहीं सकते हैं, उन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं? तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे सेवा केंद्र के माध्यम से या कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट हो, जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की जो सेवाएं हैं वो लगातार पहुंच पर नहीं है, उसके हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम करके ताकि वहां तक दूर बैठे लोगों तक भी वो पहुंच सके। जो मैडम ने बताया था बहुत अच्छा अच्छा है, ये भी हो सकता है कि कुछ 10% 20% जो भी थोड़ा बहुत छूट दी जाए तो वहां तक हम लोग पहुंच बना सकते हैं। जी,
1: सुझाव दे रहे हैं अमित जी कि दूर दराज क्षेत्र तक अगर पहुंच बढ़ानी हो तो।
0: जी अमित उपाध्याय जी, सासाराम से थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। हमारे बिहाफ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है वो भी हमारे तहत हमारा बहुत सा कार्यक्रम इस पे सुचारू रूप से चलाते हैं। तो यही नहीं है कि केंद्र में ही हम चला रहे हैं, पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपके स्टेट के हैं बिहार के जैसे, तो आप वहां भी जाके उनसे ये मांग सकते हैं। वहां भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेलफेयर ऑफिसर होता है, तो हमारी पहल ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के साथ पहल शुरू हो चुकी है कि आप तक हम पहुंचे।
1: जी हाँ, तो सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं है, तो पूरे देश में हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का। मोनाली जी, अगर देखूं जैसे हमने शुरुआत में अकेलेपन की भी बात की, तो जो वरिष्ठ नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो ये कितनी उपयोगी हो सकती है?
0: मैं इसमें एक आपको उदाहरण पेश करना चाहूंगी। हमारा जो 14567 है इस पे बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं, 40-45 मिनट सिर्फ बोलते हैं क्योंकि अकेले रहते हैं तो उन्हें कोई बोलने वाला चाहिए। तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बुजुर्ग हमसे बातें करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ अभी हमारे मंत्रालय ने, माननीय मंत्री जी ने भी इंटरजेनरेशन बॉन्डिंग पे काफी जोर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम साझा करने चाहे हैं, वॉकथॉन्स करते हैं, इंटरजेनरेशन बॉन्डिंग के नाम पे बहुत से हमने सीरीज भी शुरू की है। तो हर तरह से प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है कि हम ये जो सामाजिक इंक्लूसिव सोसाइटी हमारे बुजुर्गों के साथ एकजुट होकर चले का प्रयास करते हैं कि वो अकेलापन महसूस ना करें।
1: जी हाँ, तो मतलब इसमें जो है कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं।
0: जी
1: ठीक है, मतलब ताकि जो ज्यादा लोगों तक अगर हम हो तो पहुंच बना सके। तो अगर मैं एक संक्षेप में जाना चाहूँ, आपने जैसे कुछ कुछ योजनाएं बताई और जैसे आयुष्मान योजना है, तो क्या ये भी हमें उपलब्ध होगी? और जो बेसिक योजनाएं हैं वयोवृद्ध जो हमारे जन हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो एक बेसिक जानना चाहती हूँ कि मुख्य तौर पर क्या क्या योजनाएं हैं, आप संक्षेप में बताएं।
0: अभी तो हमने जो जीवन पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें हमने आयुष्मान भारत जो हमारे सीनियर सिटीजन या सीनियर नागरिकों के लिए है आभा कार्ड, उसके लिए हमने प्रयास किया है। ओल्ड एज पेंशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देता है उसके लिए प्रयास किया है। जीवन प्रमाण

0: एंड जो पोस्टल और बाकी मिनिस्ट्रीज देती है उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है. तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाते हैं भारत सरकार, उसका बैकएंड से इंटीग्रेशन हमने अभी धीरे धीरे शुरू किया हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से, कि हमारे बुजुर्ग वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन प्लेटफॉर्म पे ही उन सबको ये मिल जाए.
1: अच्छा, मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि कई योजनाएं हैं, कई जो उसके एप्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही जगह पे सारी योजनाएं उपलब्ध है, तो उससे बहुत सहूलियत होगी जो हमारे वृद्ध जन है. पुणे से जुड़े हैं श्रीपद झाकड़े जी.
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार श्रीपद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में.
2: जी धन्यवाद. मैं श्रीपद झाकड़े बोल रहा हूँ पुणे से. तो मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिहीन हूँ और वृद्धाश्रम में रहते हैं, मतलब हम तो मतलब हम लोगों को किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है, कारण हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमको कैसे मतलब इसका उपयोग हो सकता है मतलब हम लोगों को.
1: जी हाँ, दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है?
0: श्रीपाद जी आप पुणे से बोल रहे हैं, सीनियर सिटीजन होम से.
1: जी अब डिस्कनेक्ट हो गया है, पर हाँ जी हाँ, उन्होंने बताया वृद्धाश्रम.
0: वृद्धाश्रम से रहे. तो हमने जो जीवन ऐप लॉन्च किया है इसमें तो हर जानकारी है, इसके अलावा जितने एनजीओ जो सीनियर सिटीजन होम्स को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इस ऐप को देख के जो जो कार्यक्रम आसपास हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उस पे है. आप अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी पूछ के ये जानकारी वहां से ले सकते हैं.
1: जी हाँ, तो बहुत इजी करने की कोशिश की गई है और आप तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की कोशिश की गई है. अगर मैं विशेषता जानना चाहूँ इस ऐप की और इस डैशबोर्ड की, तो क्या है जो बुजुर्गों के लिए हो, क्योंकि जो टेक्निकल जो इतने सेवी नहीं है और स्मार्टफोन जिनको चलाने इतने खास नहीं आते, तो ऐसे में उनके लिए क्या विशेषता है?
0: पहले बात करते हैं शतायु की. शतायु नाम ही इसलिए हमने दिया है कि आप 100 साल जिए, तो हम आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सामाजिक जुड़ाव के लिए हमने शतायु ऐप नाम उसका किया है, जहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जेरियाट्रिक केयर गिवर्स के मदद मिले कि आपको डेली कंपेनियनशिप हो, आपके वेलबीन के लिए हो, योगा हो, इन सब के लिए आपको मदद मिले. आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ऐप पे जाके आप सीधा आपके आसपास के जितने प्रोफेशनली ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी करके उनकी सर्विसेज ले सकते हैं. अब आते हैं हम जीवन ऐप पे, जो दूसरा हमने पोर्टल लॉन्च किया है जीवन. उसके तहत ना ही जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन होम्स, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप और बाकी भी है, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हमारे पास कार्यक्रम होते हैं जिसपे आप डायरेक्टली लॉग करके आप इसके ऑनलाइन जुड़ के भी आप ले सकते हैं जानकारियां.
1: जी जी, तो मतलब आप जानकारी लेना भी आपके लिए आसान, और सबसे आसान तो ये है कि जो आपने एल्डरली जो हेल्पलाइन नंबर बताया हुआ है, तो 1-4-5-6-7-1-4-5-6-7, इस पर अगर आपको कोई भी शंका, कोई भी दुविधा है, तो आप इस नंबर पर डायल करके अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं. मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े हैं रशीद अहमद खान जी.
3: नमस्ते मैम.
1: नमस्कार.
3: आप सभी लोगों को आगामी पर्व जो है की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं.
1: जी धन्यवाद
3: जी. और हाँ जी, मतलब सवाल मेरा ये है कि क्या जितने वरिष्ठ नागरिक लोग रहते हैं या अकेले रहते हैं या किसी परिवार में भी है मान लें, क्या उनको कोई वैधानिक समस्या आ रही है, उनके परिवार के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ कानूनी हेल्प मिलती है उनको?
0: जी रशीद जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद. और जैसे मैंने कहा कि 1-4-5-6-7 ये जो हेल्पलाइन है इसके तहत आपको ये सब जानकारी और मदद तो मिलेगी मिलेगी. इसके अलावा 112 जो आपका ERSS नंबर है, इस पे भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिस पे आपको बाकी मदद भी वहां के वहां पहुंचाई जाएगी.
1: जी हाँ, तो दो नंबर्स मैम ने बताए हैं, 1-4-5-6-7 और जो कनेक्टेड है 112 के साथ भी. तो कोई भी आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो आप इन नंबर्स पे डायल करके आप सेवा ले सकते हैं. अगर जैसे वरिष्ठ लोगों को जो इतने अगर नहीं सुन रहे हैं कार्यक्रम या उन तक ये पहुंच नहीं हो पा रही है कि ये जो सुविधा सरकार ने शुरू की है, तो उन तक इस बारे में जागरूकता लाने के लिए, इन सेवाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
0: एक तो मुझे आकाशवाणी का थैंक यू बोलना चाहिए, फिर पब्लिक लाइव हुए हैं तो सब पब्लिक जहां भी है वो सन रहे हैं, तो एक तो ये पब्लिक डिसेमिनेशन है ही.
1: जी
0: प्रेस के तहत और स्टेट गवर्नमेंट,

0: से मैंने कहा कि हमारे बिहाफ पे वो भी बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनके तहत भी हम ये जीवन ऐप जो है वो भी इसके बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे, तो हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुँचने की हम लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं।
1: जी हाँ, जैसे हमने जेरेट्रिक केयर गिवर्स की बात की और जैसे हमें तो खैर उस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, पर अगर हम हर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जब भुगतान करना है तो अगर अगर हम जाएं दूर दराज के क्षेत्रों में और जो भुगतान सेवा है तो उधर भी उपलब्ध होगी, जो ये प्रोवाइडर्स होंगे, केयर गिवर्स जो होंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल जो कर्मी होंगे, कि वहाँ पर भी उपलब्ध होंगे ये इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में भी?
0: जी, अगर वहाँ पे जैसे दूर से कोई ट्रेंड है उस जगह से, जैसे बिहार से, सासाराम से, अगर वहां पे कोई प्रोफेशनली ट्रेन जेरेट्रिक केयर गिवर है तो उसके आसपास के लोकेलिटी में जितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में वो उसकी पूरी जानकारी वहां मिल जाएगी।
1: जी, दिल्ली से जुड़े हैं राजकुमारी जी।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
2: मैं राजकुमारी रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ
1: जी
2: और दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी मेरी आयु 82 वर्ष है मैडम
1: जी।
2: आपके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जीवन ऐप क्या है और सीनियर सिटीजन्स को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी मैडम?
1: जी राजकुमारी जी, एक बार आपसे गुजारिश है, फिर से बता दें आपके बारे में और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।
0: नमस्कार मैम, जीवन जॉइंट एंडली एम्पावर एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क ऐप है जो एक मोबाइल सॉल्यूशन है। जीवन ऐप में आपको आपके आसपास होने वाले सीनियर सिटीजन होम्स हो, राष्ट्रीय वयोशी कैंप्स हो जो डिस्ट्रीब्यूशन या वॉक इन सेंटर जहाँ पे आप जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस ले सकते हैं, इसके अलावा एल्डर लाइन जो हेल्पलाइन है और 112, इसके बारे में आप जानकारी, आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत हो तो इस वाले में 112 और 14567 पे डायल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी जो जैसे आभा कार्ड है या वयोश्री पेंशन योजना है या जितने भी सीनियर सिटीजन्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप्स है उसका इंटीग्रेशन के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो इसकी सब जानकारी जो हमारे वयोश्री वयोश्रेष्ठ नागरिक है उनको मिलने के लिए हमारा मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है।
1: जी, तो इसमें जैसे आपने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी?
0: राज्य सरकार की भूमिका ये होती है, जैसे हम बड़े मेजर इस पे काम करते हैं वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं जहाँ पे वो हर व्यक्ति के आसपास के या उस स्टेट के रिलेटेड की ज्यादा जानकारी उन्हें होती है। एक माइक्रो लेवल पॉलिसी हम बना लेते हैं पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मोस्टली राज्य सरकारों का होता है क्योंकि वो एक आम नागरिक से जुड़ते हैं, हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते तो हमारा माध्यम होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो वहां पे जितने मेडिकल कैंप्स लगने हैं, ऑपरेशंस कैटरैक्ट के होने हैं या जो ट्रेनिंग करवानी है या डिमेंशिया स्क्रीनिंग हो रही है तो वो सब जानकारी जो भी कैंप्स करवाने या जो भी आईसी मटेरियल की जानकारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है।
1: जी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हैं रमा शंकर जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: मैं ये पूछना चाहता था कि जैसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि जो वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, यह व्यवस्था क्या की गई है कृपया बताएं?
1: ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था है कि उन तक ये जो फायदे हैं और ये जो योजनाएं हैं ये प्रयास है पहुंचे?
0: रामाशंकर जी, आपको मोबाइल टेक सेवी होने की जरूरत नहीं है, आप 14567 डायल करते ही आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस ऐप में क्या है या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मंत्रालय का क्या दायित्व है और मंत्रालय के क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं।
1: अगर उन्होंने कहा स्मार्टफोन भी नहीं है तो क्या करें?
0: 14567 में आपको स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल इससे भी आपका वो टोल फ्री नंबर है, आप डायल कर सकते हैं।
1: जी हाँ, तो अब आपकी जो समस्या था उसका निजात कर दिया मोनाली जी ने। मध्य प्रदेश
0: मंत्रालय ने
1: जी। राजेश नेमा जी।
4: जी
1: जी राजेश जी, आपका सवाल क्या है?
4: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
1: जी
4: तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान की जो आपाधापी है उसमें घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो परिवार से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो इस स्थिति में वह ऐप

0: क्या मदद कर सकता है?
1: जी राजेश जी, अब अक्सर आप देखिए कि सवाल ये है कि आपस में अगर घर में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है तो स्थिति में आपका, हालांकि मैम ने बताया कि नंबर ही है 1 4 5 6 7, और इसके अलावा क्या उन तक सहायता हो सकती है मोनाली जी?
2: राजेश जी, जैसे हमने कहा कि परिवार के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, परिवार का आपसी मनमुटाव तो अपना पारिवारिक जीवन ही होता है, पर इसके अलावा अगर एब्यूज हो रहा है, मारपीट हो रही है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप 112 और 14567 पे जरूर आप इस पे रेस करिएगा, हम आपके लिए जस्ट वन कॉल अवे हैं।
1: जी, तो अगर हम युवा पीढ़ी की बात करूं इसमें, तो युवा पीढ़ी किस तरह से सहायता दे सकती है?
2: जी थैंक यू इस सवाल के लिए। हमारे आदरणीय मंत्री जी भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी इसके लिए काफी प्रयास करते रहते हैं कि हम इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग और युवाओं को कैसे शामिल किया जाए, कि हम बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाए जाए, तो इसके इससे साथ हमने बहुत से ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाने की कोशिश की है, जैसे ग्रैंड पेरेंट टीचर मीट स्कूलों में हो जाए, वॉकथॉन्स हो जाए, प्लेज ऑनलाइन प्लेजेस लेने चाहिए, तो इवन जेरेट्रिक केयर गिवर जो है वो युवाओं के लिए ही है, कि आज का युवा कल जाके जो बुजुर्ग हो तो उसके लिए वो अपने घर वालों की कैसे सेवा कर सकता है, तो इससे हम युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
1: तो अगर मैं भविष्य में देखूं, अगर आपने जैसे योजनाएं बताई, जो स्कीम्स बताई इसमें है, तो और आगे भविष्य में किस तरह की चीजें इसमें एड ऑन करने की आपकी वो है योजना है?
2: जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारा जो दायित्व है और दो पिलर्स है, एजिंग विद डिग्निटी और एजिंग एट प्लेस, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा बुजुर्ग जो है अपने घर में ही रहे और पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यापन करे। तो इसके जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमने बहुत से एप्स को जोड़ने की कोशिश की है, हमसे यही रहेगी उम्मीद कि हम और इस पे जोड़ते जाएं।
1: जी धन्यवाद मोनाली जी इस बारे में जानकारी देने के लिए। अगर देखें तो ये जो दोनों चीजें हैं, जीवन ऐप और डैशबोर्ड, ये छतायु डैशबोर्ड है, तो तकनीक और संवेदनशीलता का ये बहुत ही अनोखा संगम है जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता, देखभाल और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये पहल हमारे बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद, सुरक्षा, सम्मान को नई रोशनी देगी, यही उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आई और विस्तार से चर्चा की इस बारे में धन्यवाद, और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न मिले और जिनके हमें कॉल्स आए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं और अब पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। यादें जो दिल को छू जाएं, वो लम्हे, वो गीत, वो जमाना, वो एहसास, वो साज, वो आवाज। आइए लिए चलते हैं उन मधुर गीतों की महफिल में, जिन गीतों के शब्दों और संगीत ने कभी दिलों को छुआ था और आज भी दिलों की धड़कन बनकर जीते हैं। बीते लम्हों की सौगात लिए चलते हैं, बीते लम्हों की सौगात लिए चलते हैं, यादों के नगमों की बारात लिए चलते हैं। हर धुन में बसता है मोहब्बत का जहां, आज फिर वही भूले बिसरे गीत सुनते हैं।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

श्रोताओं, अभी आपने सी रामचंद्र और शमशाद बेगम की आवाज में ये गीत सुना फिल्म पतंगा से। और आइए अब सुनते हैं तलत महमूद और आशा भोसले की आवाज में फिल्म बूट पॉलिश का गीत। साथियों, ये वो गीत हैं जो कभी दिल को सुकून देते हैं तो कभी पैरों को थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। हर गीत अपने साथ एक नई कहानी, एक नया एहसास लेकर आता है।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म संघर्ष से। गीत के बोल हैं शकील बदायनी के और धुन तैयार की है नौशाद ने।

श्रोताओं अभी अपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना फिल्म संघर्ष से। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनते हैं भाई भाई फिल्म का ये गीत गीता दत्त की आवाज़ में।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना गीता दत्त की आवाज में भाई भाई फिल्म से। कार्यक्रम का अगला गीत आई सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म मन मंदिर से। गीत के बोल राजेंद्र कृष्ण के हैं और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हॉलिडे इन बॉम्बे। अभी आपने इस फिल्म में मुकेश की आवाज में ये गीत सुना। और आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और गीता दत्त

श्रोताओं, फिल्म छुमंतर के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 बजे हैं और अब पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत हैं ये लव्स, प्यार, मोहब्बत, हम सफर, हम राज, और इन सब का रिश्ता होता है दिल से, दिल की गहराइयों से। जब दिल की हर धड़कन में एहसास होता है किसी के प्यार का, हर सांस महकती है किसी की मोहब्बत की खुशबू से, तो जुबां पर सिर्फ यही आता है, चुपके से आकर इस दिल में उतर जाते हो, चुपके से आकर इस दिल में उतर जाते हो, सांसों में मेरी खुशबू बन के बिखर जाते हो। कुछ यूं चला है तेरे इश्क का जादू, कुछ यूं चला है तेरे इश्क का जादू, हर एक लम्हा तुम ही तुम नजर आते हो।

श्रोताओं, ये कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म मल्हार सी। इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद हमारे सभी श्रोता थे। संघ मित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंघड़कर, दिशांत कुमार और मोहल्ला अफगानान शेरकोट से सुनना चाहते थे नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर और जन्नत। ये फरमाइश हमें की है अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश घोटके ने औरंगाबाद महाराष्ट्र से। इसी गीत को सुनना चाहते थे गांव फ्रासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। ये

छिंदा, जसवीर जैसी सीता और गीता ने। पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार, राम देवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बाबड़ी से खुदा बख्श खलीफा, राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी और आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, ये फरमाइश है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। झरझर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की युगल आवाजों में फिल्म साथी से। आपकी धड़कन से है रिश्ता हमारा, आपकी धड़कन से है रिश्ता हमारा, आपकी सांसों से है नाता हमारा। भूल कर भी कभी भूल न जाना, आपकी यादों के सहारे से है हमारा जीना।

श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत आई सुनते हैं फिल्म ससुराल से। आवाज दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, गीत के बोल हैं शैलेंद्र के और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने। सफर वहीं तक जहां तक तुम हो, सफर वहीं तक जहां तक तुम हो, नजर वहीं तक जहां तक तुम हो। हजारों गुल देखे हैं गुलशन में हमने, पर खुशबू वहीं तक जहां तक तुम हो।

श्रोताओं, ससुराल फिल्म के इस गीत को सुनने के लिए ख्वाहिशमंद थे भटिंडा रोड मंडी डबाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तानिया नारंग। इसी गीत को सुनना चाहते थे गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्य। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से ये फरमाइश की है आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। करूला मुरादाबाद से सुनना चाहते थे अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान। सिंधौली बरेली से जीशान वारसी। नगीना से अनिल विनोचा, शामी विनोचा, अक्षय, सहज अरोड़ा, गीत अरोड़ा और कनिका अरोड़ा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय और श्रीमती रोशनी राय। इसी गीत के लिए फरमाइश की थी बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से सुनना चाहते थे राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। कार्यक्रम का अगला गीत आइए देखते हैं कि हमारे किन श्रोताओं ने इस गीत की फरमाइश की है। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी और मोहम्मद उस्मान अंसारी। ये फरमाइश है महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनू, दिव्यांशी, आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गोहर, सुनील पाठक। हिंदुस्तान रेडियो मित्र पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ये फरमाइश की है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा ने। नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम हाशमी। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। ये फरमाइश है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और आर के राजा। एक और फरमाइश हमें मिली है मोहल्ला दरबारा शाह नजीबाबाद से गौरी मौली और उनके ताऊजी आलोक अग्रवाल की। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आम्रपाली का ये गीत। आपकी याद आई तो दिल क्या करे, आपकी याद आई तो दिल क्या करे, अगर याद दिल से न जाए तो दिल क्या करे। सोचते हैं कि मुलाकात होगी सपनों में, अगर नींद ही न आए तो हम क्या करेंगे।

श्रोताओं, फिल्म हमसाया में आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत, और इसके साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश संपन्न होता है। नमस्कार,

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
2: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो से तीन दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
4: This is Akashwani, the news read by Kiran Jha. President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honored with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Umar Abdullah announced a probe into the malfunction and said actions would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem.